हर किरण अपने साथ एक नया संदेश लेकर आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उजाली की एक किरण उसे बदलने का सामर्थ्य रखती है। इसी तरह जीवन में छोटी सी कोशिश भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। प्रकृति की हर धड़कन में उस परम शक्ति का एहसास है। उगता सूरज, चहचहाते पंछी, बहती हवा और खिलते फूल। जब मन में विश्वास हो तो मुश्किलें रास्तों पर भी भीतर से एक आवाज आती है, चलते रहो, कोई शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा है, हाथ थामे हुए है।

जीवन रुकने का नहीं आगे बढ़ने का नाम है। रास्ते में धूप मिले या छांव, मंजिल मिले या इंतजार, कदम चलते रहें तो रास्ते खुद नए अवसरों से परिचय कराते हैं। आज की सुबह अपने आप से बस इतना वादा करें, कल से बेहतर बनने की कोशिश आज जरूर करेंगे। और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जल्द मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

प्रातः 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित्र मानस कान। 7:10 का समय रहेगा प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात का। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी।

10:30 का समय होगा प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स का। 11:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम तस्वीर।

दोपहर 12:10 का समय रहेगा प्रोग्राम घर आंगन का। एक बजकर 10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल। दोपहर 2:30 का समय रहेगा प्रोग्राम संगीत.com का। 3:10 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मन भावन। शाम 5:10 का समय रहेगा प्रोग्राम गाते गुनगुनाते का। सात 7:25 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सांझ ढले। 8:10 का समय रहेगा प्रोग्राम मधुरिमा का।

10:30 का समय होगा प्रोग्राम हार श्रृंगार का। और रात्रि 11:40 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

0: ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। एफआईएच महिला हॉकी विश्वकप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Sorin announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission or JPSC and the Jharkhand Staff Selection Commission or JSSC since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and a CBI probe are still pending. The protesting students announced they would discuss their remaining demands and decide their next course of action. Education Minister Prahlad Joshi held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, DG of National Testing Agency and other senior officials in New Delhi yesterday. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air-gapped systems, device deposit protocols be implemented on a war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all exam processes and submit a report on corrective action taken. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti network, a Pakistan-based ISI-backed terror syndicate, linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. Indian Army Chief General Dhiraj Seth has been conferred the rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podeil during an investiture ceremony at Sheetal Nivas in Kathmandu yesterday. Nepal Vice President Ram Sahai Prasad Yadav, Foreign Minister Shishir Khanal, India's Ambassador to Nepal Naveen Srivastav and high officials of Nepal Army and the Nepal government were present during the ceremony. General Seth reached Himalayan Nation on Sunday on an official visit at the invitation of his Nepalese Army counterpart, General Ashok Raj Sigdel. The Indian Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Jharkhand today. The weather agency forecast heavy to very heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha and West Uttar Pradesh today. In badminton, India's Ayush Shetty stunned world number one and defending champion Shi Yuqi of China in the first round of the men's singles at the BWF Badminton World Championships in New Delhi. PV Sindhu and the women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand also advanced to the second round as Indian shuttlers made a winning start to their campaign. In men's cricket, India will look to press home their advantage against Sri Lanka on the fourth day of the first test in goal after taking a commanding lead of 178 runs at the end of day three. Indian bowlers bowled out the hosts for 284 in the first innings. Manav Sutar was the pick of the Indian bowlers, claiming four wickets while Ravindra Jadeja took three. For Sri Lanka, Sonal Dinushi scored his maiden test century while Niroshan Dikwela contributed 80 runs. Indian women's hockey team will face South Africa in their second Pool D match at the AFIH Women's World Cup 2026 in Amstelveen, Netherlands today. India began their campaign with a 2-2 draw against Olympic silver medalists China. And that is the end of this news bulletin.

माता अंजनी के पुत्र वानर राज, जो नकारात्मक शक्तियों के भय को नष्ट करते हैं, मन के समान गति वाले और वायु के समान तेज वेग वाले श्री हनुमान। आइए करते हैं उन्हें नमन मंगल की इस प्रभात, मंगल की मुक्ता के साथ।

जब विश्वास अटूट होता है तब चमत्कार अपने आप होते चले जाते हैं। संतों के अनुसार शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर हैं और उन्हें भक्त का अटूट विश्वास ही प्रिय है। मन यदि सच्चा है, कर्म यदि अच्छा है, तो फिर सब कुछ महादेव की इच्छा पर छोड़ देना ही बेहतर होता है।

भक्ति में शक्ति है और यही भक्ति खुद से भागने की प्रेरणा नहीं देती, बल्कि समाज में रहकर कर्म करते हुए विश्वास के साथ और आनंद के साथ आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। संतों के अनुसार वैराग्य का मतलब कुछ न करना नहीं, बल्कि समाज में रहते हुए जिम्मेदारी निभाते हुए अपने कर्म को लेकर मन में एक वैराग्य भावना लाना है। हमारा ध्यान, हमारा मन केवल अपने काम पर हो, उसके फल की चिंता पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने काम में इतना ध्यान लगा पाए कि हमें उसके अलावा कुछ न दिखे, तब हम सच्चे ज्ञानी बनते हैं।

0: मंगल की इस प्रभात, प्रभु की शरण में कुछ क्षण अर्पण के माध्यम से। जी हाँ, 6:26 और ठीक 35 सेकंड हुए हैं। आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर हैं, यानी कि आपने ट्यून इन किया है 100.1 MHz पर। सुन रहे हैं आप अर्पण मुक्ता के साथ। जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: मन को एकाग्र कर, अहंकार को त्याग, स्वयं को समर्पित कर। आइए मन, वचन और कर्म से करते रहें अर्पण।

ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को काटा जा सकता है। ये दुनिया एक भ्रम है, एक मिथ्या है, और ज्ञानी ये बात जानता है। बहुत वक्त पहले की बात है, कहते हैं एक गुरु नदी किनारे अपनी कुटिया में रहा करते थे। एक बार रात के वक्त उन्होंने अपने शिष्य को कोई वस्तु दी और भीतर अपने कमरे में रखने को कहा। शिष्य भीतर गया और डर के लौट आया। बोला, महाराज आपके बिस्तर पर तो सांप बैठा है। संत बोले, प्रभु का नाम लो और फिर जाओ। शिष्य दोबारा जाप करता गया और फिर वापस आकर बोला, महाराज सांप तो वही है, भगवान का नाम लिया लेकिन फिर भी वो नहीं गया। अब गुरु बोले, हाथ में दीपक लेकर अंदर जाओ। शिष्य जब दिए के साथ अंदर गया तो दिए की रोशनी में उसने देखा कि जिसे वो सांप समझ रहा था, दरअसल वो एक रस्सी भर थी जो अंधेरे में उसे दिख रही थी सांप की तरह। अब संत बोले, ठीक इसी तरह ये संसार भी गहन मिथ्या का जाल है, और अज्ञान के अंधेरे के चलते हम यहीं बहुत से भ्रम पाल बैठते हैं कि ये मेरी संपत्ति है, मेरा परिवार है, मेरा ओहदा है। दरअसल ये सारे भ्रम हैं जो केवल और केवल परमात्मा को जानकर सच्चे ज्ञान की रोशनी के साथ ही दूर हो सकते हैं। पानी केरा बुदबुदा ये मानस की जात, एक पानी की बूंद की तरह तो हैं हम, फिर किस चीज का अहंकार।

परमात्मा के नाम को अपने हर कर्म में रखें, तभी जीवन आसान हो पाएगा। 6:44 और ठीक 11 सेकंड हो चले हैं। समय अब श्री रामचरितमानस के पाठ का है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए मिलकर श्रवण करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ।

श्री राम की कोई भी सीख, कोई भी तर्क लक्ष्मण के उनके साथ वन जाने के संकल्प को नहीं टिका सका, तो श्री राम को समर्पित छोटे भाई की अनुनय विनय माननी पड़ी। तब उन्होंने लक्ष्मण से जाकर माता की अनुमति ले लेने को कहा। हर्षित हृदय से लक्ष्मण माता के पास पहुंचे और उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। घटना चक्र की गति से माता सुमित्रा इस प्रकार सहम गईं, जैसे जंगल में लगी आग से हिरनी भयभीत हो जाती है। कैकेयी की करनी पर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। श्री राम तथा सीता के प्रति लक्ष्मण के प्रेम और आदर तथा समर्पण की भावना से वो भले भांति परिचित थीं। बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता हैं और तुम पर अथोर स्नेह रखने वाले श्री राम तुम्हारे पिता के समान हैं। जहां उनका निवास हो वही अयोध्या है। यदि वे वनगमन करें तो तुम्हारे यहां होने का कोई अर्थ नहीं है।

गुरु, पिता माता, भाई देवता तथा स्वामी की प्राणपण से सेवा करनी चाहिए। जो भी पूजनीय तथा प्रिय लोग हैं, वे केवल राम के कारण पूज्य और प्रिय हैं। अतः श्री राम और सीता के साथ वन जाओ और जीवन को सार्थक करो। मैं बड़भागी हूं जिसके पुत्र का श्री राम चरणों में ऐसा अनुराग है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, अतः वन में तुम पूरी निष्ठा, मन, वचन और कर्म से उनकी सेवा करना।

सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। 6:54 और ठीक 27 सेकंड हुए हैं। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुनें।

0: संस्थया आयोज्यमानाः सर्वाः प्रतियोगी परीक्षाः निरस्ताः। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ह्यः सायं विशेष मंत्रिमण्डलोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा एतत् निर्णयम् उद्घोषितवान्। राज्य प्रशासनेन चतुर्दशाधिकद्विसहस्रतम वर्षादारभ्य झारखण्ड लोकसेवायोगेन अथ झारखण्ड कर्मचारी चयनायोगेन च आयोजितानां नियुक्ति परीक्षाणां व्यापक परीक्षणस्य अपि आदेशः प्रदत्तः। किन्तु छात्रनेता पीयूष कुमारः उक्तवान् यत् एकादशतः त्रयोदश पर्यन्तानां जेपीएससी परीक्षाणां तथा केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य अन्वेषणात् सम्बद्ध प्रदर्शनकारिणां याचनाः अद्यापि विचाराधीनाः सन्ति। प्रदर्शनकारिणः छात्राः उक्तवन्तः यत् ते स्वीया अवशिष्ट याचना विषये चर्चां करिष्यन्ति तथा अग्रिम कार्याचरण विषये अपि निर्णयं करिष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनेन चरणबद्धरीत्या स्नातक स्नातकोत्तर अतिविशेषज्ञता स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षा संस्थानानां संख्यां वर्धयित्वा राष्ट्रिय राजधान्यां चिकित्सा शिक्षायाः क्षमतां वर्धयितुं सज्जः अस्ति। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं प्रशासनेन त्रिमुखी कार्यनीतिः स्वीकृता अस्ति। अस्यां नवसंस्थानां संस्थापना, विद्यमानसंस्थानां विस्तारः तथा स्नातकोत्तर उन्नत चिकित्सकीय कार्यक्रमाणां विस्तारश्च सम्मिलिताः सन्ति। केरले विजिंजम समुद्रपत्तनात् प्रत्यक्ष निर्यातः आयातश्च अद्य आरभ्यते। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन प्रातः पादोन एकादशवादने सेवायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डे अतिवृष्टिमालक्ष्य रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। ऋतु विभागेन अद्य बिहार छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा पश्चिमोत्तर प्रदेशानां च विभिन्नेषु भागेषु अतिवृष्टेः संभावना पूर्वानुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य आयुष शेट्टी नवदिल्ल्यां आयोजितायां बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व स्पर्धायां पुरुषाणां एकल वर्गस्य प्रथम चरणे विश्वस्य प्रथम क्रमांकितं वर्तमान विजेतारं च चीन देशीयं शी यू क्यूई इत्येनं पराजित्य विजयम् अवाप्तवान्। तत्रैव पीवी सिंधुः तथा महिलानां युगल वर्गस्य भारतीय युगलं त्रिसा जौली गायत्री गोपीचन्दः अपि द्वितीय चरणे प्रविष्टे। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांगों पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिनमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती हुई भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा

0: के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की परंपरा वर्ष 1950 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली के मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया। मौसम विभाग ने बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले में आज अत्यधिक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष सेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी अब दूसरे दौर में पहुंच गई। महिला डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के कोलिन्स फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेट हजार थुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्या और अमृता प्रमथेश तुर्की के एमरेसोन मेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त बना ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on the 12th of this month, using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti network, a Pakistan-based ISI-backed terrorist syndicate linked to grenade, IED and petrol bomb attacks and targeted killings across India. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Soren announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission and the Jharkhand Staff Selection Commission since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examination

जनाब, अगर आपका मन बेचैन है तो शरीर अपने आप पूरी तरह से बेचैन हो गया होगा। इस मन को साधिए, प्रकृति से मिलकर खुद से कीजिए मुलाकात और कहिए गोल्ड सुप्रभात। जी हाँ, ये मंगल की प्रभात है, मंगल की मुक्ता के साथ है। 7:11 और ठीक 28 सेकंड।

जी हाँ, अपने ही दिल से मुलाकात का ये वक्त है। कहीं मत जाइए, अपने दिल से बात कीजिए, खुद को पहचानिए, इस खूबसूरत मौसम का आनंद लीजिए। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गरज के साथ बौछार आज पड़ने का पूर्वानुमान है दिल्ली में, और सूर्योदय का समय सुबह 5:51 का था। सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर। दिल्ली का AQI बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त, तकरीबन 80 के आसपास है। इस मौसम का, इस हवा का आनंद उठाइए और अपने आप के साथ अदरक वाली चाय लेकर के बात कीजिए और सुलझाइए अपने मन की उलझन को।

0: बादल भले ही इस वक्त अपना काला साया दिखा रहे हों, लेकिन मन की रोशनी और सूर्य की जो किरण है वो दूर नहीं रहेगी, वो सुनहरापन लगातार दिखता रहेगा और हम कहते रहेंगे गोल्ड सुप्रभात।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

जनाब, अगस्त का महीना चल रहा है, बारिश तो है लेकिन साथ साथ उमस भी है और इन दिनों डाइजेशन इशू भी बढ़ जाते हैं। तो फिर सुबह के नियम में हल्का गुनगुना पानी ऐड कर लीजिए खाली पेट, ये डाइजेशन को बहुत बेहतर कर सकता है। और हाँ, तुलसी और अदरक इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो अगर सुबह की चाय की आदत है तो चाय में, नहीं तो अदरक के रस के साथ तुलसी आप वैसे भी लेना शुरू कर दीजिए, ये हेल्पफुल होती है। सामान्य परिस्थितियों में हमारे किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दवा का काम कर जाती हैं।

जी हाँ, समय का ये पहिया यूं ही चलता रहेगा। इस पहिए के चलते चलते केवल और केवल यादें रह जाएंगी पीछे, उन्हें ही खूबसूरत हम और आप कर सकते हैं। अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात, और अब समय है समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का।

नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। हवा में अभी रात की नमी है और मेरे लफ्जों में गुलजार साहब के। आज गुलजार साहब का जन्मदिन है और आज के इस अंक में हम आपको उनके लिखे गीतों को सुनाएंगे। बात करेंगे उनकी कुछ चुनिंदा नज्मों के बारे में। इसके अलावा कुछ और नामचीन शख्सियतों का भी आज हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा देश और दुनिया के समाचार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सुबह की शुरुआत गुलजार साहब के इस प्यार भरे गीत से करते हैं।

0: इसीलिए हर पल को मुस्कुराते हुए जिया करें। तो आइए आगाज करते हैं कार्यक्रम आज सवेरे का, और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
1: नमस्कार फरत एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल, व्हेन आई लिसन टू सच काइंड ऑफ लिरिक्स, सच प्रोफाउंड एंड डीप लिरिक्स, आई ऑलवेज वंडर व्हाट गोज ऑन इन द माइंड ऑफ एन आर्टिस्ट व्हेन दे पेन डाउन।

0: सच काइंड ऑफ लिरिक्स.
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि शगुन आज के हिसाब से ये गीत बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे आजकल के डिप्रेशन में जी रहे हैं, बहुत जल्दी जो है नर्वस हो जाते हैं, तो ये चीज जो है उनको जरूर जानी चाहिए कि हर पल जो है बहुत ही खुश मिजाजी के साथ जिए वो.
0: दैट इज ट्रू फरत, एंड दे शुड बी इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड, एंड दैट्स व्हाई वी काइंड ऑफ प्ले दीज काइंड ऑफ सॉन्ग. सो वी हैव बीन टेलिंग यू अबाउट गुलजार, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर्स, एंड वी हैव मेनी अदर आर्टिस्ट दैट विल ऑल्सो टेल यू अबाउट इन आर लास्ट सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल वील गिव यू नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, देन मेट्रो सिटी अपडेट्स, एंड विल ऑल्सो एक्सप्लोर टूडेज हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन. टूडे इट्स 18th of August 2026, एंड नाउ वी बिगिन आर हेडलाइंस विद अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज. So more than 200 Indian peacekeepers serving with the United Nations mission in South Sudan have been honored with UN medals for their exceptional service. A total of 210 Indian personnel, including 6 women and 7 staff officers, received the medals in the South Sudanese capital Juba. The United Nations praised the Indian peacekeepers for their courage, compassion and dedication, and particularly during crises, medical emergencies and life-saving operations. And from India's contribution to peacekeeping, we now turn to another international platform, one that puts the spotlight on the energy and ideas of young people.
1: जी बिल्कुल, हम युवाओं की बात कर रहे हैं शगुन, तो हम ब्रिक्स के सम्मेलन की बात कर लेते हैं. गुजरात के गांधीनगर में कल से युवाओं की एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक शुरू होने जा रही है. भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत युवा मामले और खेल मंत्रालय 2 दिवसीय ब्रिक्स यूथ काउंसिल मीटिंग और ब्रिक्स यूथ समिट का आयोजन करेगा. इस सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के युवा नेता, इनोवेटर्स, उद्यमी, स्वयंसेवक और बदलाव लाने वाले युवा एक मंच पर साथ में आएंगे. थीमेटिक चर्चाओं पर बात होगी, इंटरेक्टिव होंगे और नेटवर्किंग के जरिए युवा अपने विचार साझा करेंगे. ये सम्मेलन सिर्फ युवाओं की भागीदारी का एक मंच नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग के भविष्य में उनकी भूमिका को भी मजबूत करने का अवसर देगा.
0: सो फरत, सम रेलवे स्टेशंस दे टेक अस फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर, बट सम स्टेशंस आल्सो टेक अस बैक इनटू हिस्ट्री. ईस्टर्न रेलवे हैज मार्क्ड अ रिमार्केबल माइलस्टोन, the 164th anniversary of Barakpur Railway Station yesterday, with a colourful celebration under the Ministry of Railways Station Mahotsav initiative. And we have a detailed report on this. Let's listen in.
2: Built in 1862, Barakpur Station was created to connect Calcutta with the country's first military cantonment, established at Barakpur in 1772 by the British East India Company. But this station is more than just a railway landmark. It stands beside a place deeply connected with India's struggle against colonial rule. Barakpur witnessed the 1824 Barakpur Mutiny, when soldiers of the 47th Bengal Native Infantry, led by Sipoy Bindi Tiwari, refused to travel to Burma to fight in the First Anglo-Burmese War. The British responded with brutal force, killing the protesting troops with artillery. More than 3 decades later, in 1857, Barakpur again became a symbol of resistance. Mangal Pandey rose against British authority, an act remembered as one of the sparks that helped ignite India's first war of independence. Today, as trains continue to arrive and depart from Barakpur, the station carries with it a story that reaches far beyond railway tracks and platforms. The 164th anniversary celebration is therefore not simply about remembering an old station. It is about honoring a living piece of India's heritage and reminding us that some journeys are measured not just in kilometers, but in courage, sacrifice and the passage of history. Barakpur Station stands today as a bridge between India's past and its present, a reminder that history is not always found in textbooks. Sometimes it is right there on the platform waiting for us to listen. With Tripti Srivastava, Anuja Kumar for Aaj Savere.
0: Let's move on from a station carrying memories of India's past. We now move to a very modern challenge, protecting citizens from digitally manipulated financial scams.
1: और अब आज के इस दौर में वीडियो कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकता है शगुन, लेकिन हर वायरल वीडियो सच हो ये जरूरी नहीं। सरकार ने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का एक छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने को लेकर लोगों को आगाह किया है। इस फर्जी वीडियो में दावा किया जा रहा था कि महज 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश से एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए हर दिन 80,000 रुपए और हर महीने 25 लाख रुपए से ज्यादा कमाए जा सकते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो बिल्कुल फर्जी है और इसे AI की मदद से डिजिटल रूप से मैनिपुलेट किया गया है, और इसीलिए इस यूनिट ने लोगों से ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने को कहा है। तो शगुन, जब कोई भी तकनीक आती है तो मुझे लगता है उसका अगर एक अच्छा साइड होता है तो एक बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है।
3: That is true, black and white
1: जी, तो ऐसे में जो है AI का उपयोग कुछ लोग जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में हम सभी को आगाह जो है वो
3: स्पेशली फ्रॉम डीप फेक्स एक्चुअली। नाउ वी आर हेडिंग टू गोवा। Goa is set to strengthen its position as a year-round destination for business tourism with the launch of the Urja Bharat Convention Center at Betul in South Goa. Developed by ONGC, the integrated convention facility is designed to host major national and international conferences, exhibitions and government forums. We have details on this from our correspondent.
4: A new landmark is emerging on Goa's business tourism map. The Urja Bharat Convention Center or UBCC at Betul in South Goa has been developed by Oil and Natural Gas Corporation ONGC as a world-class integrated convention facility. At the heart of the campus is Prithvi, a striking 27.5-meter tall oval-shaped convention center. Its grand Vasudha auditorium can accommodate nearly 4,000 delegates and features a massive 30-meter high-definition screen. The experience begins at the entrance foyer, which features a unique Mylar waterfall installation. A special wall of honor also pays tribute to the workforce that helped build the project. The campus includes Vayu, a 7,200 square meter pillarless exhibition hall designed for trade fair and expos, and Akash, a modern management development facility. Premium accommodation is available through the Virat and Samrat complexes. The center also has its own dedicated river jetty, Sagar Setu, offering an additional facility for delegates. Sustainability is another key feature of UBCC. The facility operates through a 5 megawatt behind the meter microgrid powered by solar energy and battery energy storage system. The center has also been designed with barrier-free infrastructure to make it accessible and Divyangjan friendly. From energy to events, ONGC's new initiative is set to give South Goa a major new platform and strengthen Goa's ambition to become global destination for business conferences, exhibitions and high-level forums. For Aaj Savere, Mahesh Sopade, Akashwani News, Panji.
1: पारंपरिक हुनर और आधुनिक तकनीक अगर दोनों साथ चलें तो रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। इसी सोच के साथ पश्चिम बंगाल में एक नई पहल की तैयारी है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि स्किल इंडिया कार्यक्रम और पीएम सेतु के तहत पश्चिम बंगाल के पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल शुरू की जाएगी। इनमें राज्य के हथकरघा और डोकरा शिल्प जैसे पारंपरिक उद्योग शामिल हैं। कोलकाता में कल एक कार्यक्रम में श्री जयंत चौधरी ने कहा कि राज्य के पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों को उद्योगों की जरूरत अनुसार कौशल विकास में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ITI को उद्योगों के अनुरूप आधुनिक मशीनरी से लैस किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर व्यवहारिक प्रशिक्षण मिल सके।
3: सो एक्सपीरियंस ब्रिंग्स नॉलेज एंड डेडिकेटेड पब्लिक सर्विस टर्न्स दैट नॉलेज इनटू लास्टिंग चेंज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस डॉ जितेंद्र सिंह प्रेजेंटेड द नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2026 टू 15 सिलेक्टेड अवार्डीज इन न्यू दिल्ली यस्टरडे एंड दे वर ऑनर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू नेशन बिल्डिंग एंड देयर वर्क ऑन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड दिस इंक्लूडेड एरियाज सच एज पासपोर्ट सेवा केंद्र अपडेटिंग गवर्नमेंट रूल्स। And now, from public service to a sporting challenge, where even the altitude becomes an opponent, yes, the breathtaking Ladakh Marathon is back.
1: जी हाँ, सोचिए एक ऐसी मैराथन जहाँ दौड़ने के साथ साथ ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी भी आपकी परीक्षा ले रही हो। यही है लद्दाख मैराथन की खासियत। 13वां लद्दाख मैराथन इस साल 10 से 13 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कल इस आयोजन की आधिकारिक जर्सी और मेडल का अनावरण किया। इस बार मैराथन में 6 अलग अलग रेस होंगी। इनमें 122 किलोमीटर की कठिन एंड्योरेंस रेस, फुल मैराथन, हाफ मैराथन और छोटी दूरी की रेस शामिल है। सबसे बड़ी खबर ये है कि लद्दाख सरकार ने इस बार कुल पुरस्कार राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी है। देश भर और 6 महाद्वीपों से करीब 7,300 धावक पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन इस रेस की सबसे बड़ी चुनौती है इसकी ऊंचाई। दौड़ समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट से लेकर 17,600 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर होगी। 2012 से आयोजित हो रहा लद्दाख मैराथन अब एक प्रमुख एडवेंचर स्पोर्ट इवेंट बन चुका है और इसे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर आयोजित होने वाली मैराथन के रूप में पहचान मिली है। यानी खूबसूरत पहाड़, कठिन परिस्थितियां और जबरदस्त एंड्योरेंस सितंबर में लद्दाख में खेल का एक शानदार रोमांच देखने को मिलेगा। शगुन,
0: दैट इज ट्रू, एंड नाउ वी आर हेडिंग टू देहरादून। सो द एक्शन इज नाउ ऑन द आइस अगेन, वेयर एथलीट्स फ्रॉम अक्रॉस एशिया आर कंपीटिंग एट हाई स्पीड। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनॉग्रेटेड द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 in Dehradun. This happened yesterday and

0: This competition will continue until Thursday with 272 skaters from 14 Asian countries taking part, including 130 Indian athletes. Dehradun is not just hosting an international skating competition, it could be another step towards putting Uttarakhand firmly on the global winter sports map. And staying with sport, we now turn to Nagaland, where four women are set to carry India's colors at the Asian Games.
1: जी शगु, नागालैंड से खेल जगत के लिए एक बेहद गौरवान्वित करने वाली खबर सामने आई है। राज्य की चार महिलाएं 19 सितंबर से जापान के आईची नोगाया में शुरू होने वाले 20वें एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मेनोनु तुस्कु और सिया क्रियान ओतेपा को भारतीय महिला सेप्टकप्ट रॉक टीम के खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। वहीं पुलेनो नईखा और पुंगु टोलू पूरी टीम में कोच की भूमिका निभाएंगे। इस उपलब्धि की खास बात यह है कि 2010 के बाद ये लगातार पांचवा एशियन गेम्स है जिसमें नागालैंड के सेप्टकप्ट खिलाड़ी या कोच भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये नागालैंड की खेल प्रतिभा और उसकी मजबूत स्पोर्टिंग लेगेसी का शानदार उदाहरण है।
0: द सेकेंड एडिशन ऑफ द कोलार ओपन गोल्फ टूर्नामेंट इज सेट टू बिगिन टुडे इन कोलार कर्नाटका विद द प्राइस पर्स ऑफ 1 crore रुपीज। द टूर्नामेंट विल कंटिन्यू अंटिल ऑगस्ट 21st at the 18-hole Zion Hills Golf Course. Top Indian players, they include Saptak Talwar, Veer Ehlawat, and defending champion Kshitij Naveen Kaul, and they will compete. And professionals from several countries, they include Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, and the US.
1: और शगुन, अब जल्दी से अपने श्रोताओं को हम महानगरों की खबरें भी दे देते हैं।
0: सो वी आर बिगिनिंग विद चेन्नई।
1: जी,
0: फॉर्मर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी टी रामास्वामी सेड दैट अफोर्डेबल इनोवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इनोवेशन एम्ड ओनली एट गेनिंग मार्केट लीडरशिप। ही सेड दैट तमिलनाडु हैज बिकम अ लीडर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स एंड अबाउट 61% ऑफ दिस पब्लिकेशंस केम फ्रॉम यूनिवर्सिटीज व्हिच ही डिस्क्राइब्ड एज अ ग्लोबल बेंचमार्क।
1: और शगुन, दिल्ली में मेरे पास दो खबरें हैं बहुत ही अच्छी पहल के बारे में हम बताने जा रहे हैं अपने श्रोताओं को। सबसे पहली है, दिल्ली सरकार एक बहुत ही अच्छी पहल यानी कि लैपटॉप जो है वितरण करेगी त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 10वीं कक्षा के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को। तो ये कार्यक्रम 1200 छात्रों को लैपटॉप इसमें वितरित किए जाएंगे।
0: 1200, ग्रेट।
1: जी, और वहीं पर एक साफ सफाई का खास ख्याल रखना होगा दिल्ली वासियों को। कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की गई है और इस अभियान का उद्देश्य ही है कि स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, कूड़े के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा कैसे दिया जाए इसके बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और ये विशेष अभियान पूरी दिल्ली में 2 अक्टूबर तक चलेगा।
0: वाओ, ग्रेट। So we are heading now to Bengaluru. Union Minister for Heavy Industries and Steel HT Kumaraswamy said that HMT recorded its highest ever single day watch sales in Bengaluru on Independence Day. He said HMT watches worth 35 lakh rupees were sold in one day with a 2.5 kilometer long queue of customers waiting to buy this limited edition watches. He also said that HMT watches still have strong demand because of their nostalgic value and he aims to restore HMT to its former ग्लोरी। दिस वॉज फ्रॉम बेंगलुरु।
1: और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर भी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा लेकिन वहां अभियान चलेगा रेलवे स्टेशनों पर। वहां पर जांच की जाएगी भोजन की गुणवत्ता की। स्वच्छता की जांच के लिए एक विशेष अभियान होगा जिसमें खाद्य पदार्थ, पीने का पानी, खाना पकाने का तेल ये सब शामिल होगा। 15 से 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य है महीने के अंत तक 300 निरीक्षण करना।
0: Now Hyderabad, Telangana's Chief Electoral Officer Sudarshan Reddy announced that notices will be issued to nearly 92 lakh voters as part of the special intensive revision of electoral rolls. The draft electoral rolls were released last evening at the Election Commission office in Hyderabad. And to complete the verification process within the deadline, the CEO said an additional 1,000 staff members will be deployed to support the existing 119 electoral registration officers and 892 assistant electoral registration officers. And he said voters who receive notices must respond either in person or online by October 15th.
1: और शगुन, पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मानस पूजा के अवसर पर बांकुरा और पुरुलिया जिलों में राज्य कार्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में आज दोपहर 2 बजे से आधे दिन की छुट्टी रहेगी। यह अधिसूचना दोनों जिलों में स्थित राज्य सरकारी कार्यालयों, स्थानीय प्रशासनिक निकायों और सरकारी संस्थानों पर लागू होती है। श्रावण संक्रांति और नाग पंचमी के अवसर पर भक्त परिवार की खुशहाली और सांप के काटने से बचाव के लिए देवी मनसा की ये पूजा करते हैं। और बंगाल में देवी मनसा की पूजा मुख्य रूप से काफी प्रचलित है लेकिन असम में भी इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। और श्रोता आइए अब महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज सुबह हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस। वहीं मुंबई में भी बारिश का सिलसिला रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छिटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
0: इन चेन्नई रेन ऑफ थंडर शावर्स वुड अकर टुवर्ड्स इवनिंग और नाइट। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस जनरली क्लाउडी स्काई अगेन विद लाइट रेन और ड्रिजल। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 21 डिग्रीज व्हाइल द मैक्सिमम मे रीच 29 डिग्री सेल्सियस। Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers, and temperatures are expected to range from 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. इन हैदराबाद फरत।
1: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 18 अगस्त 2026, तो सबसे पहले 1800 में क्या हुआ था?
0: Well, yes, Fort William College was officially established in Calcutta by Lord Wellesley. This became an important academic center for Oriental studies and the translation of literary works.
1: जी, और शगुन आज ही के दिन 18 अगस्त 1201 में लातविया में रिगा शहर की स्थापना हुई थी। लातविया में भारतीय मूल की कुल आबादी लगभग 2000 से अधिक है।
0: In 1877, American astronomer Asaph Hall discovered Phobos, the larger and innermost moon of Mars, at the US Naval Observatory.
1: 1868 में फ्रांसीसी खगोल शास्त्री पियरे जानसेन ने भारत के गुंटूर में पूर्ण सूर्य ग्रहण का अध्ययन करते हुए सूर्य के वर्णक्रम में एक नए रासायनिक तत्व यानी हीलियम की ऐतिहासिक खोज की थी। वहीं 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 19वां संशोधन आधिकारिक तौर पर अनुस्मर्थित हुआ, जिसने अमेरिकी महिलाओं को मतदान का सार्वभौमिक कानूनी अधिकार प्रदान किया।
0: In 1951, the first Indian Institute of Technology, IIT Kharagpur, was formally inaugurated in West Bengal by India's first education minister, Maulana Abdul Kalam Azad.
1: सन 1940 में आज ही के दिन पहली बार मौसम मानचित्र का टेलीविजन पर प्रसारण हुआ और 1945 में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के तोईहुकू में विमान दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए और एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु की खबर मिली।
0: In 2018, the 18th Asian Games officially opened in Jakarta and Palembang, Indonesia, marking the first time that the games were co-hosted by two cities.
1: और इससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1976 की बात करें, सोवियत संघ का रोबोटिक अंतरिक्षयान लूना 24 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा और चंद्र मिट्टी के नमूने एकत्र करने के अपने वैज्ञानिक मिशन को पूरा किया।
0: राइट,
1: और अब आइए श्रोताओं, बढ़ते हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम जानी मानी शख्सियतों को याद करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शगुन विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में।
0: yes.
1: भारतीय इतिहास में जब भी ताकतवर महिलाओं का जिक्र होता है तो विजय लक्ष्मी पंडित का नाम अपने आप याद आ जाता है। उनके सामने अमरीका और रूस जैसी महाशक्तियां नतमस्तक रही। विजय लक्ष्मी पंडित सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन नहीं थी, बल्कि उनका कद इससे भी काफी बड़ा था। वो आजाद भारत की वो आवाज थी जिसे सुनने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सन्नाटा जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद किया गया। विजयलक्ष्मी एक पढ़ी लिखी और प्रबुद्ध महिला थी और विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
0: टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग जीव पटेल, पोएट, प्लेराइट एंड पेंटर एज वेल एज अ फिजिशियन। ही बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ राइटर्स हु हैड सब्सक्राइब्ड देमसेल्व्स टू द ग्रीन मूवमेंट व्हिच वाज इन्वॉल्वड इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। हिज पोएम्स स्पीक ऑफ डीप कंसर्न्स फॉर नेचर and well yes, his notable poems include How Do You Withstand or and Body as well, Mirrored Mirroring and On Killing a Tree. He wrote 3 plays, let me name 2, Princes and Mr. Bhairam.
1: और आज ही के दिन जन्म हुआ था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रतिभा जिन्होंने भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विष्णु दिगंबर पुलस्कर का। वे भारतीय समाज में संगीत और संगीतकार की उच्च प्रतिष्ठा के समर्थक और संगीत गुरु, अप्रतिम कंठस्वर और गायन कौशल के घनधनी थे। विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर रामधुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया।

0: और श्रोताओं, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा भारतीय चरित्र अभिनेता जिन्होंने 125 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, अच्युत पोतदार का। फिल्मों के अलावा अच्युत पोतदार ने 95 धारावाहिक, 26 नाटक और 45 विज्ञापनों में काम किया। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की फिल्म से उनका ये डायलॉग।
1: व्हाट इज अ मशीन? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। बोलो, मशीन का डेफिनेशन बोलो।
2: सर, अ मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। सर,
1: विल यू प्लीज इलेबोरेट, डेफिनेशन क्या है?
2: सर, वही तो बता रहा हूँ सर।
1: एग्जाम में यही सब लिखोगे? ये मशीन है, अप डाउन, अप डाउन। एनीबडी एल्स?
0: जी, तो थ्री इडियट्स में इन्होंने एक प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी, जिसमें आमिर खान ने उनको काफी परेशान किया था।
3: दैट इज ट्रू। सो टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग एन R&B एंड जैज बैंड लीडर एंड सैक्सोफोनिस्ट हैरोल्ड जोसेफ सिंगर। Well, Hal Conrad Singer, he studied violin as a child but later switched to reed instruments, one of which is saxophone, and he ultimately settled on the tenor saxophone, which was influenced by hearing another two artists, Ben Webster and Lester Young.

0: और श्रोताओं, अब हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसके बारे में हमने अपने श्रोताओं को शुरुआत में ही बता दिया है। जी, शायर, अफसाना निगार, गीतकार, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, संवाद लेखक, निर्देशक और विद्वान, अपने हर कर्म क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले गुलजार साहब की उनका फन चाहे वो नज्म में हो या नसर में, दरअसल जिंदगी के अनुभवों को शायराना एहसास की पलकों से चुनकर उन्हें शब्द में बयां करता है। तो क्यों ना जी शगुन, सबसे पहले उन्हीं की गजल उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं।
1: कभी कभी जब मैं बैठ जाता हूँ अपनी नज्मों के सामने निस्फ दायरे में, मिजाज पूछूं कि एक शायर के साथ कटती है किस तरह से, वो घूर के देखती हैं मुझको, सवाल करती हैं उनसे मैं हूँ या मुझसे हैं वो सारी नज्में कि मैं समझता हूँ वो मेरे जीन से हैं, लेकिन वो यूं समझती हैं उनसे है मेरा नाक नक्शा, ये शक्ल उनसे मिली है मुझको। मिजाज पूछूं मैं क्या, एक नज्म आगे आती है छू के पेशानी पूछती है, बताओ अगर इंतशार है कोई सोच में तो, मैं पास बैठूं मदद करूं और बीन दूं उलझने तुम्हारी, उदास लगते हो एक कहती है पास आकर,
0: उदास लगते हो ये कहती है पास आकर। उनका ये भी कहना था कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई, दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम जैसे जेवर संभालता है कोई।
2: वेल एक्सप्रेस्ड फरत, आई मस्ट से दैट। एंड हिज वर्क्स, दे आर पेपर्ड विद वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एज वेल, अदर डायलेक्ट्स एज वेल, एंड दे रिफ्लेक्ट हिज बिलीव दैट लैंग्वेज इज अलाइव एंड इट्स फॉरएवर इवॉल्विंग एंड दैट क्रिएटिव वर्क्स दे शुड रिफ्लेक्ट द टाइम इन विच दे आर क्रिएटेड, सच अ प्रोफाउंड थॉट।
0: जी बिल्कुल, और गुलजार ने नज्म के मैदान में जहां भी हाथ डाला अपने नए पेन से नया गुल खिलाया, और उन्होंने बच्चों के लिए भी अपनी नज्म लिखी जो काफी प्रिय रही, जंगल जंगल बात चली है। तो क्यों ना सुन ले,
2: लेट्स लिसन इन।

0: as a lyricist in 1963 film Bandini and worked with many music directors. They include R.D. Barman, Vishal Bhardwaj, A.R. Rahman as well.
1: जी बिल्कुल, और गुलजार ने अपनी फिल्मों में अनगिनत अभिनेत्रियों को भी बेहतरीन किरदारों में पेश किया. उन्होंने सुचित्रा सेन के साथ आंधी, रेखा के साथ इजाजत, हेमा मालिनी के साथ खुशबू, किनारा, शबाना आजमी के साथ देवता और शर्मिला टैगोर के साथ मौसम, नमकीन जैसे

0: इन्हीं गीतों के साथ अब वक्त चला है अपने श्रोताओं से अनुमति कहने का, तो शगुन और फरहत को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है, और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
6: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए, जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया, और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
5: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: सरकार ने वर्ष 2014

0: से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्रनाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्रनाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससीसी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी।

0: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम, 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए एक मिसाली नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुज़राए माहौलियात के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबरा जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी यू की को शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। झारखंड हुकूमत ने रियासत में तलबा के 24 दिन तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को मनसूख कर दिया है। हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहानात भी रद्द कर दिए हैं। इस ऐलान के बाद रांची में एहतजाज के मकाम पर तलबा ने जश्न मनाया। ताहम CBI जांच का मुतालिबा अभी पूरा नहीं किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड हुकूमत ने JSSC CGL इम्तिहान और TDPL एजेंसी के जरिए मुनाकिद किए गए तमाम मुसाबकती इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला किया है। इसके अलावा हुकूमत ने 2014 से अब तक मुनाकिद किए गए JPSC और JSSC के भर्ती इम्तिहानात की तहकीकात का भी ऐलान किया है। यह फैसला वज़ीर आला हेमंत सोरेन की सदारत में मुनाकिदा काबीना की खसूसी मीटिंग में लिया गया। एहतजाज करने वाले तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस फैसले का खैर मकदम किया और मिठाइयां तकसीम करके और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। हुकूमत ने 2014 के बाद से JPSC और JSSC के जरिए किए गए भर्ती के अमल की जांच करने और इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात की सिफारिशात पेश करने के लिए IAS ऑफिसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया है। इस दौरान रियासती वजीर दीपिका पांडे सिंह, वजीर सेहत इरफान अंसारी और रुकन असेंबली जयराम कुमार ने सदर अस्पताल का दौरा किया और देवेंद्र नाथ महतो समेत एहतजाज करने वाले दीगर तलबा की भूख हड़ताल जूस पिलाकर खत्म कराई। देवेंद्र नाथ महतो ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस फैसले से उनके अहम मुतालबात पूरे हो गए हैं। JPSC JSSC न्याय मंच ने भी ऐलान किया है कि वो फिलहाल अपना एहतजाज मुअत्तल कर रहा है। तलबा रहनुमा रविंद्र पासवान ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। ताहम उन्होंने कहा कि रिफॉर्म मंच मुबैना बेजाब्तियों की CBI जांच का हुक्म जारी होने तक अपना एहतजाज जारी रखेगा। हुकूमत के फैसले के बाद उन उम्मीदवारों में भी एहतजाज शुरू हो गया जिन्हें पहले ही JSSC CGL इम्तिहान के जरिए मुलाजमत के लिए मुंतखब किया जा चुका है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे सख्त अमरीकी इंतखाबी जाब्तों के लिए मिसाल करार दिया है। जनाब ट्रंप ने भारत के इंतखाबी तरीक़ेकार को इंतखाबी जांच पड़ताल के लिए मिसाली नमूना करार दिया और अमरीका में वोटर शनाख्त से मुतालिक जरूरतों में सख्ती बरतने की वकालत की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब ट्रंप ने भारत के आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ अपनी हालिया बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कुमार ने सवाल पूछा था कि अमरीका में मजाज तस्वीरी शनाख्ती दस्तावेज के बगैर इंतखाबात किस तरह मुनाकिद होते हैं। जनाब ट्रंप ने इस तबसे के जरिए अपने उस मुतालबे को दोहराया कि अमरीकी कांग्रेस को सेफ गार्ड अमरीकन वोटर एलिजिबिलिटी सेव अमरीका एक्ट को मंजूर करना चाहिए। इस मुजवदा कानून के जरिए वफाकी इंतखाबात में वोटिंग के लिए सख्त जरूरतें मुतारफ कराने की तजवीज़ है। इसके तहत राय दहिंदगान को वफाकी इंतखाबात के लिए रजिस्टर करते वक्त अमरीकी शहरियत का दस्तावेजी सबूत और हुकूमत की जानिब से जारी करदा तस्वीरी शनाख्ती कार्ड फराहम करना होगा। व्हाइट हाउस ने इस कानून को अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ अमरीकी शहरियों की जानिब से राय दहिंदगी को यकीनी बनाने वाला कदम करार दिया। अमरीकी इंतजामिया ने कहा कि भारत और ब्राजील ने वोटर शनाख्ती कार्ड को बायोमेट्रिक डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया है, जबकि अमरीका शहरियत के लिए बड़े पैमाने पर खुद से तस्दीक पर इन्हिसार करता है। जनाब ट्रंप ने भारत के आम इंतखाबात के वसी दायरे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के हालिया आम इंतखाबात में तकरीबन 462 मिलियन अफराद ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। दिल्ली से कुमोदी पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत ने कहा कि ये इजलास अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, इत्तफाक राय को फरोग देने और माहौलियात से मुतालिक बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। तफसील हमारे रामा निगार से।
2: ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के इजलास की सदारत माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव करेंगे। ये इजलास भारत की 2026 ब्रिक्स सदारत के वसीतर मौजू इस्तेहकाम, इख्तिरा, ताउन और पायदारी की तश्कील के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। भारत ने ब्रिक्स माहौलियात वर्किंग ग्रुप के तहत खसूसी तवज्जो के लिए 4 तरजीही शोबों की निशानदेही की है। इनमें पायदार तर्ज जिंदगी को फरोग देना, शजरकारी, जंगलात में आग पर काबू पाने का इंतजाम और कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत, सर्कुलर इकोनॉमी और आबोहवा की तब्दील के असरात से मुताबिकत पैदा करना शामिल है। ब्रिक्स माहौलियात वर्किंग ग्रुप का क्याम 2015 में मॉस्को में मुनाकिद होने वाले ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के पहले इजलास के दौरान अमल में आया था। इसका मकसद ब्रिक्स मुल्कों के लिए माहौलियाती तरजीहात से मुतालिक अहम उमूर पर तवज्जो देने, तजर्बात का तबादला करने, बेहतरीन तरीक़ेकार शेयर करने और रुकन ममालिक के दरमियान इज्तिमाई इकदामात को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना था। नई दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को कल काठमांडू के शीतल निवास में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। इस मौके पर नेपाल के नायब सदर राम सहाय प्रसाद यादव, वजीर खारजा शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के सफीर नवीन श्रीवास्तव और नेपाली फौज और हुकूमत के आला ओहदेदार मौजूद थे। जनरल सेठ नेपाल के अपने हमनसब जनरल अशोक राज सिगडेल की दावत पर इतवार को सरकारी दौरे पर नेपाल पहुंचे। एजाजी जनरल का ओहदा देने की ये रिवायत साल 1950 से जारी है, जिसके तहत नेपाल और भारत एक दूसरे की फौज के सरबराहान को एजाजी जनरल का ओहदा अता करते हैं। जनरल सेठ ने नेपाली फौज के सदर दफ्तर में जनरल सिगडेल से भी मुलाकात की। दोनों फौजी सरबराहों ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के

0: तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। जनरल सेठ ने भारतीय सिफारतखाने में सफीर नवीन श्रीवास्तव से भी मुलाकात की, जिसमें नई दिल्ली और काठमांडू के दरमियान जामे ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर गुफ्तगु हुई। केरलम में विजिंजम सी पोर्ट से रास दरामदात और बरामदात आज से शुरू हो जाएंगी। केरलम के वजीर आला वी डी सतीशन सुबह 11:15 इन खिदमात का इफ्तिताह करेंगे। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: केरलम में विजिंजम सी पोर्ट से रास दरामदात और बरामदात आज से शुरू हो रही है, जो कि बंदरगाह के कामकाज के नए मरहले का आगाज होगा। अब तक विजिंजम बुनियादी तौर पर बैन अल-अक़वामी कार्गो हब के तौर पर काम करता रहा, जहां बड़े जहाजों जिन्हें मदरशिप्स कहा जाता है पर आने वाले कंटेनर को आगे के सफर के लिए छोटे जहाजों पर मुंतकिल किया जाता था। कस्टम्स के आला कमिश्नर ने 17 जुलाई को दरामदात और बरामदात की इजाजत दी। शुरुआत में विजिंजम बंदरगाह पर दरामदात और बरामदात दोनों के लिए सिर्फ फुल कंटेनर लोड और FCL कार्गो ही इस्तेमाल होंगे। इस बंदरगाह को गुज़श्ता साल 2 मई को मुल्क के नाम वक्फ किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलुर्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजर सानी SIR के लिए साल 2002 को बुनियाद बनाने से मुतालिक इंतखाबी कमीशन के फैसले में मदाखलत करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने कल एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से दायर की गई मफादी आम्मा की अर्जी को खारिज कर दिया। इस अर्जी में चुनाव कमीशन को यह हिदायत देने की दरख्वास्त की गई थी कि सिक्किम में जारी SIR के लिए साल 2002 के बजाय साल 1993 को बुनियाद बनाया जाए। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन ने मुख्तलिफ रियासतों में जारी SIR के लिए यकसां तौर पर 2002 को बुनियादी साल मुकर्रर किया है, क्योंकि आखिरी मरतबा ऐसी नजरसानी उसी साल की गई थी। ताहम बेंच ने कहा कि दरख्वास्त गुजार मुनासिब रियायत के लिए इंतखाबी कमीशन से रुजू कर सकता है। तालीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी, इम्तिहानात मुनक्किद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। वजीर मौसूफ ने इम्तिहानात से मुतालिक जाब्तों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। उन्होंने राजदाराना अमली सरगर्मियों, अलग थलग कमरों, एयर गैप्ड सिस्टम्स यानी बाहरी नेटवर्क से मुनक्कत निज़ाम, डिवाइस जमा करवाने जैसे जाब्तों पर जंगी पैमाने पर अमल किए जाने की तलकीन की। NTA से कहा गया कि वह सभी इम्तिहानात के अमल की तफसीली जांच करे और इसे दुरुस्त करने के लिए किए गए मुतालिका इकदामात के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज झारखंड में शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने बिहार, छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, सिक्किम, शुमाली मशरकी रियासतों, कराईकल, पुडुचेरी, केरलम और माहे में जुमेरात तक शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में अगले 2 से 3 दिन के दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाओं की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का सिलसिला जारी है। गुजशत 24 घंटे के दौरान रियासत भर में बेशतर मकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। कई मकामात पर बारिश के सबब मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में कल रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मंडी जिले के कटोला में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर है। मूसलाधार बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से तकरीबन 87 सड़कें बंद हैं, 80 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि तकरीबन 994 करोड़ रूपये की सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: इस दौरान मौसमियात के महकमे ने आज उत्तराखंड के गढ़वाल खित्ते के पहाड़ी जिलों में इंतहाई शदीद बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक रियासत में बारिश का सिलसिला जुमे के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि किसी शख्स को चढ़ते सूरज के सामने नहीं झुकना चाहिए और यही असल शुजात है। वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए ये बात कही। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन चीन के शी यू की को मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में हरा दिया। आयुष ने शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पर मुश्तमिल खवातीन की डबल्स की जोड़ी

0: और मायानाज खिलाड़ी पीवी सिंधु भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। खवातीन के सिंगल्स में सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबेल को 21-7 और 21-11 से शिकस्त दी। खवातीन के डबल्स में ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को सीधे सेटों में 21-9 और 21-13 से हरा दिया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत की सदारत में मुनक़िदा ब्रिक्स माहौलियाती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि इस मीटिंग में आलूदगी, हयातियाती तनवु, शजरकारी और सर्कुलर मईशत के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया गया। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि योम आज़ादी से कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ रियासतों में ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्द ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए इसे तबाह कर दिया है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी वजीर ममलकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को सफे अव्वल पर शाये किया है कि तकनीक पर मबनी पेंशन खिदमात की फराहमी से माली वसाइल में नुमाया बचत हुई है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए तमाम दीगर भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निजाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए मिसाल नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वुजराए माहौलियात के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी यूकी को शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।

वो मिल जाता तो कहानी खत्म हो जाती, वो मिल जाता तो कहानी खत्म हो जाती। अब वो जुदा हुआ है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। जी हाँ, कैसे भी हो हालात, करते रहिए म्यूजिकल दिल्लगी मंगल की प्रभात, मंगल की मुक्ता के साथ।

जनाब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर रोने का भी समय आए तो एक साथ रहिए, बहुत जरूरी है यार। इसीलिए लिखा भी गया है कि कुछ न कुछ बोलते रहो हमसे, कुछ न कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। 8:51 और 25 सेकंड हो चले हैं, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

अच्छा, आज सुबह जब अखबारें और किसी तरह से सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे तो बहुत एक इंटरेस्टिंग खबर सामने आई जनाब, और सोचा उसके आपके साथ जरूर साझा किया जाए इस बात को। आप जानते हैं, इस साल में अब तक जितने दिन बीत चुके हैं उसमें कल तक 150 दिन हो चुके हैं जब दिल्ली वाले कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा साफ हवा में सांस ले रहे हैं। जी हाँ, सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि 2020 यानी कोविड वर्ष के बाद इस साल अभी तक सबसे ज्यादा दिन जो हवा की गुणवत्ता थी वो साफ रही थी। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के नीचे बना रहा, जो 100 से 200 मध्यम श्रेणी में आता है। और कारण जब देखने की कोशिश की तो उसमें यकीनन मानसून की अच्छी बारिश और तेज हवा तो रही ही, लेकिन बिल्कुल मत भूलिएगा जो योगदान थोड़े थोड़े आप भी करते हैं वायु की गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए, उनकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अपने प्रयास ऐसे ही बना करके रखिए, हमारी हवा स्वच्छ होगी, दिल्ली की हवा साफ होगी, तो हम एक बेहतर और सेहतमंद जीवन जी पाएंगे।

जी हाँ, यूं ही नाचते गाते रहिएगा। अभी हिंदी अंग्रेजी में होंगे समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल्लगी का ये सफर रहेगा जारी नाच के साथ। मंगल के मुक्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गाजा संघर्ष विराम परियोजना पर इजराइल के प्रधानमंत्री

0: बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुश्नर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। केरलम में विजिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को सदैव आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे और अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with the MLA Jai Ram Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mahato and other protesting students by offering them juice. Mahato thanked the government and said the decision addressed major demands, with the JPSC-JSSC Nyay Manch announcing that it was suspending its agitation for now. US President Donald Trump has praised India's voter ID card system and hailed it as a model for stricter US election rules. He cited India's electoral system as an example of election security while renewing his call for stricter voter identification requirements in the United States. In a social media post, Mr. Trump referred to a recent conversation with India's Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. He said Mr. Kumar had questioned how elections could be held in the United States without a mandatory valid photo identity document. Mr. Trump used the remarks to reiterate his demand that the U.S. Congress pass the Safeguard American Voter Eligibility, Save America Act. The proposed legislation seeks to introduce stricter requirements for voting in federal elections. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Environment, Forest and Climate Change Ministry said the meeting will provide a platform to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. The BRICS Environment Ministers meeting will be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Indian Army Chief General Dhiraj Seth has been conferred the rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Modale during an investiture ceremony at Sheetal Nivas in Kathmandu yesterday. Nepal

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू एन अमेजिंग मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूँ आपका फेवरेट मॉर्निंग शो म्यूजिकल दिल लगी, जहाँ होंगी ढेर सारी बातें, एंजॉय करेंगे एक से बढ़कर एक एनर्जेटिक और शानदार सॉन्ग्स, तो कुल मिलाकर माहौल होगा एकदम रिफ्रेशिंग। तो बने रहिए साथ और सुबह की ताजी हवा के साथ एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि हर सुबह अपने साथ एक कोरा कागज लेकर आती है ना, जिस पर आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत की कहानी लिख सकते हैं। हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, कोई आसमान छूना चाहता है तो कोई जमीन पर रहकर ही दिलों पर राज करना चाहता है। और अगर आप भी रोज सुबह उठकर अपने सपनों के पीछे भागने वालों में से हैं, तो ये चंद लाइनें बस आपके और मेरे लिए हैं। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हर अगर हौसला हो तो फासला क्या है। वो जो अपनी आंखों में ख्वाबों के रंग भरते हैं, उन दीवानों के आगे मुश्किलों का ये दायरा क्या है। माना कि सफर में धूप बहुत है, पर जो छांव में बैठ गए तो फिर वो काफिला क्या है।

अच्छा एक बात और है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, जिंदगी में जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो रास्ते में रुकावटें आना शत प्रतिशत तय है। तो अगर आज आपके प्लान्स काम नहीं कर रहे हैं या फिर टाइम थोड़ा टफ चल रहा है, तो निराश होकर बैठ मत जाइएगा, क्योंकि ये समझदारी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बस थोड़ा रुक कर एक गहरी सांस लीजिएगा और गौर फरमाइएगा मेरी इस बात पर कि अगर मुकद्दर के दरवाजे नहीं खुल रहे तो रास्ते बदलिए, अपने सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ हमेशा अपनी पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आप थक गए हों, कुछ कंफ्यूज्ड हों, पर जो लोग इस पॉइंट पर आकर हार मान लेते हैं ना, वो कभी जान ही नहीं पाते कि कामयाबी बस अगले मोड़ पर ही उनका इंतजार कर रही थी। सो कीप गोइंग, कीप वर्किंग, भले ही आज रिजल्ट आपके फेवर में ना हो, लेकिन आपके एफर्ट्स माने आपकी वो सच्ची कोशिशें कभी बेकार नहीं जाएंगी। और जब सही वक्त आएगा ना, तो आखिर में ये जिंदगी आपको वो सब लौटाएगी जिसके आप सच में हकदार हैं।

तो भूल के सारे गम और सारी टेंशन, अपना पूरा फोकस कीजिए उन खुशियों और मौकों पर जो इस नई सुबह ने आपको दिए हैं। और सुनते रहिए म्यूजिकल दिल लगी मेरे यानी नाज के साथ, जहां अब बात होगी आज के इस खूबसूरत और सुहाने दिन की। तारीख है आज 18 अगस्त और दिन है मंगलवार। बाहर मौसम का हाल कुछ यूं है कि दिल्ली समेत पूरे NCR में बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो वहीं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा समेत देश के लगभग 19 से 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इन्फ्लुएंजा और कॉमन वायरल फीवर भी इन दिनों जोर पकड़ रहा है, तो रखें अपना ख्याल और इम्यूनिटी को किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ने देना है। 24 से 48 घंटों तक अगर तेज बुखार बना हुआ है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, खुद से कोई भी दवा या इलाज ना ले। अभी इंजॉय करें मेरे साथ ये प्यारा सा ट्रैक और फिर जब लौटेंगे तो जानेंगे कि क्या कहता है आज के दिन का इतिहास विद मी यानी नाज़।

18 अगस्त यानी आज की तारीख साक्षी है विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के कुछ बहुत ही शानदार माइलस्टोन्स की। बात करें आज ही के दिन की तो वो साल था 1868 जब फ्रांसीसी खगोल शास्त्री पियरे जॉनसन ने भारत के गुंटूर में पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान हीलियम गैस की खोज की थी। जी हाँ, वही गैस जो आज गुब्बारों से लेकर रॉकेट साइंस तक में इस्तेमाल होती है और उसकी खोज का कनेक्शन हमारे भारत से जुड़ा है। और जनाब, बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत के युवाओं और शिक्षा के इतिहास में भी आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि 18 अगस्त 1951 को ही पश्चिम बंगाल में भारत के पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT खड़गपुर की स्थापना की गई थी।

IIT खड़गपुर, जिसने हमारे देश को दुनिया भर में एक नई पहचान दी और एक से बढ़कर एक इंजीनियर्स और वैज्ञानिक दिए। तो इन बेहतरीन उपलब्धियों के नाम ये खूबसूरत सा गाना तो बनता है

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज़ मांझा कभी ना।
6: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

म्यूजिकल दिल लगी चल रहा है प्रोग्राम जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर विद मी यानी नाज। जहां बातों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और आपको बताते हैं कि और किन वजहों से खास है आज की ये तारीख यानी 18 अगस्त। आज ही के दिन साल 1900 में जन्म हुआ था एक ऐसी निडर और विजनरी महिला का जिन्होंने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया। नाम है उनका विजया लक्ष्मी पंडित। जी हाँ, वो सिर्फ भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री ही नहीं बनी बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव भी उन्हें ही हासिल हुआ। उनकी इस उपलब्धि ने दुनिया को बता दिया कि भारतीय महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आपको जाना है कहीं नहीं, रुक कर रहना है यहीं, क्योंकि गपशप रहेगी जारी आपकी और मेरी इस एनर्जेटिक सॉन्ग के बाद भी।

बहुत अंदर तक तबाही मचाता है। वो एक आंसू जो आंख से बह नहीं पाता। ठीक इस शेर की तरह, मुसाफिर हूं यारों, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, या फिर मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। जब भी इन गानों का जिक्र होता है तो जानते हैं ना कौन सा नाम जहन में आता है?

जी हाँ, गुलजार साहब का। आज यानी 18 अगस्त के दिन ही साल 1934 में शब्दों के इस जादूगर का जन्म हुआ था। संपूर्ण सिंह कालरा से गुलजार साहब बनने तक का उनका शानदार सफर भारतीय सिनेमा के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। एक मैकेनिक के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले गुलजार साहब ने अपनी कलम से जो नज़में और कहानियां लिखी, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हैं। तो फिर चलिए, आज उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर उनकी लिखी एक बेहद शानदार और रिदम से भरी नज़म सुनते हैं, साथ ही उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद भी देते हैं।

जहां आज का दिन हमें जश्न मनाने की कई वजहें देता है, तो वहीं 18 अगस्त की आज की ये तारीख भारतीय इतिहास के एक ऐसे नायक की याद भी दिलाती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज ही के दिन साल 1945 में ताइवान में हुए एक कथित विमान हादसे में उनका निधन हो जाने की दुखद खबर सामने आई थी।

तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा देकर करोड़ों युवाओं के दिलों में देशभक्ति की आग जगाने वाले नेताजी का आज स्मृति दिवस है। साथ ही उनके विचार और आजाद हिंद फौज का वो जज्बा भी अपने अंदर जिंदा करने का दिन है आज।

नदियां हमारी माँ हैं और जल ही हमारा जीवन। बूंद बूंद के मोल को समझो, इसी में है सबका रक्षण। कल कल करता बहता पानी, ये धरती की है कहानी। सूख गए जो कुएं बावड़ी, तो फिर कैसे बचेगी जिंदगानी। और बिल्कुल यही संदेश देता है भारत सरकार का एक बेहद अहम और जरूरी अभियान, जिसका नाम है अटल भूजल योजना। दोस्तों, जमीन के नीचे लगातार घटता जलस्तर आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, और इसी संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है समुदाय की भागीदारी से पानी की एक एक बूंद को सहेजना और किसानों तक सिंचाई के लिए सही मात्रा में जल पहुंचाना। बस अब जरूरत है तो इस बात की कि हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की बर्बादी को रोकें, क्योंकि ये तो आप जानते ही है ना कि जल है तभी हम सबका कल है।

तो जितना हो सके पानी को बचाएंगे। इसी जिम्मेदारी, इसी वादे और एक खूबसूरत कल की आशा के साथ म्यूजिकल दिल्लगी के आज के सफर को हमें थामना होगा यहीं। मैं मिलूंगी आपसे ठीक 10:30 यानी 10:30 पर। दिल का मेल बॉक्स लेकर रहूंगी हाजिर, जिससे पहले आप जरूर जानिएगा हिंदी और अंग्रेजी में देश और दुनिया से जुड़ी हर जरूरी खबर। अभी एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत गाना और सुनते रहिए FM गोल्ड। हैव अ सुपर एनर्जेटिक एंड ब्यूटिफुल डे अहेड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान पत्र प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। उन्होंने ये भी बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। केरला में विंझिंजम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता ना करे और अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। केरलम में विजिंझम समुद्री बंदर का से आज से सीधा निर्यात और आयात हुआ शुरू और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमरीका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का

0: मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिगदिल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी प्रदान किए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केरलम में विजिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: विजिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विजिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन किया। इसमें 14 एशियाई देशों के 272 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 130 भारतीय हैं। श्री धामी ने कहा कि स्केटिंग ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करना उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी ने राज्य में आधुनिक और विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना की मजबूत नींव रखने में मदद की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में खेल विरासत योजना लागू करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इस योजना के तहत 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
2: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यूकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ग्रीस के पर्यटक द्वीप सिफनोस में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रीक अधिकारियों ने बताया कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पायलट और 2 यात्रियों की मौत हुई। हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की पहचान और दुर्घटना की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जाम्बिया के राष्ट्रपति हाइकांडे हिचिलेमा दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हो गए हैं। राष्ट्रपति हिचिलेमा ने 51% से अधिक वोट प्राप्त कर चुनाव में सीधे जीत हासिल की। चुनाव आयोग के अनुसार हिचिलेमा को 29,65,326 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी विपक्षी नेता ब्रायन मुंडुबिले को 18,56,217 वोट मिले। अमरीका के विशेष दूत जार्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गाजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गाजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही।

नमस्कार और सुस्वागतम। एक बार फिर आ गई हूँ मैं नाज आपके साथ, हाजिर हूँ लेकर दिल का मेल बॉक्स, जहाँ आपके मैसेजेस और ईमेल्स हम करते हैं प्रोग्राम में शामिल, साथ ही होते हैं आपकी पसंद के सदाबहार गीत भी। तो मत कीजिए देर, जल्दी से fmgoldair@delhi@gmail.com पर कर दीजिए ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज अगर आप करना चाहते हैं, तो नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए 9868686853। और चूंकि आप नंबर भी पहले से ही जानते हैं और ईमेल एड्रेस भी, तो आपके मैसेजेस और ईमेल्स पहले से ही आने शुरू हो गए हैं, जिन्हें मैं बिना देर किए प्रोग्राम में करती हूँ शामिल। तो सुनिए, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। क्या बात है, बड़ी ही गहरी और सटीक बात लिखकर भेजी है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु और कमलेश जी ने। होली चौक उत्तम नगर से आया है ये ईमेल हमारे पास और हम कह रहे हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए। अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं दिनेश वर्मा जी का, रिंगनी छत्तीसगढ़ से लिखा है मैसेज। करुणा वर्मा इनके साथ शामिल हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश इन्होंने लिखकर भेजी है। राम नरेश चिक जी का भी मैसेज मुझे नजर आ रहा है, इनके साथ शामिल हैं करण, अल्पेश, रघु, रचना, सृष्टि और संगम विहार हनुमान मंदिर के पास से इन्होंने मैसेज भेजा है और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देर नहीं करते हैं और एक फरमाइश भी जल्दी से पूरी कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है जो अब हम सब सुनने वाले हैं, धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार की ये फरमाइश है। भोपालगढ़ राजस्थान से आई है ये फरमाइश, बहुत ही प्यारा गीत है, लता जी की सुरीली आवाज और भूपेंद्र जी का दिलकश अंदाज। आइए सुनते हैं।

खूबसूरत महफिल सजी की, गोल्ड की हमेशा यही सौगात, बादलों का भी संगीत, ऊपर से रिमझिम हो रही बरसात। सावन अपने अंदाज में बांट रहा प्यार ही प्यार, हर कोई इस्तकबाल करे और दुआओं का लगे भंडार। गोल्ड पर बजेंगे मधुर गीत और हम आनंद उठाएंगे। श्रोता अपने दिल के भाव से अपनी बा कमाल ईमेल सजाएंगे। खुशियों से लबरेज गोल्ड में आरजे प्यार का रंग भरते हैं। मोहब्बत हमसे कायम रहे,

ये दुआएं श्रोता भी करते हैं। सीधा चंडीगढ़ से आया है ये मैसेज। सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी ने भेजा है। गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभु दयाल खटक भी इस मैसेज में शामिल हैं और हम कह रहे हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत से मैसेज के लिए। और इसी के साथ अगला मैसेज शामिल हम कर रहे हैं अनिल मोहन जी का, और पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से लिख रहे हैं उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक इनके साथ शामिल हैं और किसी भी अच्छे से गाने में शामिल होने की ये ख्वाहिश रखते हैं। तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, अगला गाना जो अब प्ले होगा उसमें आप शामिल हैं। लुबना अंसारी जी का मैसेज मैंने खोल लिया है, और आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना और आलिया ने भेजा है ये मैसेज। बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश लिखकर भेजी है, और कहाँ से भेजी है, शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से आया है ये मैसेज। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज आर कुमार जी का खोल लेते हैं। मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा इसमें शामिल हैं। कोई भी गीत सुना दीजिए। ये इन्होंने कहा है वडिंग खेड़ा पंजाब से लिखा है ये ईमेल। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मधु किरण जी का भी मैसेज मुझे दिख रहा है, लेकिन इसमें लिखा है दिल्ली से भेजा है ये मैसेज, लेकिन काफी नीचे लिखा है, और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश भी इन्होंने लिखकर भेजी है हमें। मधु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैसेज शामिल करते हैं, उसके बाद सुनेंगे खूबसूरत सा गीत। सुधाकर जाधव जी का मैसेज खोल लेते हैं। प्रशांत राजे, जगुताई राजे जाधव देशमुख और कुमार संचित देशमुख इनके साथ शामिल हैं। प्रथमेश, सर्वद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख भी इसमें शामिल हैं। मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से आया है ये मैसेज। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब सुनते हैं अगला गाना। आशा जी की खूबसूरत आवाज में बहुत ही प्यारा गाना है ये। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका, वाणी थांदी ने टोरोवाल नवाशहर पंजाब से भेजी है इस गाने की फरमाइश।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

देखिए जी, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। ये बड़ी अच्छी सी बात लिखकर भेजी है हमें अजीत कसाना जी ने। माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना इनके साथ शामिल हैं इस मैसेज में। लदावली जिला मुरादाबाद से भेजा है ये मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं चिन्मय महतो जी का। जमशेदपुर से भेजा है मैसेज रेखा महतो, चिन्मय महतो, शिवांश मंडल और कुमार सौरभ महतो इसमें शामिल हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गाना ये सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज मुझे नजर आ रहा है भागवत वर्मा जी का। शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा इस मैसेज में शामिल हैं। दतरेंगी से आया है ये मैसेज हमारे पास। अगला मैसेज बोधराज खोरवाल जी का खोल लेते हैं और इन्होंने भी बड़े ही खूबसूरत गीत की फरमाइश लिखकर भेजी है। कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल इनके साथ शामिल हैं। उत्तम नगर दिल्ली से आया है ये मैसेज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगला मैसेज मुझे नजर आ रहा है सुरेश चौरसिया जी का और इनके साथ शामिल हैं श्रीमती सरोज चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया, सुबोध सलोनी, बाबू शिवा शिवानी इनके साथ शामिल हैं, सुजाता, पंकज, पीहू और दिया भी शामिल हैं। और ये आया है मैसेज फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज से। और भी लोग शामिल हैं इस मैसेज में, बलकेश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता और सुमित और वीर चौरसिया भी शामिल हैं। तो पूरे चौरसिया परिवार को बड़ा सा थैंक यू इस मैसेज के लिए और कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश हम जल्द से जल्द पूरी करें। और भी कुछ लिखा है, लिख रहे हैं कि सादर नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करें, हम आपकी महफिल में फूले से चले आए। अच्छा जी, बेहद लाजवाब गीत और सुंदर प्रस्तुति के लिए आप बधाई की पात्र हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तारीफ के लिए। और चलिए, ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि आप भूले से आ गए, पर अब उम्मीद है मुझे कि आप यूं ही आते रहेंगे इस महफिल में और हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। अगला मैसेज टीडी मल्होत्रा जी का, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप भी शामिल हैं इसमें। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आया है ये मैसेज। चलिए, अब बारी आ गई है अगले गाने को सुनने की। बहुत ही खूबसूरत गाना मैं आपको सुनवाने वाली हूँ अब, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। और एक खास बात इस गाने से जुड़ी ये है कि इस गाने के जो लिरिसिस्ट हैं वो हैं गुलजार साहब। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है तो उन्हीं का ये बेहद खूबसूरत गाना हम सुनने वाले हैं, जिसकी फरमाइश हमें लिखकर भेजी है नवाब।

मद भारती, बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली, सिराज मिथुन, संजय ढींगिया और सलीम अख्तर साहब ने। और ये गाना हम सुने उससे पहले एक बात आपको बताऊं, किसी भी रिश्ते की उम्र जो है ना, वो ये देखकर नहीं पता लगती कि वो रिश्ता आपके साथ कितने दिन, कितने महीने, कितने साल रहा, बल्कि उस रिश्ते की उम्र तो ये देखकर पता लगती है कि उनका कितना सामान आपके पास पड़ा है।

देखिए, सामान लौटे या ना लौटे, हम लौट आए हैं। दिल का मेल बॉक्स चल रहा है प्रोग्राम, जहां आपके प्यार भरे ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस मैं यानी नाज कर रही हूं प्रोग्राम में शामिल। साथ ही हम मिलकर सुन रहे हैं आपकी फरमाइश के प्यारे प्यारे गाने। तो जनाब, हम भी रेगुलर कनेक्ट हैं, अभी तक नो रिस्पॉन्स। व्हाट इज दिस? ये नाराजगी जाहिर की है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, लीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट ने। माफ कीजिए कि अभी तक आपको शामिल नहीं कर पाए, पर अब आप शामिल हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपकी नाराजगी भी दूर हो गई होगी और एक बड़ी सी स्माइल भी आपके चेहरे पर आ ही गई होगी। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना भी इस मैसेज में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। भारत भूषण जी का भी मैसेज मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। और अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु और संस्कृति पौरुष इनके साथ शामिल हैं। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से आया है ये मैसेज, और एक बहुत ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश लेकर भेजी है। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं गौरी शंकर वर्मा जी का। लिख रहे हैं कि ना

बेटा राम राम, 9 बजे से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम को सुनने के लिए, प्रोग्राम्स को सुनने के लिए और हमें मैसेज करने के लिए भी। गौरी शंकर जी का ये मैसेज नागलोई से हमें मिला है और बहुत ही खुशी हुई मुझे इनका मैसेज पढ़ने के बाद। और जब बेटा कहकर मैसेज लिखते हैं ना गौरी शंकर जी, तो बहुत ही वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी बड़े ने सर पर हाथ रख दिया है। उग्रसेन यादव जी का एक मैसेज भी मुझे नजर आ रहा है। शकुंतला यादव और गरिमा इसमें शामिल है, न्यू दिल्ली से आया है मैसेज और इन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश लिखकर भेजी है हमें। अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं चलिए, दिग्दर्शन गौर जी का। कविता गौर इनके साथ शामिल है, मेरठ कैंट से इन्होंने मैसेज लिखा है और कह रहे हैं कि कोई भी सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए अपनी प्लेलिस्ट से। जी नहीं, इस प्रोग्राम में तो प्लेलिस्ट आप बनाते हैं, आपकी फरमाइश के गाने ही हम सुनवाते हैं। चलिए कोई नहीं, टाइम बहुत कम बाकी है तो जल्दी से कुछ और मैसेजेस शामिल करती हूँ। प्रोग्राम का आखिरी गाना, आखिरी फरमाइश हम सुने उससे पहले लालगिरी जी का मैसेज। हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी इनके साथ शामिल है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लिखा है इन्होंने मैसेज। अगला मैसेज सुनील पाठक जी का। कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक इनके साथ शामिल है और अनारकली बाजार जगराओ से इन्होंने हमें मैसेज लिखा है। आपका भी बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ प्रकाश गोगिया जी का भी मैसेज आया है, लिख रहे हैं कि ना साहिबा, मेरे कुछ संदेश आपके पास पड़े हैं, उनको भी खोलकर पढ़ लीजिए। जी देखिए, हमने पढ़ लिए आपके संदेश। दिल्ली से आपने ये मैसेज भेजा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एसपी गोयल जी का मैसेज और इन्होंने लिखा है कि जब ये गाना नया नया आया था, जो भी हमने सुना, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, इसे मैंने केवल एक बातचीत समझा था, लेकिन बाद में इसके शब्दों की गूढ़ता समझ आई, तब इसकी अहमियत का पता चला। तभी तो गुलजार साहब यूं ही गुलजार नहीं है, है ना। सतप्रकाश सनोठिया जी ने ये मैसेज लिखा है रोहिणी से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसी के साथ घड़ी पर डाल लेते हैं नजर, बहुत ही कम वक्त बाकी है जनाब, तो चलिए प्रोग्राम का आखिरी मैसेज शामिल कर लेते हैं। और कौन है वो लकी लिसनर? सलीम अख्तर जी हैं, लिख रहे हैं कि हमारा कोई मैसेज शामिल नहीं होता, कमाल है। देखिए, आपकी नाराजगी दूर करने के लिए ही मेरी नजर गई थी आपके मैसेज पर। रेशमा बेगम इनके साथ शामिल है, अलीगढ़ से इन्होंने मैसेज लिखा है। माफ कीजिए, आपकी फरमाइश तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वक्त अब बहुत कम बाकी है, लेकिन एक प्यारा सा गीत आपको जरूर सुनवाएंगे, जिसकी फरमाइश हमें भेजी है सईद अब्बासी साहब ने। निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान इस मैसेज में शामिल है। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से आया है ये मैसेज और ये गाना अरुणा ईरानी जी की अदायगी इसमें है और आज है उनका जन्मदिन। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये गाना और कहते हैं अरुणा जी को हैप्पी बर्थडे। जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि मैं आपसे फिर मिलूंगी ठीक 11:10 पर, प्रोग्राम होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान पत्र प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत के निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। अमरीका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गाजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे तक चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गाजा के पुनर्निर्माण, असैनीकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केन्द्रित रही। उन्होंने बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिन्स फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार से मुकाबला करेंगी। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। उधर हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया।
2: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु

0: नमस्कार, ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां मैं यानी आपकी पक्की वाली दोस्त और होस्ट नाज हूं आपके साथ। स्टूडियो की घड़ी कर रही है इशारा कि समय हो चुका है 11:11 और जैसा कि आप जानते ही हैं, इस समय आप सुनते हैं हमारी खास पेशकश तस्वीर। जहां हम सफर बनकर आप और हम चल पड़ते हैं एक ऐसे सफर पर जो बेइंतहा खूबसूरत होने के साथ साथ म्यूजिकल मस्ती से भी सराबोर होता है। और दोस्तों, आज आप मेरे साथ चल रहे हैं एक ऐसे शहर जो अपने रिच कल्चर, ग्रेट हिस्ट्री और आधुनिकता के लिए जाना जाता है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी और यहाँ के सबसे बड़े शहर रायपुर का है आज का प्लान। घूमेंगे, फिरेंगे और करेंगे इस शहर के बारे में ढेर सारी बातें, लेकिन पहले ये गीत सुनेंगे जो कि है फिल्म अंदाज से। किशोर कुमार ने खूबसूरत प्लेबैक किया है राजेश खन्ना जी के लिए। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जय किशन का अनबीटेबल म्यूजिक। सो लेट्स एंजॉय
1: जिंदगी।

सैर कर दुनिया की मुसाफिर, जिंदगानी फिर कहां। जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये नौजवानी फिर कहां।

तो जब तक जिंदगानी और उसके साथ नौजवानी बरकरार है, सैर सपाटे से परहेज मत कीजिए। रोज की दौड़ धूप से लीजिए छोटा सा ब्रेक और घूम आइए रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। खनिज संपदा से भरपूर ये जगह देश में स्टील और लोहे के बड़े बाजारों में से एक है। लगभग 200 स्टील रोलिंग मिल्स, 195 के आसपास आयरन प्लांट, 6 स्टील प्लांट, 60 के करीब प्लाईवुड कारखाने और 800 से भी ज्यादा राइस मिल प्लांट यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के विकास में कितनी अहम भागीदारी है इस जगह यानी रायपुर की। कैसे पहुंचना है और पहुंचने के बाद क्या कुछ करना है, सब पर तफसील से होगी बात, लेकिन इस अगले आइकॉनिक ट्रैक को सुनने के बाद।

तस्वीर सुन रहे हैं आप, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आप घूम रहे हैं। और रायपुर पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, अब ये सुनिए। देश के किसी भी कोने से एयर टिकट बुक कर लीजिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का, जो कि शहर के सेंटर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो बाय ट्रेन अगर जाना है तो रायपुर जंक्शन आपको पहुंचना होगा, जो कि हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर मौजूद एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। और जनाब, बाय रोड अगर आप जाना चाहते हैं तो नेशनल हाईवे 30 और नेशनल हाईवे 53 के जरिए आप यहां बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस तरह तीन तरीके हैं रायपुर पहुंचने के लिए, और तीनों ही बेहद आसान हैं। रायपुर पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे ये सब जानेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि क्या कौन कौन सी वो खास जगहें हैं रायपुर में, जिन्हें आपको बिल्कुल भी किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। लेकिन पहले सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। अलका याग्निक जी की इसमें मीठी आवाज है और फिल्म का नाम है राजा, और नदीम श्रवण का संगीत आप सुनेंगे और समीर के खूबसूरत बोल।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

रायपुर घूम रहे हैं आप मेरे यानी नाज के साथ और प्रोग्राम चल रहा है तस्वीर। इतिहास के पन्नों को पलटें तो रायपुर शहर कभी दक्षिण कोसल का हिस्सा हुआ करता था और मौर्य साम्राज्य के अधीन था। इतिहास में 9वीं सदी से इस शहर का अस्तित्व रहा है। एक और कहानी रायपुर के बारे में ये भी कही जाती है कि राजा रामचंद्र के पुत्र ब्रह्मदेव राय ने इस शहर की स्थापना की थी और उन्हीं के नाम पर ये शहर रायपुर के नाम से जाना गया। शासक अमर सिंह की मृत्यु के बाद इस वंश का पतन हो गया और ये इलाका भोसले राजाओं के कार्यक्षेत्र में आ गया। रघुजी थर्ड की मौत के बाद ये इलाका ब्रिटिश अधिकार में आया और साल 1854 में यहाँ ब्रिटिश कमिश्नरी का मुख्यालय स्थापित हुआ। फिर साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो रायपुर जिला सेंट्रल प्रोविंस और बरार में शामिल कर लिया गया। राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो साल 1956 में मध्य भारत

के साथ रायपुर भी मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया और आखिरकार 1 नवंबर साल 2000 में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग कर जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया तो रायपुर को इसकी राजधानी के रूप में चुना गया। तो ऐसी रही इतिहास के पन्नों में रायपुर की तस्वीर। इस शहर से जुड़े और भी पहलुओं को जानेंगे, लेकिन पहले ये खूबसूरत गीत सुनेंगे फिल्म बेताब से। शब्बीर कुमार और लता जी की मीठी आवाजें सुनेंगे अनबीटेबल म्यूजिक पंचम दा का, और गीत के बोल हैं आनंद बख्शी साहब के।

साल 2021 के सर्वे में रायपुर को भारत का छठा सबसे साफ और स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। पहली नजर में आप यहां

मशीनों की गड़गड़ाहट और ऊंची चिमनियों को देखेंगे। लेकिन इससे अलग रायपुर आपको एक जिंदा दिल शहर के रूप में भी नजर आएगा, जहां के रंग बिरंगे बाजार और पीढ़ियों से सहेजी हुई परंपराएं तो देखने को मिलेंगी ही, साथ में प्राचीन मंदिरों और शांत झीलों के किनारे आपको उस सुकून का एहसास भी कराएंगे जिसकी तलाश आपको यकीनन होगी। शहर के बीचों बीच मौजूद नंदन वन गार्डन इसी की एक वानगी है, जो करीब 800 एकड़ में फैला एक खूबसूरत पार्क है, जहां एक बार तो कम से कम आपको जाना ही चाहिए। 800 में से 230 एकड़ में आपको यहां चार अलग अलग सफारी मिलेंगी। 125 एकड़ में है जू और 5 एकड़ में आपको दिखेंगे बचाव और पुनर्वास केंद्र। इसके अलावा करीब 130 एकड़ के इलाके में फैला है खंडवा जलाशय, जो कि बेहद शांत जगह है और प्रवासी पक्षियों की बड़ी तादाद को अट्रैक्ट करता है। फिलहाल मेरे कानों को अट्रैक्ट कर रहा है ये अगला सॉन्ग, जिसे सुन लिया तो यकीन मानिए रायपुर का ये सफर और भी सुहाना और हसीन हो जाएगा।

नंदनवन के बाद रायपुर में जरूर जाइए स्वामी विवेकानंद सरोवर भी, जिसे स्थानीय लोग बड़े प्यार से बुद्धा तालाब कहते हैं। हलचल भरे शहर के बीचों बीच हरे भरे पेड़ पौधों से घिरी ये एक शांत झील है और यहाँ मौजूद है स्वामी विवेकानंद को समर्पित एक भव्य स्मारक भी, जो करीब 37 फुट ऊंची है। इसके बाद आप जा सकते हैं आस्था और भक्ति के प्रतीक दूधधारी मठ, जो भगवान राम का करीब 500 साल पुराना मंदिर है। महाराज बंध नदी के शांत किनारे पर मौजूद ये पवित्र स्थल शांति और संतुष्टि की तलाश का अंत है। खूबसूरत वास्तुकला के साथ साथ अपनी मनमोहक कथाओं के जरिए ये यहाँ आने वालों की यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। माता कौशल्या मंदिर भी है यहाँ, जो इकलौता ऐसा मंदिर है भारत में जो भगवान श्री राम की माता कौशल्या जी के नाम से है, और रायपुर के

चंद्रखुरी इलाके में ये मंदिर मौजूद है। और कौन सी हैं वो खास जगहें रायपुर में जहां आपको जाना ही चाहिए, जानेंगे, लेकिन पहले ये गीत सुनेंगे।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर घूम रहे हैं आप मेरे यानी नाज के साथ और कार्यक्रम चल रहा है तस्वीर। और इस सफर में अगर बच्चे भी हैं आपके साथ तो आपको जरूर जाना चाहिए यहाँ मौजूद एनर्जी पार्क, जो कि साइंस और एंटरटेनमेंट का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसके साथ ही आपको जाना चाहिए पुरखौती मुक्तांगन भी, जहां आपको दर्शन होंगे छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और कला के। एक खुले म्यूजियम के तौर पर ये जगह आपका स्वागत करती है। नया रायपुर में आपको मिलेगा इसके बाद अटल पार्क, जहां मौजूद है एक विशाल एम्फी थिएटर और बच्चों के लिए एक बेहतरीन प्ले एरिया भी।

कितना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

एक खूबसूरत शाम बिताने के लिए आप जा सकते हैं मरीन ड्राइव, जो कि रायपुर का सबसे फेमस स्पॉट है। इसके अलावा सिंध लेक फ्रंट भी एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है यहाँ, जहाँ से सनसेट बहुत ही खूबसूरत लगता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रायपुर की मशहूर नगर घड़ी के दर्शन तो आपको हर हाल में करने चाहिए, जो बेसिकली एक गाता हुआ घंटा घर है। सुबह 4 बजे से ही हर घंटे यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी अलग अलग लोक धुनें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं।

50 फुट ऊंचा ये गाता हुआ घंटाघर साल 2009 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी जगह बना चुका है। इस सब के बाद शॉपिंग और खाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ यानी रायपुर में, इस पर होगी बात मगर इस सॉन्ग के

रायपुर में अगर आप शॉपिंग का विचार रखते हैं तो आपको जाना चाहिए गोल बाजार या फिर मालवीय रोड, और इसके अलावा पांडरी का महालक्ष्मी मार्केट भी आपके लिए खुला है। और इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपको लग गई है भूख तो कहाँ जाना है बताऊंगी, पर पहले ये अगला गाना सुन लेते हैं।

0: सीधा चले आइए एमजी रोड या फिर गढ़ कलेवा, जहां ऑथेंटिक छत्तीसगढ़ी फूड आपको सर्व किया जाएगा। इसके अलावा यहां की फेमस खाऊ गली तो है ही, जहां आपको बनारस की चाट से लेकर गुजरात की दाबेली और कोलकाता की झाल मुड़ी जैसी कई डिशेस आसानी से मिल जाएंगी। सिग्नेचर डिशेस की बात करें तो आपको यहां खाने में चावल का ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिलेगा। अरे भाई, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो राजधानी होने के नाते आपको इसकी झलक यहाँ रायपुर में भरपूर मिलेगी। चावल का चीला, फरे, भाप में पकी हुई मुठिया और चावल के आटे से बनी पूड़ी जिसे चौसेला कहा जाता है, कढ़ी के साथ आप इसे यहाँ इंजॉय करेंगे। मीठे में आपको मिलेगा अरिसा, जो बेसिकली गुड़ और चावल से बनी एक फेमस और यहाँ की पारंपरिक मिठाई है। और दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, क्योंकि घड़ी ने कर दिया है इशारा तस्वीर के लिए आज की समय सीमा समाप्त होने का। मैं यानी नाज जा रही हूँ फिलहाल इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए सफर की एक नई तस्वीर के साथ। नमस्कार।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

0: बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदिनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

आंगन। स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। आज का दिन जागरूकता, संकल्प और हमारे स्वर्णिम इतिहास की विभूति को याद करने का दिन है, तो मिलकर जीते हैं आज के इस पल को। इसलिए स्वीकारें मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ जुड़ चुके हैं आप हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर, और साथ ही हमारे यूट्यूब हैंडलर AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी सुन रहे हैं आप। तो अब वक्त है कि हम पूछ लें आपसे आज की प्रश्नोत्तरी का सवाल। साथियों, आपको बताना है आज ऐसा पल जब आपने सिर्फ अपने दिल की सुनी हो, क्योंकि जीवन में हम सभी के कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आता ही है ना, जब सबकी सुनकर भी हम अपने मन की आवाज का फैसला अपनाते हैं। तो कौन सा है वो पल आपका, लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर। और अब बात करें आगे जागरूकता की दोस्तों, क्योंकि आज का दिन हमें जागरूकता की उस कड़ी से जोड़ रहा है जो पूरी दुनिया की रौनक है और प्रकृति की सबसे नायाब कृति भी। और जानते हैं वो कौन है? वो है हमारी स्त्री शक्ति। आज का दिन इसीलिए तो खास है दोस्तों, क्योंकि आज है 18 अगस्त और आज हम मना रहे हैं विश्व स्तन कैंसर अनुसंधान दिवस। जी, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 4 मिनट में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है और 70% से ज्यादा मामलों में पहचान देरी से हो पाती है। और कारण वही जागरूकता की कमी, स्क्रीनिंग में देरी और सबसे बड़ा कारण महिलाओं का हमेशा से खुद को आखिर में रखना। घर के कामकाज की जिम्मेदारियों के बीच स्वयं का ध्यान रखने में अक्सर हमारी घर की महिलाएं अपने आप को बाद में रखती हैं, वो लापरवाह हो जाती हैं। इसलिए आज का दिन ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी भी देखभाल करना है। घर को तो संभालना है, लेकिन घर की उस धुरी को संभालना पहली जिम्मेदारी है, यानी कि खुद का ध्यान रखना बेहद जरूरी है साथियों। और इतिहास से जुड़े आज महान मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट उर्फ बाजीराव पेशवा प्रथम की याद भी दिला रहा है, क्योंकि आज उनकी जयंती है। 18 अगस्त संवत 1700 में आज ही के दिन वे जन्मे थे। अपने कुशल नेतृत्व और रण कौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार करने वाले इतिहास के महान योद्धाओं में गिने जाते रहे हैं वो, और पूरे जीवन में वो किसी भी युद्ध में कभी हार नहीं खाई थी उन्होंने। उनकी जयंती पर हम उन्हें भी दिल से नमन करते हैं दोस्तों। और इसी संदेश के साथ आपको याद दिला देती हूँ आज की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पल आपके जीवन में आया जिसमें आपने अपने दिल की सुनी। कहिए, बताइए और लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर।

गाइड इस फिल्म से आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को। और दोस्तों, हरियाली और खुशहाली का मौसम है सावन, और जिस तरह प्रकृति अपनी हरियाली के साथ परंपरा निभा रही है सदियों से हमारे साथ, तो सावन की इन्हीं परंपराओं को जीते हैं आज कुछ पल के लिए अपनी बातचीत में, क्योंकि भारत की संस्कृति में सावन सिर्फ मौसम नहीं है, है ना? बेटी और मायके

के बीच का एक पावन बंधन है जिसे सावन की डोर बांधे रखती है। और आप सभी के अनुभव में ये बात जरूर होगी, जो संस्कृति और परंपराओं को हम निभाते हैं साथ में। और दोस्तों, मान्यता के अनुसार घर की जो बेटियां होती हैं उन्हें लक्ष्मी की तरह हम मानते हैं, और जब विवाह के बाद वो दूसरे के घर जाती हैं तो अपने साथ सौभाग्य को भी ले जाती हैं। और भाई, सौभाग्य की जरूरत सबको होती है, मायके वालों को, ससुराल वालों को। इसलिए सावन में उनके मायके आने से घर में फिर से खुशहाली आ जाती है। और इसी मान्यता के साथ सावन को मायके से जोड़ने वाला ये जो रिवाज है, ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सावन में विवाहित स्त्रियों का मायके जाना शुभता का प्रतीक है। मान्यता है कि नवविवाहित स्त्रियों का सावन में मायके से नाता उनके सौभाग्य को बढ़ाने के साथ साथ पति पत्नी के बीच के प्रेम को और उस बंधन को और बढ़ाता है और मजबूत करता जाता है, और पारिवारिक जीवन में खुशहाली भी लाता है। झूला, हरी चूड़ियां, मेहंदी के डिजाइन, पारंपरिक गीत, माँ के हाथ का खाना और सखियों और बहनों के साथ कजरी की तान सुनना ससुराल में होकर भी मायके से जोड़े रखने वाली वो डोर है साथियों, जिसकी वजह से बेटियां इस परंपरा में जुड़कर तीज की परंपरा से पीहर में लौटती हैं और पीहर की खुशियों में घुल मिल जाती हैं।

सावन के झूले पड़े, जुर्माना फिल्म से इस गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और साथियों, सारे त्यौहार सावन के हम मना रहे हैं और कुछ तो बीत भी चुके हैं, लेकिन सावन इतनी खुशियां देने वाला है कि बस लगता है सावन का महीना चलता रहे और हमें शक्ति और स्फूर्ति से भरता रहे। और चूंकि हमारा कार्यक्रम स्त्री शक्ति को समर्पित है और इसके माध्यम से हम हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि समाज में, राजनीति में और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ रही है, उनका जो अदम्य साहस बढ़ रहा है, उनके कौशल की कहानी को हम आपको बताते रहें। तो ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन आपको याद दिला देती हूँ अपने आज की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपको बताना है कि ऐसा आपके जीवन में कौन सा पल कब आया जब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनी। लिख भेजिए हमें अपनी वो कहानी, अपनी वो पल और अपनी वो खुशी fmgoalga@gmail.com पर। हम प्रतीक्षा में हैं आपके संदेशों की। और जानते हैं, आज की कहानी जो मैं आपको बता रही थी ना, नारी शक्ति से जुड़ी हुई, वो पग पग पर हमें हौसले से भरने के लिए काफी है, खासकर हमारी उन महिला साथियों के लिए जो कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानती बल्कि डट कर सामना करती हैं परिस्थितियों का। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, बांदा, जहां 2006 में संपत पाल देवी नामक एक महिला के द्वारा गुलाबी गैंग की शुरुआत हुई। पर यह सांकेतिक गैंग एक संगठन है जो महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। कहानी तब शुरू हुई जब संपत पाल ने एक महिला पर हो रहे अत्याचार को देखा और खुद ही आवाज उठाने का फैसला किया। पर जब समझाने पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने अपनी अन्य महिला साथियों को एक साथ इकट्ठा किया और उन्होंने अन्याय के खिलाफ बांस की लाठी का उपयोग शुरू किया, यानी कि न्याय के लिए अपनी आवाज उठाई। धीरे धीरे इन महिलाओं की एकजुटता, शक्ति और पहचान ने संगठन का रूप लिया और गुलाबी रंग की साड़ी को इन्होंने ड्रेस कोड के रूप में चुना। इस घटना की चर्चा से दूर दराज की जो पीड़ित महिलाएं थी वो भी संगठन से जुड़ने लगी और अत्याचार, घरेलू हिंसा और कई कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने का साहस कर पाई, जानते हैं। और खुद को बांदा गुलाबी कहलाने वाली ये महिलाएं गुलाबी साड़ियों और बांस के डंडों के लिए जानी जाती हैं, जिन्हें वे रक्षा के प्रतीक के रूप में साथ लेकर चलती हैं। और ये समूह किसी के मामले में तब हस्तक्षेप करता है जब महिलाएं घरेलू हिंसा, जबरन विवाह, शोषण या भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रही होती हैं। बांदा गुलाबी क्षेत्रीय प्रयास वाला वो संगठन है दोस्तों, जो शिक्षा, कानूनी सहायता और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देने का काम कर रही है, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों को जानें और अपनी रक्षा और न्याय के लिए बहादुरी के साथ आगे आएं।

पत्थर के सनम, इस फिल्म से आप लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे ये गीत। साथियों, आपको याद दिला दूं अपनी आज की प्रश्नोत्तरी, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमारे कार्यक्रम घर आंगन से और आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर हमें आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन, जो आपके लिए हर दिन लाता है एक प्रश्नोत्तरी। और आज की प्रश्नोत्तरी में आपको बताना है ऐसा पल जब आपने जिया हो दिल से, यानी कि दिल से फैसला लिया हो

और उसे करने के बाद, दिल के फैसले को अपनाने के बाद, आपको लगा हो कि हाँ आपने ये सही किया है। और अगर ऐसी अनुभूतियाँ, ऐसी कहानियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं तो लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर। और एक संदेश मेरे पास आया है, हमारे एक श्रोता साथी हैं और वो हैं राजू अग्रवाल चौधरी वासे। और उन्होंने प्रश्न के उत्तर को तो घुमाकर लिखा है, लेकिन शायद उन्होंने प्रश्न को बहुत गौर से नहीं सुना। उन्होंने लिखा है, भौतिकवाद के चलते आज तनाव का जमाना है, इसलिए खुशी को खोजना पड़ता है। संगीत, रचनात्मक काम तथा पर्यावरण में मन को लगाकर जब हम रखते हैं तो मन में खुशी आती है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। सचमुच में अपने आप को पॉजिटिविटी से जोड़ के रखने के लिए हम प्रकृति के जितने करीब जाते हैं उतना ही हमें सुकून और संतोष मिलता है। लेकिन साथ ही आपको आज की प्रश्नोत्तरी का जवाब देना है कि आपके जीवन का ऐसा कौन सा पल है जिसे आपने अपने मन से जिया हो, अपने मन के फैसले के साथ। और लिख भेजना है हमें fmgoldga@gmail.com पर। और अब बात करते हैं दोस्तों अपनी शक्ति से सशक्त होने वाली भारतीय महिलाओं के बारे में, जो आज हर क्षेत्र में आगे हैं। शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान, खेल, राजनीति या शौर्य का परिचय देते हुए देश सेवा के जज्बे से भरी हमारी नारी शक्ति आज हर कहीं अपने दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी हैं, डटी हुई हैं। ऐसा ही एक नाम है राजस्थान के उदयपुर की कैप्टन शिवा चौहान का, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र और दूसरे सबसे लंबे सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पे तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। और उन्होंने ना अपने साहस और संकल्प के बल पर कई बाधाओं को पार करते हुए उदयपुर से दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र का सफर कैप्टन शिवा चौहान के नाम से तय किया और ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। जानते हैं वो ऐतिहासिक उपलब्धि यही है कि समुद्र तल से 20,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर, जहां जमा देने वाली ठंड, चुभने वाली हवा और दुर्गम पहाड़ियों के से जो सियाचिन का ग्लेशियर घिरा हुआ है, वहां के कुमार पोस्ट पर कैप्टन शिवा ने लंबे समय से चली आ रही परंपरा को तोड़कर ये साबित कर दिया कि साहस और सेवा का कोई लिंग नहीं होता, यानी देश सेवा में वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं और चल रही हैं। तो देखा आपने, सच्ची निष्ठा और समर्पण से ऐसा कोई काम नहीं है जो किया ना जा सके। इसलिए आज की प्रश्नोत्तरी भी इसी भाव से जुड़ी है, जिसमें आपको बताना है कि जीवन का ऐसा पल जब आपने अपने मन की सुनकर फैसला लिया हो और आपको जीत मिली हो। लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर। और इस बार हम सुनाते हैं आपको ऐसा ही कुछ खूबसूरत सा गीत।

इस गीत को आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में। दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन और आज की प्रश्नोत्तरी में हमने आपके लिए वो प्रश्न लिया है जो प्रश्न आपके जीवन में कभी ना कभी आपके साथ जुड़ा ही हुआ होगा कि जीवन में ऐसा पल आपके कभी तो आया होगा जब आपने अपने दिल से फैसला लिया होगा, दिल की बात सुनी होगी। तो ऐसा कौन सा लम्हा है, हमारे साथ साझा करिए, लिख भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पर। और जानकारियों की बात हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं, तो अगर आपको पढ़ने का शौक है या ज्ञान के संग्रहण से जुड़ना अच्छा लगता है तो आपके काम की है हमारी ये बात, क्योंकि लाइब्रेरी हमारे देश में बहुत सी हैं दोस्तों और आजकल तो डिजिटल लाइब्रेरी का भी जमाना है। लेकिन आज आपके लिए आपको हम एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके लिए हम लेकर चल रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर की एक भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड लाइब्रेरी की ओर। जी हाँ, जैसलमेर के भादरिया गांव के भादरिया माता मंदिर में ये लाइब्रेरी स्थित है जो जमीन से 16 फीट नीचे है। भूमिगत होने के कारण रेगिस्तान की जो भीषण गर्मी है उसके समय में भी यहाँ का जो तापमान है वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है जिससे किताबें भी सुरक्षित रहती हैं। यहाँ जानते हैं इतना विशाल पुस्तकालय है ये कि इसमें एक साथ 4000 लोग बैठकर पढ़ सकते हैं और बहुत सारी पुस्तकों का यहाँ पर विशाल संग्रह है जो इसे एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक बनाता है। और हाँ, राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और विरासत की अनमोल धरोहर इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 लाख से भी अधिक लगभग दुर्गम पुस्तकें, ग्रंथ, वेद पुराण और ऐतिहासिक दस्तावेज सुरक्षित हैं। इसके अलावा विभिन्न भाषाओं का एटलस और शब्दकोश का संग्रह भी यहाँ पर है। साहित्य की विधाओं में विज्ञान से लेकर ज्योतिष, खगोल विज्ञान, महाकाव्य और इतिहास के संग्रह भी यहाँ पर सुरक्षित हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी चीजें, सारा ज्ञान एक ही जगह पर भंडार की तरह सुरक्षित है। यहाँ पुस्तकालय के हर गलियारे में इसे जब आप देखेंगे तो एक अद्भुत सा नज़ारा आपको दिखेगा, क्योंकि पूरे गलियारे में यहाँ लकड़ी के फ्रेम से सजे हुए गलियारे हैं जिनमें ढेर सारी किताबें हैं। और जानते हैं हर गलियारे के आखिर में एक दर्पण लगा है जो किताबों की दुनिया में आने वाले रोमांच का प्रतिबिंब बनाता है, और दीवारों के हल्के रंग मन को किताबों के साथ बांधे रखने में सहयोगी बनते हैं। तो जब कभी राजस्थान आने का आपको मौका मिले ना, तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई इस लाइब्रेरी को देखना बिल्कुल ना भूलें।

इस गीत को आप सुन रहे थे रेशमा और शेरा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में। और साथियों, आपको आपका घर आंगन कार्यक्रम कैसा लगता है ये भी हमें बताना न भूलें। साथ ही हमारी आज की प्रश्नोत्तरी का जवाब आपको देना है, आपको बताना है ऐसा पल जब आपके दिल ने सिर्फ आपके दिल की सुनी हो और फैसला लिया हो, क्योंकि जीवन में हम सभी के ऐसा दौर कभी ना कभी तो आता ही है। तो आपको लिख भेजना है वो पल आपका क्या था, कैसी कहानी थी आपकी, fmgold@gmail.com पर आप बताइए। आपके संदेशों की प्रतीक्षा है हमें, और इस प्रतीक्षा को समाप्त करने वाले कुछ संदेश मेरे पास हैं, जिसमें ये है राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी चौधरी वस हिसार से, और ये लिखते हैं कि सन 2012 का समय था जिसे ये कभी नहीं भूल सकते। उस समय आकाशवाणी से इन्हें बहुत प्यार था, ये रेडियो सुनते थे और रेडियो सुनने की वजह से ये एक बार बहुत ही निराशा में घिर चुके थे, और उस निराशा ने उन्हें, मतलब रेडियो सुनने वाले कार्यक्रम की वजह से, उस निराशा से ये उभरे और उस मानसिक रोग से ये बाहर आए। इसलिए इस जन्म में रेडियो मेरे लिए भगवान है और एफएम गोल्ड से बढ़िया प्रोग्राम दूसरी जगह नहीं है। भाई कितनी भावुक बात आपने कह दी चरणदास जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हमारा उद्देश्य ही है कि हमारे जो श्रोता साथी हैं वो अपने जीवन में स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और बहुत खुश मिजाज होकर इस पूरी जिंदगी को पूरे मनोयोग से जिएं। और हमारे कार्यक्रम के साथ जब आप जुड़ते हैं और इस तरह से अपनी बातें हमारे साथ साझा करते हैं, तो सच कहिए हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रयास जो कर रहे हैं उसे सफलीभूत तो कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी इस खूबसूरत बातों के लिए। और ऐसा ही एक संदेश हमारे पास है राजेश्वर राव जी का, इन्होंने लिखा है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल था, एक वकील के रूप में मैंने कोर्ट में चल रहे माता पिता और उनके बेटे के बीच झगड़े की मध्यस्थता में उन्हें मेडिटेशन के जरिए सुलझाया था और उन्हें आपस में मिलाया था। तो कितनी खूबसूरत बात आपने कही कि देखिए, जीवन में हम सभी के कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं उद्देश्यों को जब हम पूरा कर पाते हैं, एक सार्थकता की तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं, तो एक इंसान के रूप में जब ऐसी खुशियाँ हम दूसरों को बांटें तो दिल को सचमुच में बहुत सुकून मिलता है। तो आपकी ऐसी चिट्ठियाँ, ऐसी खूबसूरत पातियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमें हौसला देती हैं और ये भी बताती हैं कि और भी हमारे श्रोता साथी हैं जिन्हें हमें हौसला देना है आगे बढ़ने के लिए, उन्हें बताना है, जीवन की खुशियों से जोड़ना है। तो चलिए आपके सुपुर्द एक और खूबसूरत सा गीत करती हूँ,

तुम्हारी कसम, इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ में ये गीत। और दोस्तों, नवाचार और उद्यमिता के इस दौर में हमारे आसपास बहुत कुछ सीखने को है, और हम अक्सर अपने कार्यक्रम में आपके लिए वो खास जानकारी जुटाने का प्रयास भी करते हैं जिससे कि आप लाभान्वित हों। और जानते हैं आज की

आप सुन रहे थे आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ में ये गीत। और दोस्तों, नवाचार और उद्यमिता के इस दौर में हमारे आसपास बहुत कुछ सीखने को है, और हम अक्सर अपने कार्यक्रम में आपके लिए वो खास जानकारी जुटाने का प्रयास भी करते हैं जिससे कि आप लाभान्वित हों। और जानते हैं, आज की प्रेरक जानकारी रसोई से निकलकर पैन इंडिया बन गई है। तो क्या कभी सोचा है आपने कि रसोई में बनने वाली सब्जी कटहल, जिसे जैकफ्रूट भी कहते हैं,

पता चला कि केरल में भारी मात्रा में कटहल और उसके बीज बेकार हो जाते हैं, तो उन्होंने घर की रसोई में कटहल के बीजों को धोना, उन्हें धूप में सुखाना और फिर सही तापमान में भुनना और पीसना शुरू किया और बिना किसी कृत्रिम रंग या केमिकल के कॉफ़ी तैयार की, जो कैफीन फ्री, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर रही। कटहल और कॉफ़ी के मेल से बनने के कारण इसे जैफी या जैक सीड कॉफ़ी कहा जाता है। इस कॉफ़ी को बनाने के लिए कटहल के बीजों के ऊपर मौजूद जो सफ़ेद और

इस अंतिम गीत को लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं और इसी के साथ घर आंगन कार्यक्रम से अपनी दोस्त अपनी होस्ट मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सहयोग को और मजबूत करने तथा पर्यावरण कार्य समूह के लिए सकारात्मक परिणामों हेतु सार्थक तरीके से जुड़ने को उत्सुक हैं। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर

दर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और

0: उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाश अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारत और श्रीलंका के बीच गोल्फ में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को पहली पारी में 284 रन पर ऑल आउट कर दिया। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की उन्नति हुडा और म्यांमा की थेत हतार थुजार के बीच मुकाबला जारी है। भारतीय खिलाड़ी ने कुछ देर पहले ही पहला गेम 22-20 से जीत लिया है। लक्ष्य सेन आज शाम पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई से हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The 12th BRICS Environment Ministers meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The meeting serves as a platform for ministers, senior officers, policymakers and experts from the member countries to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, is presiding over the meeting. In a social media post, Mr. Yadav said he is looking forward to further strengthening cooperation and engaging in a meaningful manner for positive outcomes for the Environment Working Group. The theme of India's BRICS Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The Jharkhand government has cancelled the JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by private agency TDPL. However, the demand of protesters for a CBI probe remains unresolved. The Jharkhand government announced a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mahato and other protesting students. The Enforcement Directorate, ED, has conducted searches at several locations in Karnataka linked to alleged Karnataka Public Service Commission, KPSC, paper leak scam. Former chairman of KPSC Shiv Shankarappa S. Sahukar is accused of examination paper leaks, tampering with OMR sheets and demanding bribes ranging from 70 to 80 lakhs per candidate to recruit government veterinary officers. It is also alleged that a private company acted as a middleman. In this background, ED conducted searches at the residence of Shiv Shankarappa and a few former members of KPSC and officers linked to a private

खुली किताब के सफ़े उलटते रहते हैं, हवा चले न चले दिन पलटते रहते हैं। दिन महीने साल दशक बेशक बीतते गए, गुलजार साहब की लेखनी उनकी फिल्में दिलों पर जो छाई हैं, हम पर जो जादू करती हैं, उसका असर कभी कम नहीं होगा। जब जब उनके गीत सुनते हैं, जब जब उनकी फिल्में देखी जाती हैं, खुद को किसी और ही दुनिया में पाते हैं। ये करामात गुलजार जैसी शख्सियत ही कर सकती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1। प्रसिद्ध गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और नाटककार गुलजार साहब आज शामिल रहेंगे कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर। उनके लिखे गीत हों, फिल्म की कहानी या उनके निर्देशन में बनी फिल्में, सभी दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ती हैं। कुछ महान शख्सियत ऐसी ही होती हैं जिनके बारे में बोलने कहने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ऐसा ही व्यक्तित्व रहा गुलजार साहब का भी। फिर भी कोशिश रहेगी उन्हें बयां करने की और उनकी शायरी, उनके गीतों का आनंद लेने की। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्मी दुनिया जिन्हें गुलजार साहब के नाम से जानती है, वास्तविक नाम इनका रहा संपूर्ण सिंह कालरा, जिनकी रचनाएं हिंदी, उर्दू और पंजाबी में हमें सुनने, पढ़ने और देखने को मिलती हैं। दिल की गहराइयों में उतर जाने वाले शब्दों की कहानी जो इनकी कलम से निकली, हर पीढ़ी को झकझोरती है, प्रभावित करती है। अनेक सम्मानों से गुलजार साहब को नवाजा गया। सन 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2009 में फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके लिखे गीत जय हो के लिए गुलजार साहब को सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। इस गीत के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सन 2013 का साल एक खास साल रहा गुलजार साहब के लिए, जब उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया।

18 अगस्त 1936 को पंजाब के झेलम जिले में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही गीतों शेरो शायरी की तरफ इनका रुझान रहा। गीतों की अंताक्षरी कार्यक्रमों में भी ये हिस्सा लेते रहते थे। गीत संगीत के प्रति इन्हें विशेष लगाव सा था। मौका मिलने पर बड़े बड़े उस्तादों के कार्यक्रमों को भी ये सुनने जाया करते थे। आजादी के वक्त 1947 में इनका परिवार अमृतसर आ गया और इसके बाद गुलजार अपने सपनों के लिए मुंबई शहर चले आए। शुरुआती दौर उनका भी कठिनाइयों से भरा रहा। जीवन यापन के लिए कुछ समय के लिए उन्होंने एक मोटर मैकेनिक के तौर पर भी काम किया।

0: प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया।

0: कर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जाने माने गीतकार, पटकथा लेखक, निर्देशक गुलजार साहब की बातें साझा हो रही हैं आपके साथ। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। मुंबई पहुंचने के बाद गुलजार कवि के तौर पर पीपल्स राइटर्स एसोसिएशन यानी कि PWA से जुड़ गए। उनके करियर की शुरुआत 1961 में महान निर्देशक बिमल रॉय के सहायक के रूप में हुई। गुलजार ने ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में भी काम किया। जल्दी ही उनके अंदर छुपी शब्दों की प्रतिभा को पहचान लिया गया। रूहानी और रोमानी शब्दों से खेलना गुलजार अच्छी तरह जानते थे। बिमल रॉय ने उनके इस हुनर का बखूबी इस्तेमाल किया और अपनी क्लासिक फिल्म बंदनी में गीत लिखने का मौका दिया। एक गीत सुन लेते हैं यहाँ, जो गुलजार साहब का ही लिखा हुआ पहला गीत रहा 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदनी से।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: क्लासिक फिल्म बंधनी से पहले 1961 में काबुलीवाला रिलीज हो गई। इस फिल्म का भी एक शानदार गीत गुलजार साहब की कलम से ही रचा गया था, गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां। इन गीतों ने सुनने वालों को भी मंत्रमुग्ध किया ही, साथ ही फिल्मी दुनिया में जो था ना, गुलजार साहब ने अपनी धाक जमा डाली थी इस गीत के बाद। ये हमसे बिल्कुल छुपा नहीं कि वो कितनी मजबूती से यहां पर कायम हो गए थे। जैसे जैसे उनके गीत दर्शकों के, सुनने वालों के कानों में पड़ते, उनसे उम्मीद और भी बढ़ जाती और गुलजार साहब जमाने की इन उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरते रहे। इसमें

कोई दो राय नहीं। साल 1971 में फिल्म आई मेरे अपने, गुलजार ने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। इस फिल्म के जरिए ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म में नजर आए और फिल्म में गुलजार की निर्देशकीय क्षमता थी ना बखूबी दिखी है। मीना कुमारी जी की दमदार एक्टिंग भी दर्शकों के दिलों में घर कर जाती है। कुल मिलाकर एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी कहा जा सकता है मेरे अपने को। तो चलिए इसी फिल्म से एक और गीत सुन लिया जाए।

गुलजार जिनके निर्देशन में बनी फिल्मों की एक खासियत ये भी रही कि अनेक अभिनेत्रियों को बेहतरीन किरदारों में पेश किया गया। उन्होंने सुचित्रा सेन के साथ आंधी, रेखा के साथ इजाजत, हेमा मालिनी जी के साथ किनारा और खुशबू और शबाना आजमी के साथ देवता और शर्मिला टैगोर के साथ मौसम और नमकीन जैसी अविस्मरणीय फिल्में बनाई। एक गीत सुनते हैं यहाँ पर और फिर बढ़ते हैं आगे मौसम फिल्म से।

अभिनेत्रियों के साथ साथ संजीव कुमार को लेकर भी उन्होंने कई यादगार फिल्में निर्देशित की। संजीव कुमार उनके पसंदीदा कलाकारों में से एक रहे। मौसम, कोशिश, आंधी,

अभिनेत्रियों के साथ साथ संजीव कुमार को लेकर भी उन्होंने कई यादगार फिल्में निर्देशित की। संजीव कुमार उनके पसंदीदा कलाकारों में से एक रहे। मौसम, कोशिश, आंधी, नमकीन, अंगूर, देवता जैसी लाजवाब फिल्में। विनोद खन्ना को भी उन्हें उनके निर्देशन में अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका मिला। मेरे अपने में भी उन्होंने काम किया था और बाद में अचानक, लेकिन और मीरा जैसी फिल्में भी उन्होंने गुलजार साहब के निर्देशन में की। गुलजार की कलम सीधे दिल पर दस्तक देती है। संजीव कुमार के साथ मिलकर तो उनकी लेखनी और भी चमकी। लेखक और अदाकार भी जो बोलते हैं ना कि दोस्त बन गए, और ये दोस्ती अच्छी चली। आर डी बर्मन भी उनके खास दोस्तों में रहे, जिनके साथ गुलजार ने लगभग 21 फिल्में की। सलील चौधरी और ए आर रहमान के साथ भी उनका काम यादगार रहा। वक्त बेशक आगे बढ़ता जाए, गुलजार साहब की कलम की धार हमेशा पैनी ही रहे।

जाने माने पटकथा लेखक, शायर, गीतकार, निर्देशक गुलजार साहब को फिल्म जगत में उनके अतुलनीय कामों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। गुलजार साहब को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें 1972 में कोशिश फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का पुरस्कार, 1975 में फिल्म मौसम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सन 1987 में इजाजत फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार शामिल है। गुलजार साहब के ही शब्दों में, आईना देखकर तसल्ली हुई, आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। जी हां, पूरी दुनिया में आपके नाम का डंका ऐसे ही बजता रहेगा। आपकी फिल्में, आपकी कलम ऐसे ही हमारा मनोरंजन और मार्गदर्शन करती रहेंगी और हम पर उसका जादू चलता रहेगा। चलते चलते एक और बेहतरीन गीत आपकी कलम से रचा हुआ।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत। कुछ ही देर में आप सुनिए उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, और 2:30 पर आपकी और मेरी एक और होगी मुलाकात।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों की 12वीं मीटिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक घपले के मामले में तलाशी की कार्रवाई की है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों पर वोट बैंक सियासत की खातिर FCRA बिल पर गलत बातें फैलाने का इल्जाम लगाया है। झारखंड के कई हिस्सों में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसमियात महकमे ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और हुकूमत ने कौमी खेल अवार्ड का ऐलान कर दिया है। बैडमिंटन की खातून खिलाड़ी त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपी चंद समेत 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों का 12वां इजलास जारी है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत ने कहा कि ये इजलास अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, इत्तफाक राय को फरोग देने और माहौलियात से मुतालिक बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के इजलास के सदारत माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव कर रहे हैं। यह इजलास भारत की 2026 की ब्रिक्स सदारत के वसी तर मौजू इस्तेहकाम, इख्तरा, तआवुन और पायदारी की तश्कील के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि वो माहौलियात के वर्किंग ग्रुप के लिए मुस्बत नतीजों की खातिर एक मानखेज बातचीत और तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरुम्मीद हैं। 5वीं सेमिकॉन इंडिया 2026 कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में अगले महीने की 17 तारीख से होगी। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में 40 से ज्यादा मुल्कों के 500 से ज्यादा नुमाइशकार और तकरीबन 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस साल की सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का मौजू होगा सिलिकॉन से निजाम तक इकोसिस्टम की तामीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी सरकर्दा मुल्कों के आलमी CEOs के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। इन मुल्कों में अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नेदरलैंड्स और मलेशिया शामिल हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन KPSC के मुबैना पेपर लीक घपले के मामले में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। KPSC के साबिक चेयरमैन शिवशंकर अप्पा एस साहूकार को इम्तहान का पर्चा लीक होने के मामले में मुलजिम बताया गया है। उन पर OMR शीट्स में हेराफेरी करने और सरकारी वेटनरी अफसरों की भर्ती के लिए एक एक उम्मीदवार से 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का इल्जाम है। यह इल्जाम भी लगाया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी ने बिचौलिए का काम किया था। इस तनाजुर में ईडी ने शिवशंकर अप्पा और KPSC के कुछ साबिक अरकान की रिहाइश गांवों और प्राइवेट कंपनी से वाबस्ता दफातर में तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाया है कि वो वोट बैंक से सियासत की खातिर गैर मुल्की एहतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल के ताल्लुक से गलत जानकारी फैलाने में लगी हुई हैं। एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मजकूरा बिल से गैर मुल्की एहतियात की आमद में शफाफियत लाई जा सकेगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। जनाब रिजिजू ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि

0: तरह की झूठी बातें फैलाकर सियासत करना बिल्कुल नामुनासिब बात है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: बीजेपी ने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स में यौम आजादी की तकरीबात के दौरान कौमी गीत वंदे मातरम की तोहिन किए जाने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी के तर्जमान रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब कांग्रेस पार्टी कौमी गीत का एहतराम भी नहीं कर सकती तो उसे तहरीक आजादी पर अपनी इजारादारी का दावा करने का सिलसिला तर्क कर देना चाहिए। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा की कल नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई और उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। एक बयान में एम्स ने कहा है कि अमराज़े कल्ब के महकमे में जनाब नड्डा की

तो उसे तहरीक आज़ादी पर अपनी इजारादारी का दावा करने का सिलसिला तर्क कर देना चाहिए। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा की कल नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई और उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। एक बयान में एम्स ने कहा है कि अमराज कल्ब के महकमे में जनाब नड्डा की निगहदाश्त की जा रही है। उन्हें बेचैनी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया था।

0: को रवाना किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के गहरे दबाव का हल्का बनने से झारखंड और पड़ोस की रियासतों में मौसम में तब्दीली आई है। रांची, जमशेदपुर, पलामू और रियासत के कई दीगर हिस्सों में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने से मुतालिक महकमे ने लोगों को सलाह दी है कि वो महफूज मकामात पर रहें, क्योंकि 40 से लेकर 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: खलीज बंगाल के ऊपर हवा के गहरे दबाव का हल्का झारखंड के करीब पहुंच गया है और अब ये रांची के कोई 100 किलोमीटर शुमाल मशरक में मरकूज है। इसके जेरे असर रियासत के शुमाल वस्ती और शुमाल मगरबी हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसमियात महकमे ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिले में इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक

सरकार ने 2025 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। मुमताज कारकर्दगी के लिए त्रिशा जोली और पुलेला गायत्री गोपीचंद की खवातीन की सरकर्दा भारतीय बैडमिंटन जोड़ी के साथ साथ 15 दीगर खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड पेश किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहानंद कुमार चौहान को द्रोणाचार्य अवार्ड पेश किया जाएगा। नई दिल्ली में जारी BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में भारत की उन्नति हुडा खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। उन्होंने म्यांमार की खिलाड़ी को शिकस्त दी। इधर आज ही लक्ष्य सेन मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में खेलेंगे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के माहौलियात के वजीरों की 12वीं मीटिंग नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक घपले के मामले में तलाशी की कार्रवाई की है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों पर वोट बैंक सियासत की खातिर FCRA बिल पर गलत बातें फैलाने का इल्जाम लगाया है। झारखंड के कई हिस्सों में कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसमियात महकमे ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और हुकूमत ने कौमी खेल अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। बैडमिंटन की खातून खिलाड़ी त्रिशा जोली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत 15 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी

0: पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिये, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जन गण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक

ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।

0: को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के

0: के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
1: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाज

मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य

यहां अरुमनैयागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दर्द को बयां करने का एक बहाना ही नहीं है, बहुत कुछ होता है जो गानों का हिस्सा होता है या फिल्म का उतार चढ़ाव इन गानों का हिस्सा बन जाता है। एक गीत सुनते हैं और फिर बात करते हैं इस गीत या इसके जो फिल्म है उससे जुड़ी दास्तां।

डी बर्मन साहब ने, और इस फिल्म के लिए रंजीत बिस्वास बेस्ट साउंड डिजाइन का, जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। फिल्म के जो कलाकार थे संजीव कुमार, बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टेड एक्टर के तौर पर डेनी को नॉमिनेटेड किया गया था। तो ये तो इस फिल्म से जुड़ी छोटी सी कहानी रही। इसी तरह गीतों से और फिल्मों से जुड़ी कहानियां, कुछ दास्तां यहां बयां होती रहेगी। सुनते रहें संगीत.com, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1।

0: शकील बदायूनी का लिखा गीत नौशाद साहब के संगीत से सजा और लता जी की आवाज में आपने मुगले आजम फिल्म का ये गीत सुना और इस गीत के लिए कहते हैं कि बहुत ही भव्य सेट तैयार किया गया था। कांच के इस शीश महल में शीशों का कांच का सामंजस्य कुछ इस तरह से रखा गया कि फिल्म की अदाकारा के डांसिंग मूवमेंट्स इसमें कैद हो जाए। काफी जद्दोजहद के बाद जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही मुश्किल का ये काम रहा इस गीत को फिल्माना। हालांकि मुगले आजम फिल्म की ही जैसे बोलते हैं ना इतिहास रच गई। इसका एक एक शॉट बहुत ही बेहतरीन और उम्दा तरीके से फिल्माया गया है। इस गीत में मधुबाला जी की जो खूबसूरती है ना और नृत्य तो देखते ही बनता है, लेकिन इसे फिल्माने में काफी लंबा समय लगा और भारी खर्च हुआ, तब जाकर हम इस गीत का आनंद ले पाते हैं।
1: एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: पतंग उड़ाए खुशियां मनाए पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
3: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 संगीत.com का ये सफर यहाँ पर मैं और आप तय कर रहे हैं और जो बातें हो रही हैं ना वो तो आप सुन ही रहे हैं कि हम गीतों के बारे में या उनसे जुड़ी जो उनकी फिल्में हैं उनके बारे में कुछ किस्से यहाँ पर बयां कर रहे हैं। कुछ गीत फिल्मों से पहले ही तैयार हो जाते हैं और उन्हें फिल्म में सिचुएशन के अनुसार रख लिया जाता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि अच्छे और बेहतरीन गानों के लिए सिचुएशन तैयार की जाती है, क्योंकि वो गाना फिल्म में डालना था, इसलिए कहानी में थोड़ा हेर फेर करके उस गीत के लिए जगह बनाई जाती है। मेरा नाम जोकर फिल्म का टाइटल गीत भी बाद में फिल्म में शामिल किया गया, ये बात आप जानते हैं। और ये गीत जो कि इतिहास रच गया, फिल्म को उसके टाइटल को जस्टिफाई करता ये गीत, क्या कहने इसके। जीना यहाँ मरना यहाँ मुकेश साहब के बहुत ही सुरीली मधुर आवाज में और गीत के जो बोल लिखे हैं शैलेंद्र साहब के हैं, संगीत की धुनों से इस गीत को सजाया है शंकर जयकिशन साहब ने। मेरा नाम जोकर फिल्म से।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल संगीत.com का यह हसीन सफर यहां पर तय हो रहा है। साथ हूं मैं आपके अंजलि। दोस्तों, बात हो रही है गीत संगीत

0: एक खुशियां जोड़े दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल संगीत.com का यह हसीन सफर यहां पर तय हो रहा है। साथ हूं मैं आपके अंजलि। दोस्तों, बात हो रही है गीत संगीत की, फिल्मों के और उनसे जुड़े कुछ किस्से, फिल्मी हो या उस गीत संगीत से जुड़ा हुआ। ये संगीत जिनका हम आनंद लेते हैं फिल्मों में, बस हमें लगता है

भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।

गाना सुनना चाहते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और क्या कहते हैं ये आपको बता देते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल सोनू एंजल पप्पी और तमन्ना भाटिया के साथ आपका मैसेज आता है जमशेदपुर से और ससुराल फिल्म से आपने गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। और इसी के साथ मैसेज जो पहुंच रहे हैं हमारे पास वो बहुत सारे आ रहे हैं। जॉन डिकोस्ट्रो पर्ल विलिस रोजी हैं हमारे साथ। चोरी चोरी कोई आई

मान और कलीम अंसारी के साथ, और खूबसूरत इमोजीज भी आपने भेजे हैं। फारूक अली खान प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। और कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से आप कहते हैं कि आपकी प्रेजेंट लगा दें, तो भाई क्लास चल रही है क्या? प्रेजेंट आपकी लग गई है। और साथ ही हमारे पास मैसेज आता है मोहम्मद फारूक का, आपके साथ हैं शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुल फराज शेख और बेबी।

आता है राम, नरेश, चिक, रेखा, करण, अल्पेश, रघु, रचना यादव, सृष्टि यादव, सावी यादव और संगम विहार हनुमान मंदिर से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। जय का भी मैसेज हमें मिलता है, आप होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल हैं, आपके साथ है सचिन, अमन, दीपांशु खोरवाल, कमलेश खोरवाल और फिल्म सावन भादो से आप एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजते हैं। अगला जो मैसेज है

0: ना तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए

वाली परी, छोटी बच्ची हैं ये। तो आप सभी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। गांव घिटोरनी से साबिर हुसैन मिरासी, मोहम्मद बेगम प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। अजीत भावसर का मैसेज हमें मिलता है, प्रमिला भावसार भावेश सनी भावसार के साथ ब्लैकमेल फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, एक गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है और आशीष कुमार ने ये मैसेज हमें भेजा है।

0: पतंग उड़ाए खुशियां मनाए पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
1: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा

पहले एक और रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश कर रही हूं, और ये मैसेज हमारे पास आया है राजे जाधव देशमुख परिवार का। प्रशांत राजे माधव जाधव देशमुख, जग्गुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सरवद, हर्षता सानवी, प्रणाली देशमुख, सन्यासी फिल्म से आपने इस गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में। जाने से पहले ये गाना आप सबके लिए, आप सभी ने मैसेजेस लिखकर भेजे इसके लिए तहे दिल

0: प्राइम मिनिस्टर, उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। इसे देश के सबसे चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले ट्रैकिंग मार्गों में से एक माना जाता है। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। केरलम में विजयंगम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विजयंगम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जहाज में 2 कंटेनर भेजे गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विजयनगरम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट से छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 14 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The 12th BRICS Environment Ministers meeting concluded successfully today at Bharat Mandapam in New Delhi under India's BRICS chairship in 2026. The two-day meeting aimed to foster consensus and strengthen environmental cooperation among the BRICS nations. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav presided over the meeting. Addressing the gathering, Mr. Yadav said that as chair, India remains committed to fostering open, constructive and consensus-based dialogue and greatly values the perspectives and contributions of all member countries.
4: As nations pursue their development aspirations, they are navigating an increasingly complex environmental reality. The impact of climate change, biodiversity loss and pollution, the triple planetary crisis together with growing disaster risk are affecting communities and ecosystems worldwide. These challenges are particularly significant for developing countries where environmental vulnerability is often closely intertwined with broader development priorities including poverty eradication, food security and inclusive growth.
3: The Unique Identification Authority of India, UIDAI, has achieved a major milestone in its nationwide mission mode drive for mandatory biometric updates, completing more than 2 crore biometric updates for school children across the country. The special drive initiated in September last year has now covered over 1,56,000 schools, enabling school children to complete the Aadhaar biometric. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused opposition parties of spreading misinformation on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill for vote bank politics. In an interview to a private news agency, he said the bill will bring transparency to foreign funding flows. He said sending the bill to a joint parliamentary committee is an excellent decision. The BJP today hit

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ।
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

0: और एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की 15 रिक्तियों के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत विज्ञापन को आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट है www.upvetunivy.edu.in। भारत संचार निगम लिमिटेड कार्यकारी निदेशक और कार्यकारी निदेशक नए व्यवसाय के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी के लिए देखें BSNL की वेबसाइट www.bsnl.co.in। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं इन पदों के लिए प्रबंधक RE, प्रबंधक वित्त और प्रबंधक भूमि। इच्छुक योग्य उम्मीदवार विस्तृत मानदंड, अर्हता, अपेक्षित अनुभव, मानदेय और विज्ञापन का पूरा ब्यौरा देखने के लिए देखें वेबसाइट www.ngel.in। वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में आप ये जानकारियां विस्तार से ले सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में उपलब्ध हैं इन पदों के लिए रिक्तियां। सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारी सेकंड इन कमांड कुल पद 5, स्पेशलिस्ट चिकित्सा अधिकारी उप कमांडेंट कुल रिक्तियां हैं 162 और चिकित्सा अधिकारी सहायक कमांडेंट के लिए 115 रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.recruitment.itbpolice.nic.in। तटीय जल कृषि प्राधिकरण में अधीक्षक का एक पद रिक्त है जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। पद और पात्रता शर्तों के विवरण के लिए देखिए वेबसाइट caa.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: पूरे का पूरा आकाश घुमाकर बाजी देखी मैंने, काले घर में सूरज रख के तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे। मैंने एक चिराग जलाकर अपना रास्ता खोल लिया, काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा। मैंने काल को तोड़ के लम्हा लम्हा जीना सीख लिया। जी हाँ, विपरीत परिस्थितियों में फिर खड़े होने का संदेश देती प्रख्यात गीतकार गुलजार की इन पंक्तियों के साथ आपका अभिनंदन। नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
4: हेलो प्रियंका। हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट प्रियंका अरोड़ा। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। सो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। 12th BRICS Environment Ministers Meeting concludes in New Delhi, strengthening environmental cooperation under India's 2026 BRICS chairship.
3: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की।
4: Enforcement Directorate conducts searches over Karnataka Public Service Commission paper leak scam.
3: झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान।
4: गवर्नमेंट अनाउंसेस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 ट्रीशा जोली एंड पुलेला गायत्री गोपीचंद अलोंग 17 अदर स्पोर्ट्स पर्संस नेम फॉर अर्जुन अवार्ड।
3: और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में।

0: Yes, sir. Today is August 18th and we are marking World Never Give Up Day, a global movement celebrating perseverance, resilience, determination, and that inner voice that says, keep going, you're not done yet. The day reminds us that setbacks are not necessarily failures. They can be lessons, opportunities to begin again, and stepping stones towards a better future.
1: बिल्कुल अभिषेक, और किसी ने क्या खूब कहा है कि doubt kills more dreams than failure ever will. और ऐसा मुमकिन होता है जब आप, अगर आप देखेंगे कि आप विफलता पर गौर ज़्यादा करेंगे और अपने सपनों को छोड़ देंगे तो वो आप पर हावी हो सकती है. तो श्रोताओं, ज़रा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे आपने लगभग छोड़ ही दिया था लेकिन अब भी चाहत है कि उसे हासिल कर पाते.
0: Maybe it's a career goal, maybe it's getting fit, learning a new skill, finishing your studies, starting a business, or perhaps simply believing in yourself again.
1: और एक जरूरी बात, निराश महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि आप असफल हो गए हैं. यहाँ तक कि सबसे मजबूत और पक्के इरादे वाले लोगों के मन में भी कभी कभी ये सवाल आता है कि क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ.
0: Exactly, Priyanka. And the difference isn't that resilient people never struggle, it's that they learn to pause, reset and keep moving.

0: And for a student, perseverance may mean trying again after an unsuccessful examination. For an entrepreneur, it may mean rebuilding after a failed venture. For an athlete, it can mean returning to the field after defeat or injury. And for ordinary people, it can simply mean finding the strength to face another difficult day.
1: बिल्कुल, don't watch the clock, do what it does. Keep going. और अब आपको फिल्म गुंजन सक्सेना से पंकज त्रिपाठी की आवाज में एक ऐसा ही प्रेरणादायक संवाद सुनाते हैं।
2: अरे बेटा, मेहनत करते हैं ना जो हमारे हाथ में है, बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। यहाँ बैठ के आंसू बहाने से बेहतर है

0: सक्सेना से पंकज त्रिपाठी की आवाज में एक ऐसा ही प्रेरणादायक संवाद सुनाते हैं।
1: अरे बेटा, मेहनत करते हैं ना, जो हमारे हाथ में है, बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। यहाँ बैठ के आंसू बहाने से बेहतर है 2 हफ्ते पसीना बहा ले। अंजन, गेट अप, उठो।
0: वर्ल्ड नेवर गिव अप डे की शुरुआत 2019 में एलन हेरोइट ने की थी, जिन्हें मिस्टर नेवर गिव अप के नाम से जाना जाता है। ये अभियान दुनिया भर के लोगों को सार्थक लक्ष्यों को पाने की कोशिश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
2: And there are some wonderful ways people participate, from perseverance walks and community initiatives to simply sharing stories of overcoming adversity.
0: तो श्रोताओं, आज के लिए आपका पहला चैलेंज ये है कि किसी ऐसे अधूरे सपने के बारे में सोचिए जो पूरा नहीं हो पाया। उसे जज ना करें, खुद से ये ना कहें कि अब बहुत देर हो चुकी है। बस उसे याद करें और अब खुद से पूछें, आखिर मैं ये क्यों चाहता था।
2: Because Priyanka, sometimes we don't actually need a brand new dream. Sometimes we just need to reconnect with an old one. And here's another secret to persistence. Don't stare the entire mountain. Focus on the next step.
0: बिल्कुल सही कहा अभिषेक। और एक बड़ा लक्ष्य बहुत भारी लग सकता है, लेकिन उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले, जैसे एक फोन कॉल, एक एप्लीकेशन, एक वर्कआउट, एक पेज, एक बातचीत, बस एक एक दिन करके आगे बढ़ें।
2: And progress doesn't always look dramatic, Priyanka. Sometimes progress is simply getting up and trying again tomorrow.
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो छोटी छोटी उपलब्धि आप हासिल करते हैं ना, उसे उत्सव की तरह मनाएं, और खुद पर गर्व करने के लिए आपको फिनिश लाइन तक पहुंचने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
2: So the journey towards success is rarely a straight line. It is often marked by obstacles, disappointments and moments of doubt. What matters is the willingness to rise, learn and continue. Here's a dialogue from the movie War in the voice of Hrithik Roshan.
3: मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो, भागो, दौड़ो, खेलो, लड़ो, सब कुछ। पर एक बार मैच खत्म हो जाए, ये मत सोचो कि तुम हारे या जीते, बल्कि अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गिव इट माई वेरी बेस्ट और नॉट। और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, देन यू आर अ विनर।
0: और अब एक और महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते हैं।
2: Yes, never give up does not mean never walk away.
0: कभी कभी किसी खास रास्ते को छोड़ देना असल में हिम्मत का काम होता है। अगर कोई लक्ष्य आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको आपके मूल्यों से दूर कर रहा है, या आपको किसी नुकसानदेह स्थिति में बनाए हुए है, तो उससे पीछे हट जाना सही फैसला हो सकता है।
2: यू कैन चेंज द गोल, यू कैन चेंज द रूट, यू कैन टेक अ ब्रेक, यू कैन स्टार्ट अगेन।
0: बिल्कुल, मकसद जिद करके तकलीफ सहना नहीं है, मकसद एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ना है जो सार्थक, सेहतमंद और संतोषजनक हो।
2: सो टुडे लेट्स मेक अ प्रॉमिस, नॉट दैट वी विल नेवर स्ट्रगल, बट दैट व्हेन वी स्टंबल वी गिव आवरसेल्व्स परमिशन टू गेट बैक अप।
0: और खत्म करने से पहले, यहाँ वर्ल्ड नेवर गिव अप डे मनाने के 5 आसान तरीके हैं जो हम आपसे बांटना चाहेंगे। पहला ये है कि अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य लिखें, और जो सबसे जरूरी है उसे चुनें, अगले कदम के लिए फिर तैयार हो जाएं।
2: So you have spoken of the first, then let me speak of the number 2. Revisit an unfinished goal. Maybe today is the day you give it another chance.
0: और जो तीसरा कदम ये है कि किसी और का हौसला बढ़ाएं, एक मैसेज भेजें जिसमें लिखा हो, मुझे आप पर भरोसा है, आगे बढ़ते रहें, तो किसी और को प्रोत्साहित करेंगे, तो एक जो नई ऊर्जा आप में भी पैदा होगी। और चौथा ये है कि अपनी तरक्की का जश्न मनाएं, इस बात को नजरअंदाज ना करें कि आप अब तक कितना आगे आ चुके हैं।
2: So we have already spoken about the 4 steps, and now let me speak about the 5th step. Take care of yourself, rest when you need, reset when you need to. Persistence works best when it is supported by self-care. And to everyone listening today, whatever you are facing, whatever dream you are carrying, whatever mountain you are climbing, the message of the day is simple: never give up on your dreams, never give up on yourself, and never give up ऑन होप।
0: बिल्कुल अभिषेक, और एक गीत है ना कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों से आगे, तो यही गीत आज के लिए इस हमारी डेटलाइन को बिल्कुल सार्थक करता है। तो कभी

0: किया जा रहा है। ये जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है प्रदेश के लगभग 7,000 गांवों को लाभान्वित करेगा और सेप्टिक टैंकों तथा जो एकल गड्ढा शौचालयों से निकलने वाला मल होता है उस अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण करेगा। इस पर एक खास रिपोर्ट है रितेश की, आइए सुनते हैं।
1: इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से प्रदेश के लगभग 7,000 गांव लाभान्वित होंगे। बीते वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण और इनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और अधिकांश ग्रामीण परिवारों तक शौचालय सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। हालांकि स्वच्छता केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है, समय समय पर सेप्टिक टैंकों और गड्ढों की सफाई और उनमें जमा होने वाले फिकल स्लज का सुरक्षित प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। पर्वतीय राज्य हिमाचल में प्राकृतिक जल स्रोतों, झरनों, खड्डों और नदियों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने अलग अलग फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के बजाय सह उपचार यानी को ट्रीटमेंट मॉडल को अपनाया है। इस मॉडल के अंतर्गत चयनित एसटीपी में आवश्यक आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रित फिकल स्लज का वैज्ञानिक उपचार नगरों के सीवेज के साथ किया जाएगा। प्रदेश में अब तक 30 को ट्रीटमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। ये पहल हिमाचल प्रदेश की स्वच्छता यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब ध्यान केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण स्वच्छता श्रृंखला के सुरक्षित और सतत प्रबंधन पर केंद्रित किया जा रहा है। इससे ODF उपलब्धि को स्थायी बनाए रखने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य को भी नई मजबूती मिलेगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
0: अरब देश के पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहते हैं और आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में 274 किलोमीटर लंबे बटोत डोडा किश्तवाड़ अनंतनाग नेशनल हाईवे पर दो रणनीतिक सुरंग परियोजनाओं और अप्रोच सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी। इसका मकसद कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी देना और चिनाब घाटी तक पहुंच को बेहतर बनाना है।
2: The Union Cabinet has recently given its nod to two important tunnel projects in Jammu and Kashmir to strengthen road connectivity between Jammu and Kashmir divisions of the Union Territory. The Sudmahadev Dranga Tunnel falls on Chenani Sudmahadev Goha Doda Khilani National Highway, while Singhpura Wailo Tunnel is part of Kishtwar Anantnag National Highway. Both the strategic tunnel projects were approved by the Cabinet at an estimated cost of ₹9,800 crore and will be completed in 5 years. The projects will be fully funded by the central government. The tunnels are aimed at bypassing difficult stretches of National Highway 244 that are frequently affected by snowfall, landslide and adverse weather, disrupting traffic and isolating several areas during the winter months. Once completed, the projects will provide a safer and more efficient route for commuters, tourists and freight movement. The Chenani, Doda and Kishtwar Anantnag National Highways will serve as alternate road links between Jammu and Kashmir and will also improve road connectivity in Jammu, Doda and Kishtwar districts. Besides the twin tunnels, their approach roads have also been approved. The 39-kilometer long Singhpura-Wailo stretch will have 10-kilometer unidirectional twin tube tunnels, while 13-kilometer long Sudmahadev-Dranga stretch will have 8-kilometer twin tube tunnels. The tunnels are aimed at bypassing difficult stretches of the twin highways and make them operational round the year even when there is snowfall in the upper reaches. With tourism picking up, better road connectivity will give a boost to the sector in Udhampur, Chenab Valley and connecting areas. Sudmahadev and Manthalai have already emerged as major pilgrim tourist destinations in Udhampur district of the Jammu region, attracting large number of people daily. The upcoming highways are also significant from defense point of view as they will serve as alternate road links to the Kashmir Valley from Jammu region. Presently, Jammu-Srinagar National Highway NH-44 is the only credible road link between Jammu and Kashmir divisions, as Rajouri-Punch-Shupian-Mughal Road is the only fair weather road. This is N. Gulshan Raina for Parikrama from Akashwani, Jammu.
3: Yes, and moving on to some sports news. In men's cricket, Sri Lanka were 34-3 in the second innings against India on the fourth day of the first test in Galle when reports last came in. Earlier, India were bowled out for 193 in the second innings, setting Sri Lanka a target of 372 runs.
0: और अब बैडमिंटन कोर्ट का रुख करते हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप

0: रघुपति राघव राजा राम।
1: बिल्कुल, विख्यात शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने अपने समय की तमाम धुनों की स्वर लिपियों को संग्रहित कर आधुनिक पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। पलुस्कर संभवतः पहले ऐसे शास्त्रीय गायक हैं जिन्होंने संगीत के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए। बाद में वे मथुरा आए और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की बंदिशें समझने के लिए ब्रज भाषा सीखी। बंदिशें अधिकतर ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं और इसके अलावा उन्होंने मथुरा में ध्रुपद शैली का गायन भी सीखा। आइए सुनते हैं उनके गायन की ये वानगी।

0: और अब आगे बढ़ते हैं। हम चाहेंगे कि आप ये नज्म सुनिए और ये सुनकर आप खुद ही सोचिए कि इस गीतकार के लिखे अल्फाज में ज्यादा गहराई है या उनकी आवाज में।
1: सिर्फ एहसास कि तुम पास हो बस, सिर्फ एहसास के नजदीक हो तुम। अनगिनत लोगों में घबराई हुई, अजनबी आंखों से लज्जाई हुई। तन पे लगती हैं चिपकती आंखें, बर्फ सी ठंडी सुलगती आंखें। अनगिनत नजरों में उलझा लिपटा, अनगिनत चेहरों में रखा चेहरा।
0: जी हाँ, जिंदगी के एहसासात को इस अंदाज में कह जाना कि सीधे दिल में उतर जाएं, ये खासियत है संपूर्ण सिंह कालरा की, जिन्हें हम गुलजार के नाम से जानते हैं। आज उनका जन्मदिन है।
2: Yes, and he is widely celebrated for his profound contributions to Urdu and Hindi literature, as well as his timeless work in Indian cinema. And I'd like to mention here, Priyanka, that he won an Academy Award Best Original Song and a Grammy Award for co-writing the globally renowned song Jai Ho from Slumdog Millionaire.
0: बिल्कुल, उनके लिखे गीत मोरांग लेले से लेकर कितने बीड़ी जलेले या तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, उन्होंने हर दौर के अनुसार गीत लिखे और ऐसे ही इन गीतों पर आपको एक मेडली सुनाते हैं।

0: जी हाँ, अब हम भी चलें। समय कह रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए, तो प्रियंका और अभिषेक को दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां

0: सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को बहुत महत्व देता है। श्री यादव ने ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह द्वारा तैयार किए गए 4 ज्ञान संकल्पों का अनावरण किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए 4 नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही फैसला है।

0: के लिए पहले जहाज और दो कंटेनर के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अनुपस्थिति, स्थायी रूप से स्थानांतरण, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण और मृत्यु जैसे कारणों से 2,07,03,268 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अधूरे रह गए। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 40 रन बना लिए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्नति ने म्यांमार की थे थतार थुजार को हराया। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। भारत की प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और पल्लेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 खिलाड़ियों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The 12th BRICS Environment Ministers meeting concluded successfully today at Bharat Mandapam in New Delhi under India's 2026 BRICS chairship. The two-day meeting aimed to foster consensus and strengthen environmental cooperation among BRICS nations. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, presided over the meeting. Addressing the gathering, Mr. Yadav said that as chair, India remains committed to fostering open, constructive and consensus-based dialogue and greatly values the perspectives and contributions of all member countries.
2: As nation pursue their development aspirations, they are navigating an increasingly complex environmental reality. The impact of climate change, biodiversity loss and pollution, the triple planetary crisis together with growing disaster risk are affecting communities and ecosystems worldwide. These challenges are particularly significant for developing countries where environmental vulnerability is often closely intertwined with broader development priorities including poverty eradication, food security and inclusive growth.
1: The Unique Identification Authority of India, UIDAI, has achieved a major milestone in its nationwide mission mode drive for mandatory biometric updates, completing more than 2 crore biometric updates for school children across the country. The special drive, initiated in September last year, has now covered over 1,56,000 schools, enabling school children to complete their Aadhaar biometric. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused opposition parties of spreading misinformation on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill for vote bank politics. In an interview to a private news agency, he said the bill will bring transparency to foreign funding flows. He said sending the bill to a joint parliamentary committee is an excellent decision. The BJP today hit out at the Congress Party for disrespecting the national song Vande Mataram during Independence Day celebrations at the All India Congress Committee headquarters in New Delhi. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Ravi Shankar Prasad said, "The Congress Party should stop claiming monopoly to the custodian of the freedom movement when they cannot respect the national song." BJP National President Nitin Naveen has appointed new state in charges for Uttar Pradesh, Punjab and Gujarat. Vinod Tavle has been appointed as in charge of Uttar Pradesh and Jagdish Ishwar Bhai Patel as co-in charge. Dr. Satish Punia has been appointed as in charge of Punjab and Tarun Chugh as in charge of Gujarat. With a deadline for submission of voter enumeration forms ending yesterday, a total of 21.16% of voters in Maharashtra

कुछ इस तरह से बसर की है जिंदगी मैंने, कुछ इस तरह से बसर की है जिंदगी मैंने कि खुद को खो दिया और तुम्हें पा लिया। स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का गाते गुनगुनाते में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गाते गुनगुनाते में लाती हूं मैं आपके लिए कुछ सवाल जिनके जवाब आप हमें लिख भेजते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। और इस सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले सुन लेते हैं बंटी और बबली से ये गाना।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: आज का पहला सवाल जुड़ा है एक ऐसी रोमांटिक एक्शन फिल्म से जिसे डायरेक्ट किया राज कंवर ने। फिल्म को अपनी आवाजों में, गीतों से सजाया कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर और सोनू निगम ने। मेन लीड्स के अलावा इस फिल्म में अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल, आलोक नाथ, आशीष विद्यार्थी, जॉनी लिवर और मोनीश बहल ने बहुत ही बढ़िया जो है एक्टिंग की। अगर 90s की इस फिल्म को आप पहचान चुके हैं, इसका नाम जान चुके हैं, तो अब वेट नहीं करना है, जल्दी से अपना आंसर टाइप करना है और इसे भेज देना है fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। जब तक आप हमें लिखकर भेज रहे हैं जवाब, तब तक मैं सुनवा रही हूं आपको राजा हिंदुस्तानी से एक गाना। राजा हिंदुस्तानी कहानी है राजा और आरती सहगल की। इन किरदारों को निभाया है आमिर खान और करिश्मा कपूर ने। वैसे इन दोनों से पहले लीड रोल के लिए मनीषा कोइराला, जूही चावला और शाहरुख खान को भी कंसीडर किया गया था, लेकिन आखिरकार इस सुपरहिट फिल्म का हिस्सा बने आमिर और करिश्मा।

जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा इस गाने को सुनाने से पहले, और थोड़ी कन्फ्यूजन मुझे यहाँ नज़र आई, हालांकि सही जवाब भी पहुँचे हैं हमारे पास। तो पहला सही जवाब देने वाले हैं कौन, उनके नाम पर मैं पहुँच रही हूँ। तो जो तीसरा जवाब हमारे पास पहुँचा है वो पहला है, यानी कि तीसरी मेल में पहला सही जवाब आया है, जिसे लिखा है धीरज अरोड़ा ने। उसके बाद सही जवाब देते हैं जगदीश बजाज विकासपुरी से, और नागेंद्र ठक्कर तीसरे नंबर पर सही जवाब देते हैं। वैसे आप में से बहुतों ने जीत लिखा, दीवाना लिखा, और कुछ अलग अलग, एक दो और अलग नाम आए, जैसे जिद्दी और जी बादल, तो ऐसे कुछ नाम आपने बताए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जब आंसर बता दूंगी उसके बाद जो जवाब आप लिखेंगे या भेजेंगे मुझे, उन्हें शामिल नहीं करेंगे। सही जवाब है जीत। जी हाँ, जीत फिल्म का मैंने यहाँ जिक्र किया, उसके बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। उसे तीन लोगों ने जो पहले तीन नंबर पर पहचाना, उनके नाम मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद सही जवाब देने वाले हैं ईमान, रितेश, गिरीश, वैशाली बम और अजिंक्य बम। इसके बाद निरंजन भालेराव ने भी बिल्कुल सही सही बताया है, और सही जवाब हमें लिख भेजते हैं, किसी ने लिखा नहीं पता, तो ठीक है, आपने अपनी जेन्युइनिटी दिखाई कि आपको नहीं पता इस सवाल का जवाब। कोई बात नहीं, अगला सवाल उस पर ट्राई कर सकते हैं। तो जीत है वो फिल्म जिसमें सनी देओल, सलमान खान, करिश्मा कपूर, तब्बू, अमरीश पुरी, इस साइड जो एक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर रोल जिन्होंने निभाए, उनके नाम हम आपको हालांकि बता चुके हैं। इन सब ने एक्टिंग की। सनी देओल इसमें करण के रोल में नजर आए, और सलमान खान राजीव यानी कि राजू सहाय का रोल नजर आए, और करिश्मा ने काजल का जो है वो रोल निभाया। तो मैं जीत फिल्म से आपको गाना सुनाऊं, उससे पहले मैं आपसे अगला सवाल पूछती हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो भी 90s का ही है, और 90s की शुरुआत की ये फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया इंद्र कुमार ने। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने फिल्मफेयर अवार्ड सेरेमनी में कई नॉमिनेशंस अपने नाम किए, और हीरोइन को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। समीर साहब के लिखे गानों को म्यूजिक से सजाया आनंद मिलन ने। फिल्म के गाने इतने पसंद किए गए कि रिलीज के समय ये फिल्म चौथी सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली म्यूजिक एल्बम में आ गई। फोर्थ म्यूजिक एल्बम इस फिल्म की बन गई उस साल जब ये रिलीज हुई, जो सबसे ज्यादा बिजनेस कर रही थी। अगर आपने इस फिल्म को पहचान लिया है तो, या फिर आप गाने पहचान चुके हैं तो आप फिल्म भी पहचान चुके हैं, तो फिल्म का नाम हमें लिखकर भेजें fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। तब तक मैं आपको जीत फिल्म से गाना सुनवा रही हूं विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज में। तो अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो मैं आपको बता दूं कि गाते गुनगुनाते में मैं आपके लिए कुछ सवाल लेकर आती हूं जिनके जवाब आप हमें लिखकर भेजते हैं। और पहले सवाल का जवाब हमारे पास आ चुका है, नाम हम अनाउंस कर चुके हैं। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो 90s के दौर की शुरुआत की ये फिल्म है जिसका मैंने जिक्र किया, इंद्र कुमार ने इसे डायरेक्ट किया है, रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, और इस फिल्म की जो एक्ट्रेस हैं उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। समीर साहब के लिखे गानों को म्यूजिक से सजाया आनंद मिलन साहब ने। फिल्म का नाम लिखें और जल्दी से सेंड कर दें fmgoldaiadelhi@gmail.com पर।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो

कॉमर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

तो भाई सही जवाब अब बताने का टाइम आ गया है और आप लोगों ने भी लिखकर भेजे हैं। सही जवाब है दिल, जो 1990 में आई और इसमें एक्टिंग की आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और सईद जाफरी ने। पहला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है किसने, धीरज अरोड़ा ने और संजीव पवार ने हमें पहला सही जवाब लिखकर भेजा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं नागेंद्र ठक्कर और तीसरे पर इद्रिस सैफी। कुछ लोगों ने बेटा भी बताया, मतलब बेटा फिल्म का नाम भी लिखकर भेजा, लेकिन ये सही नहीं है। और इसके बाद नवीन भाटिया साहब ने सही जवाब लिखकर भेजा, निरंजन भाले राव ने बताया हमें सही जवाब, जगदीश बजाज हैं विकासपुरी से और सरोज यादव ने भी बिल्कुल सही सही जवाब लिखकर भेजा, सत्यप्रकाश सनौठिया, पुष्पेंद्र सिंह, योगेश नागर, शशि भूषण, ललित कुमार नोएडा से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान बुलंदशहर से, गिरीश वैशाली और जिनके बम वडोदरा से, डीबी राणा साहब नेहरू विहार दिल्ली से, बबलेश पवार बाड़मेर राजस्थान से और प्रदीप कुमार साहब का भी सही जवाब आता है। और सही जवाब देने वाले में हैं राजेश मानकलाल शाह और अभिषेक भारद्वाज। सीरी नारायण ने भी सही जवाब लिखकर भेजा बेंगलुरु से। और सही जवाब देते हैं उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, राकेश कुमार। इसी के साथ सही जवाबों का सिलसिला यहीं खत्म होता है और मैं आपको इस फिल्म से गाना भी सुनवाऊंगी, लेकिन गाना सुनवाने से पहले अगला सवाल आपसे पूछूंगी। और आप जानते ही हैं कि इसी तरीके से हमारा सीक्वेंस जो है वो गाते गुनगुनाते का सवाल जवाबों का चलता है। 1995 में राजकुमार संतोषी ने एक फिल्म डायरेक्ट की जिसमें हीरो और हीरोइन ने डेब्यू किया, यानी कि उनकी पहली फिल्म थी वो, और इनके रोल्स के लिए दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल और फीमेल डेब्यू से नवाजा गया, यानी कि इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट डेब्यू मेल और बेस्ट डेब्यू फीमेल का। इस फिल्म में डैनी डेंगजोप्पा, राज बब्बर, मुकेश खन्ना, इन सब ने भी एक्टिंग की। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया नदीम श्रवण ने और लिरिक्स लिखे समीर साहब ने। फिल्म के कुछ ट्रैक्स तो ऑडियंस को इतने पसंद आए कि बस कहने ही क्या। जी हाँ, इन्हीं में से एक गाना मैं आपको भी सुनवाऊंगी, लेकिन आपको पता है पहले आप सही जवाब जब लिखकर भेजेंगे उसके बाद हम गाना सुनवाएंगे। फिलहाल जिस फिल्म का आपने नाम लिखकर बताया दिल, उससे मैं आपको गाना सुनवा रही हूँ अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। अब वैसे अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आपको सवाल का जवाब लिखकर भेजना है FM Gold AIR Delhi @gmail.com पर।

0: चैनल है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल समय है ब्रेक का, ब्रेक पर से आएंगे और जानेंगे कि फिल्म का नाम आखिरकार क्या है।
1: एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

बिल्कुल, सफर तो ये चल ही रहा है और आपके जब जवाब होते हैं, आपका साथ होता है, तो सफर कब गुजर जाता है, कैसे गुजर जाता है, समय का पता नहीं चलता। लेकिन अभी जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैं आपको सुनवा रही हूँ सरफरोश फिल्म से एक बहुत ही प्यारा सा गाना।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

ढेर सारे आपके जवाब हम तक पहुंच गए हैं और पहला सही जवाब लिखकर भेजने वाले हैं नागेंद्र ठक्कर। दूसरे नंबर पर बताते हैं सही आंसर हमें धीरज अरोड़ा और संजीव पवार गाजियाबाद से। और तीसरे नंबर पर आते हैं नवीन भाटिया साहब मोती नगर से। इसके बाद भी बहुत सारे सही जवाब आए हैं तो मैं बिल्कुल आपके नाम पढ़ते चली जाती हूँ। पंकज कुमार हैं हमारे साथ, आशीष मिश्रा, इसके बाद राजेश और परिमल शाह, दीपक गुप्ता दिल्ली से सही जवाब लिखकर भेजते हैं और प्रकाश गोगिया भी बताते हैं फिल्म का सही नाम। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार ने सही सही जवाब लिखकर भेजा। ईमान और रितेश गाजियाबाद से बताते हैं सही जवाब। जुगेश रावत, गिरीश वैशाली, अजिंक्य बम वडोदरा से, अभिषेक भारद्वाज भी सही जवाब देते हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान बुलंदशहर से बताते हैं। निरंजन भालेराव का भी सही जवाब आया हमारे पास। जगदीश बजाज विकासपुरी दिल्ली से, सतप्रकाश सनौठिया हमें रोहिणी से सही जवाब लिखकर भेज रहे हैं और अजीत भावसार और प्रमिला भावसार हैं विरमगाम गुजरात से, ललित कुमार नोएडा से, डीबी राणा साहब नेहरू विहार दिल्ली से, जयंती नाशिकार हमें सही जवाब लिखकर भेजते हैं और साथ में बताते हैं कि बॉबी डियोल और ट्विंकल खन्ना ने इस फिल्म में एक्टिंग की। तो भाई बिल्कुल सही आपने जानकारी दी है और इसके बाद इदरीस सैफी ने भी बिल्कुल सही सही बताया है। शंकर लाखड़ा का सही जवाब हमारे पास आता है और आप झारखंड से हमारे साथ हैं। इसी के साथ राजकोट से जैमिन जैन, हेतल जैन ने बिल्कुल सही पहचाना है। प्रणव शिंटे हैं हमारे साथ मुंबई से, आपने भी बिल्कुल सही सही पहचान लिया है। और इसके बाद सही जवाब देने वालों में नाम आता है जयराम खोरवाल का और आप होली चौक से हमारे साथ हैं। अतिंद्र जोशी भी हैं हमारे साथ, स्वागत। कुछ नए नाम मुझे देखने को मिल रहे हैं, एमपी से हैं आप और सही जवाब देते हैं। बुलंदशहर से उमेश गौड़, मीना गौड़ आपका भी स्वागत। फारूक अली खान, फैजी, फरहास, फरहीन, फाहिरा, ताहिरा आपने भी बिल्कुल सही सही पहचान लिया है और सही जवाब देने वालों में नाम मैं शामिल कर रही हूं राजकोट से जैमिन जी का और मुझे लगता है कि ये नाम शायद पहले भी हमारे पास आ चुका है। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया ये मैंने आपको बताया, राजकुमार संतोषी ने। और प्रोड्यूस किसने किया ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आप गेस कर लेंगे, क्योंकि पता क्या होता है हर बार जब मैं आपके लिए सवाल लेकर आती हूं तो जो लास्ट क्वेश्चन तक आते आते ना मैं थोड़ी लीनियंट हो जाती हूं, आपको थोड़े ज्यादा क्लूज देने लग जाती हूं। तो इस बार मैंने नहीं बताया कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया धर्मेंद्र ने, मुझे लगा कहीं ना कहीं कनेक्शन आप लोग ढूंढ लेंगे कि धर्मेंद्र और बॉबी डियोल। खैर फिर भी आपने बताया, बहुत अच्छी बात और इससे पता चलता है कि आपको गानों में फिल्मों में कितना इंटरेस्ट है। बॉबी डियोल और ट्विंकल खन्ना को इस फिल्म के लिए अवार्ड मिला ये भी हमने आपको बताया। बॉबी डियोल ने इस फिल्म में बादल का किरदार निभाया, ट्विंकल खन्ना ने टीना ओबेरॉय का, डैनी डेंगजोप्पा एसीपी नेगी के किरदार में नजर आए और राज बब्बर दिनेश ओबेरॉय के। तो इस फिल्म से मैं आपको गाना सुनवा रही हूं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं इस फिल्म में। मैं आपको सुनवा रही हूं हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, पर इसमें और भी बहुत अच्छे गाने हैं जैसे लव तुझे लव मैं करता हूं, इश्क में एक पल, एक हसीन लड़की से, दिल पागल दीवाना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये गाना आइए सुनते हैं।

वैसे इस प्रिल्यूड धुन के साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूं। आप हर बार की तरह इस बार भी आपने इस प्रोग्राम में, इस कॉन्टेस्ट में, एक कॉन्टेस्ट हम कह सकते हैं कि छोटा सा कॉन्टेस्ट जो हम करते हैं यहाँ पर, उसमें हिस्सा लिया, आंसर लिखकर भेजे, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। इस गाने के बाद आप सुन सकेंगे समाचार। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें और फिर मिलूंगी आपसे इस वादे के साथ, इस गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ आपको।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की।

0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिये, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक मिली जानकारी के आधार पर गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। इसका नेटवर्क पंजाब से महाराष्ट्र, गुजरात और सिलीगुड़ी समेत 10 से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशुओं के जैविक माता पिता का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। पुलिस महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 146 जिंदा कारतूस, एक वॉकी टॉकी, 8 मोबाइल फोन, एक वाईफाई डोंगल और नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। केरलम में विजयंजम अंतर्राष्ट्रीय

0: India's premier women's badminton doubles pair, Trisha Jolly and Pulela Gopichand, along with 15 other sports persons from various disciplines, will be presented the Arjun Award for their outstanding performances in sports and games. And in men's cricket, chasing a target of 372 runs, host Sri Lanka were 84 for 4 in the second innings against India on the fourth day of the first test in Galle when reports last came in. Earlier, India were bowled out for 193 in their second innings, setting the visitors a target of 372 runs. Rishabh Pant top scored with 66 runs off 69 deliveries. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, देश ने हाल ही में अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं और नई तकनीक की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क तैयार करने और देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की घोषणा की। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इन तीनों पहलों के जरिए भारत किस तरह अपने युवाओं को नई तकनीकी क्षमताओं से लैस करने, शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, आज की अर्थव्यवस्था में तकनीक तेजी से रोजगार, शिक्षा और उद्योग की दिशा तय कर रही है। ऐसे समय में युवाओं को नई तकनीकों का ज्ञान देना केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का भी माध्यम है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल में प्रशिक्षण देने की घोषणा की। आइए रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि ये पहल भारत के युवाओं के लिए किस तरह नए अवसर सृजित कर सकती है।
3: श्रोताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, परिवहन और वित्त जैसे अनेक क्षेत्रों में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। ऐसे में AI से जुड़ी कुशल मानव शक्ति की मांग भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि AI का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और भारत के युवाओं को इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने घोषणा की कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
4: AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
3: इस पहल का उद्देश्य युवाओं को केवल तकनीक का उपभोक्ता बनाने के बजाय AI के क्षेत्र में नई संभावनाओं के साथ जोड़ना है। इससे युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप, नवाचार और तकनीकी उद्यमिता के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत में पहले से ही नई पीढ़ी को तकनीक और नवाचार से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अटल टिंकरिंग लैब, स्टार्टअप और युवा नवाचार का भी उल्लेख किया। आज देश में करीब 2.5 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय युवा तकनीक आधारित उद्यम और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। AI कौशल प्रशिक्षण इस क्षमता को और मजबूत कर सकता है। इसका लक्ष्य केवल नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसे युवाओं की एक बड़ी पीढ़ी तैयार करना है जो AI आधारित अर्थव्यवस्था में नेतृत्व कर सके।
2: श्रोताओं, तकनीकी कौशल के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक समान पहुंच भी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए महंगी कोचिंग एक बड़ी चुनौती बन रही है। अब रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि सरकार की मुफ्त

0: ऑनलाइन कोचिंग की पहल किस तरह इस चुनौती को कम करने का प्रयास है।
1: श्रोताओं, देश में बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन महंगी कोचिंग कक्षाओं का खर्च कई परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर कोचिंग का आर्थिक बोझ कम करने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का नेटवर्क तैयार करने की घोषणा की। ये घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर कोचिंग क्लासेस का आर्थिक बोझ ना आए, इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग का फैसला लिया है। इस दिशा में हम एक मजबूत नेटवर्क भी खड़ा करने वाले हैं।
2: हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: डिजिटल माध्यम के जरिए शिक्षा को व्यापक स्तर तक उपलब्ध कराने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अवसरों की समानता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस पहल का उद्देश्य केवल मुफ्त सामग्री उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि शिक्षकों, तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म को जोड़कर एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना है जिससे देश के अधिक से अधिक युवा लाभ उठा सकें।
0: श्रोताओं, युवा शक्ति और डिजिटल कौशल के साथ भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा भी जरूरी है। डिजिटल दुनिया में जिस तकनीक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें सेमीकंडक्टर प्रमुख है। अब रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर निर्माण में किस तरह अपनी क्षमता बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री ने आने वाले वर्षों के लिए क्या लक्ष्य रखा है।
3: श्रोताओं, आज लगभग हर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। मोबाइल फोन से लेकर मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और परिवहन व्यवस्था तक चिप आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में बताया कि 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र शुरू हो चुके हैं और इनमें हो रहा उत्पादन निर्यात भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले 7-8 वर्ष में और 5-7 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देती है।
2: भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका है और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5-7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले, ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग दे।
3: सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता बढ़ने से भारत को चिप की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, मेडिकल टेक्नोलॉजी और अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों के लिए घरेलू आपूर्ति को भी बल मिल सकता है। सेमीकंडक्टर उद्योग केवल एक विनिर्माण क्षेत्र नहीं है, इससे अनुसंधान, डिजाइन, इंजीनियरिंग, कौशल विकास और उच्च तकनीक वाले रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।
0: श्रोताओं, AI कौशल, डिजिटल शिक्षा और सेमीकंडक्टर निर्माण, ये तीनों पहल अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी दिखाई देती है, लेकिन इनके बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। AI के लिए कुशल युवा चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा चाहिए और नई तकनीक के लिए मजबूत डिजिटल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता जरूरी है। इसलिए इन तीनों क्षेत्रों में एक साथ निवेश भारत की नई तकनीकी अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत कर सकता है। 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल से जोड़ना भारत की मानव पूंजी को नई दिशा देने का प्रयास है। मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग शिक्षा के अवसरों को अधिक व्यापक बनाने की पहल है। वहीं सेमीकंडक्टर संयंत्रों का विस्तार, तकनीकी आत्मनिर्भरता और उच्च तकनीक वाले विनिर्माण को मजबूत करने की दिशा में कदम है। युवा शक्ति, तकनीकी कौशल और आत्मनिर्भर तकनीकी आधार, इन तीनों का मेल भारत को नई पीढ़ी की अर्थव्यवस्था में मजबूत भूमिका निभाने में मदद कर सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। नमस्कार।

प्रोत्साहन पुरस्कारेण अलंकृता भविष्यति। एफआईएच महिला हॉकी विश्व चषक प्रतिस्पर्धायां भारतीय महिला दलम अद्य सायं नीदरलैंड्स देशस्य एम्स्टेलवीन नगरस्थे वेगनर हॉकी क्रीडांगणे स्वकीये द्वितीय समूह स्तरीय द्वंद्वे दक्षिण अफ्रीका दलेन सह स्पर्धिष्यते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एषा स्पर्धा भारतीय मानक समयानुसारं सायं सार्धषड्वादने प्रारप्स्यते।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,200। रीजनल रूरल बैंक्स रजिस्टर ओवर 10% राइज इन ग्रॉस लोन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स में लगभग 500 अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,200 अंक से नीचे पहुंचा। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाए ऋण में पिछले एक साल के दौरान 10% से अधिक की वृद्धि और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। और तमाम खबरों पर चर्चा के लिए आज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: वार्म वेलकम सुषमा।
2: थैंक यू राजेश, थैंक यू निखिल।
0: बिफोर वी प्रोसीड, हियर इज अ डिस्क्लेमर। द व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स इन दिस प्रोग्राम आर देयर ओन एंड नॉट दोज ऑफ आकाशवाणी। Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़ककर 24,155 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में लगातार तीसरे दिन सुस्ती आई जबकि निफ्टी छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक आज 0.4% नीचे आए जबकि स्मॉल कैप में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। इससे पहले आज सुबह कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से बाजार लाल निशान के साथ खुले थे।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन द नेगेटिव टेरिटरी टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइंड 493 पॉइंट्स और 0.63% टू क्लोज एट 77,235। द निफ्टी स्लिप्ड 133 पॉइंट्स और 0.55% to settle at 24,155. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.4%, while the small-cap 100 index remained unchanged. The Sensex extended its losing streak for the third consecutive session, while the Nifty closed lower for the sixth straight day. While the markets opened lower amid weak global cues, both indices remained under pressure and traded in a range-bound manner through most of the session. However, towards the fag end of the session, the markets extended their decline amid selling pressure ahead of the weekly expiry of Nifty futures and options contracts.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयरों में आज नुकसान दर्ज हुआ। सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में एशियन पेंट्स 2.4%, इन्फोसिस 2% और एचसीएल टेक 1.9% शामिल थे। वहीं इसके उलट एक्सिस बैंक में 0.9%, पावर ग्रिड में 0.7% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 21 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड विद लॉसेस। Among the top laggards, focused IT declined 1.8%, information technology dropped 1.7% and realty lost 1.3%. In contrast, mid-small private banks quality tilt advanced 0.3%, hospitals as well as healthcare increased by 0.25%, and auto added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 1,930 advanced and 216 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ। सुषमा, एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है।
2: थैंक यू
1: सुषमा, आज अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो दोनों सूचकांक दबाव में रहते हुए ज्यादातर समय तक एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन कारोबार के आखिरी सत्र में निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी से पहले बिकवाली के दबाव के कारण बाजार में गिरावट देखी गई। और साथ में अगर हम पिछले दो हफ्ते की बाजार की चाल देखें और अब तक के दो दिन के इस हफ्ते का कारोबार देखें तो गिरावट का जो रुख है वो क्या कहानी कहता है, हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए बात यह है कि ये जो हमारा हमारे स्टॉक मार्केट्स जो हैं, मैं हमेशा कहती हूँ वो सेंटिमेंट ड्रिवन है, और इस वक्त सेंटिमेंट जो है वो इसके ऊपर जो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में यूएस और ईरान के बीच में, उसके बारे में सेंटिमेंट जो सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में है उनकी सोच उनके ऊपर है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो तेल के दाम है वो ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, वो वॉलिटिलिटी बहुत हो रही है आज के दौर में। एकदम से वो तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, दे हैव रीच्ड $91। तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, हमारी 85% ऑफ आवर फ्यूल रिक्वायरमेंट हम बाहर से ही मंगवाते हैं, तो इससे जो इन्वेस्टर्स की थोड़ा सा वो रुख बदल गया है ये पिछले दो तीन हफ्तों से। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, और तेल के अलावा भी बाकी सारी जो काफी सारी प्रोडक्ट जो वहां से आती है वेस्ट एशिया से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का तो ब्लॉकेड है, बाकी रेड सी में से के बीच में से मर्चेंट शिपिंग के भी वहां पर तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि यमन में से वहां अटैक हो रहे हैं। तो एक तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा ये है कि सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स को छोड़ के अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, वो वहां के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं और उनके जो रिटर्न्स हैं वहां पर ज्यादा बेहतर हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं, मतलब और भी मैं चीजें गिना सकती हूँ लेकिन बहुत टाइम लगेगा आगे।
1: मुनाफा वसूली का कैसा रुख देखने को मिला है इन दिनों के दौरान, खासतौर पे अगर डीआईएस की हम बात करते हैं तो?
2: खासकर हाँ जी,
1: डीआईएस की, घरेलू निवेशकों की बात करते हैं तो?
2: हाँ बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुकिंग की भी बात है, लेकिन हमारे जो घरेलू निवेशक है वो ज्यादातर इस वक्त वो अभी भी इनकी जो फेथ है हमारी मार्केट में वो जारी है, और इसी वजह से हालांकि फॉर एफआईआईज हमें छोड़ के जा रही है बड़े दबादब इस वक्त जा रही है, लेकिन बीच में अभी हाल ही में तो वापस भी आ रही थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, क्योंकि यहाँ की जो असेसमेंट ये था कि वैल्यूएशन अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं
1: जी।
2: तो अब हम वापस आ सकते हैं, लेकिन अब फिर जो रुख बदल गया है और वो चले गए हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त तो खैर प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रही है, लेकिन वैसे वो इतना ज्यादा वो बेरिश ट्रेंड्स नहीं है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के।
0: सुषमा, आईटी वाज अमंग द बिगेस्ट लैगार्ड्स टुडे, सो इज द वीकनेस लिंक्ड टू वैल्यूएशंस, यूएस डिमांड कंसर्न्स, और द करेंसी फैक्टर्स, और प्रॉफिट बुकिंग?
2: आई वुड से दीज आर लॉन्ग टर्म इश्यूज एज फार एज आईटी सर्विसेज आर कंसर्न, the perception that

0: that IT services are not going to be able to match the kind of AI technology that has sprung up in the United States. So I think that it is linked to that. And the fact that, of course, that in America, things, the stock markets are rebounding just now at a time when ours are going down. We have to remember that for America, when for the US, when oil prices go up, while it might be uncomfortable for consumers, the fact is that they, as an exporting nation, producing an exporting nation, for them it comes as a benefit.
1: So,
0: So the situation is very different. And coming back to IT services, the perception has been for quite some time that there is going to be a problem with the IT services industry because of the introduction of AI. And I think that's not really so. You're going to have so many more applications of AI, and it's going to be these IT services companies which are going to be doing that kind of work on applications.
1: okay, auto and pharma, Sushma showed relative resilience today. Is this defensive positioning or evidence of sector-specific strength?
0: I would say it's sector-specific strength because, pharma is definitely one of our strongest exports, one of our strongest sectors. And auto, of course, you must have read the reports, the demand has risen exponentially. And even in rural areas, that was the area that people were worried about, two-wheelers, there also the demand has gone up. So auto is an area that is certainly doing well. Even in exports, auto is doing well. So certainly, I think that is a strength of both these areas.
1: Okay, and also the Indian equities, as you very rightly pointed out, they came in under pressure today, with the Sensex falling 493 points and the Nifty, extending its losing streak. Now, is this a temporary bout of risk aversion, or is the market signaling a more meaningful change in trend?
0: Well, that's very difficult to say right now because we would have to see the market for a while. I know, of course, the market has been, going down in the last a few weeks. There has been a bearish trend. But I think more of what is happening in the market is a reaction to external developments and the perceptions that, what is happening between US and Iran could have an adverse effect on our growth.
2: सुषमा, थोड़ा सा अगर पीछे जाकर के हम आपसे बात करें तो जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, 707 अरब अमेरिकी डॉलर तक के हम पहुंच चुके हैं. लेकिन यहां पर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट की जो बात है, विदेशी मुद्रा का एक इनफ्लो उसमें आया है, तो इससे आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पे ऐसे समय में जब लिक्विडिटी बढ़ाने की बात है और स्टेबिलिटी होनी चाहिए रुपए में और देश की एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने की लगातार बात हम कर रहे हैं.
0: देखिए, ये जो स्कीम बनाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उससे बहुत फायदा हुआ है. मतलब इनफ्लोस की बात आपने की, ये एनआरपी की वजह से हुई है. और लेकिन उससे इतना सपोर्ट रूपी को नहीं मिला जितना सोचा जा रहा था.
2: जी
0: और रूपी डिप्रिसिएशन, खैर हम समझ सकते हैं कि वो कम, मतलब हॉल्ट हो गई है, बंद हो गई है डिप्रिसिएशन, लेकिन वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ है
2: जी
0: रूपी. तो ये थोड़ी सी शायद आरबीआई माइट बी लिटिल कंसर्न्ड अबाउट दैट. पर मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे, एक तो हमारे रिजर्व बहुत बड़ी बहुत अच्छे हैं इस वक्त, और दूसरी एक बहुत अच्छी बात है, हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो बहुत ही छोटा है इस वक्त. मेरे ख्याल ये जो जून के क्वार्टर में, अप्रैल में, जून क्वार्टर में, जिसमें ये अभी ये वॉर हुआ था और जिसमें इतना डर लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा बहुत महंगा तेल इम्पोर्ट कर रहे हैं, इससे करंट
2: जी
0: अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल 0.6% ही हुआ है हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट इस वक्त.
2: सुषमा,
0: तो
2: इसमें
0: इसमें
2: एक चीज और
0: पॉजिटिव
2: पूछना
0: बहुत
2: चाहूंगा मैं
0: है.
2: आपसे. जो इस तरह के कदम उठाए गए हैं आरबीआई की तरफ से, सरकार जो भी प्रयास कर रही है उन्हें आप मतलब किस तरह से देखती हैं? क्या ये इस तरह के कदम आगे भी उठाए जाने की संभावना रहती है, जहां पर स्टेबिलिटी देने की बात हम करते हैं तो?
0: हाँ, देखिए, आरबीआई ये वक्त वक्त पर ये कदम उठा देती है. अभी ये FCNRB का जो ये इतने सुस्त

0: स्कीम्स आए हैं वो इसी वजह से थे, टू नॉट नॉट जस्ट टू स्ट्रेंथन द रूपी, इनका ये था टू गिव मोर कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स, ये भी था कि इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए और ये कि हमारे यहाँ रुपीज मतलब डॉलर्स डालने से उनको आराम से उनको निकाल भी सकते हैं, तो यहाँ डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसमें साइड इफेक्ट ये है कि मतलब रूपी की डिप्रिसिएशन कम हो गई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इतना वो अप्रिशिएट नहीं हुआ रूपी, लेकिन जो गिरने की जो तकलीफ हो रही थी वो तो कम हो गई है। हाँ, अगर आगे आगे के दिनों में और कुछ मतलब उस कोई कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो आरबीआई ये वक्त वक्त पे ये
1: जी
0: स्कीम्स निकालती रहती है।
1: जी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण की सुविधा का विस्तार किया है और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कमजोर वर्गों को 3,49,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। सुषमा, इस तरह की जो खबर है, अगर आर्थिक मोर्चे के नजरिए से देखें तो क्या समझ सकते हैं इससे हम?
0: देखिए, मुझे असल में ये खबर अच्छी तरह से सुनाई नहीं। जी, थोड़ा सा आप संक्षेप में बता देंगे क्या बोले आप?
1: जी, मैंने ये बोला कि वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तरफ से जारी किए गए हैं।
0: अच्छा, हाँ, तो ये जो क्रेडिट फ्लोज जो है ये एकदम से बहुत बढ़ गए, और रीजनल रूरल बैंक से ये क्रेडिट फ्लोज बढ़े हुए हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव मेरे ख्याल डेवलपमेंट है। और यही एक इनफैक्ट काफी कमेंटेटर्स ने इसके ऊपर बात की है कि जो जो इस वक्त काफी काफी इस वक्त ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं और शायद हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप ये क्रेडिट फ्लोस की तरफ देखें तो ये दिखाया जा रहा है
1: जी
0: कि एक्चुअली हमारा जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल नहीं, इसका जो क्रेडिट पिकअप जो है वो काफी बढ़ गया है,
1: जी
0: और आगे
1: बिल्कुल।
0: वाले दिनों में लगता है कि कंजम्पशन और बढ़ जाएगा।
2: मूविंग ऑन, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द 6 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट PIL कंप्राइजिंग 405 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइटम्स विद एन एस्टिमेटेड बिजनेस पोटेंशियल ऑफ 3,070 करोड़ रुपीज। These include 16 items of the Indian Coast Guard and 389 items of defense public sector undertakings. The list contains line replaceable units, subsystems, sub-assemblies, spares, components, and raw materials. The ministry said that this 6th PIL marks another step in the government's efforts to promote self-reliance in defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. It is expected to further expand opportunities for the Indian industry, strengthen the domestic defense manufacturing ecosystem, promote investment and innovation, and contribute to reducing dependence on imports. The ministry informed that the detailed list of items is also available on the Srijan portal, srijandefense.gov.in. Sushma, this is a step towards self-reliance in defense manufacturing and also towards making in India, giving it a big boost.
0: Yes, in fact, defense is an area of great progress in recent years. Not only are we manufacturing within the country, we are exporting also. So India has become a fairly large arms exporter. And of course, there have also, since the private sector is now being involved more and more, not just in defense, but in space. So you have so many now private, public-private collaborations, as well as private collaborations with foreign companies, you know, which are now coming forward and setting up. So it's one of the big, I would say, success areas.

0: इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
1: आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी को अब पारंपरिक व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर साझा निवेश, सहयोगी नवाचार तथा सहभागी विकास और निर्माण की दिशा में आगे जाना चाहिए। वे आज मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अमरीकी कंपनियों को अपने राज्य में आमंत्रित करते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र को भारतीय और वैश्विक विकास के लिए एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करें। श्री फडणवीस ने राज्य की प्रतिभा, बुनियादी ढांचे, बाजारों, प्रौद्योगिकी और वैश्विक संपर्क बढ़ाने पर बल दिया। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाने के लक्ष्य का आपसी साझेदारी है, जो कि बहुत ही बेमिसाल क्षमताओं को दर्शाता है। सुषमा, आज ये जो बैठक हुई मुंबई में, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को अपने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: देखिए, ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हालांकि इस वक्त जो है हम सब लोग ये इंडो यूएस ट्रेड डील जो है इसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये जो है ये कोलैबोरेशन इन इंडस्ट्री ये भी उतना ही महत्व मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करे, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी अमेरिकी कंपनीज हैं, यहाँ बेस्ड हैं, यहाँ उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये बढ़ना चाहिए। और इस वक्त जो अमेरिकी कंपनीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा निवेश चाइना में किया है, तो उतना तो वहां से अब वहां की जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो धीरे धीरे करके वो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं चाहते हैं कि चीन में बेस्ड जो अमेरिकी कंपनीज यहाँ आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा मतलब थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वार्तालाप से काफी कुछ पैदा होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज फिर हमें बताएंगी कि क्या तकलीफें हैं वहां यहाँ आने के लिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं वो बता देंगे, और उससे ये जो प्रोसेसेस हैं स्ट्रीमलाइन हो सकती है।
2: So, Sushma, both the ambassador and the Indian delegate also said that taking India-US bilateral trade to $500 billion by 2030 reflects the unmatched potential of the partnership between the two countries. Now, does this reflect anything that will take place soon between the India-US trade deal? Is it moving towards that?
0: We really can't say, because the Indo-US trade deal seems to be moving at a snail's pace. You know, I mean, we have been waiting for it since last year. And we keep hearing from both sides that, you know, it's just on the verge of being concluded. And yet it doesn't come. And in the meantime, we have all these stories coming in about tariff imposition under Section 301, under the new Congress legislation about against countries which are importing, buying oil from Russia. So these are things on which more clarity needs to be given by the American government. And it's only when these tariff barriers as well as non-tariff barriers are eased that we can think of raising trade to, you know, this kind of exponential level.
2: Moving on, the fifth edition of SEMICON India 2026 will be held from the 17th of next month in New Delhi. The three-day conference will witness the participation of more than 500 exhibitors and around 240 exhibiting companies from more than 40 countries. Prime Minister Narendra Modi will chair a roundtable conference with global CEOs from the United States, Japan, South Korea, Singapore, Germany, the Netherlands and Malaysia. The theme of the fifth edition of the SEMICON India conference is Silicon to Systems, Building the Ecosystems.
1: एशियाई शेयर बाजारों में आज जापान का निक्केई 225 2.5% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5% नीचे आ गया। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो जर्मनी का डेक्स 0.3% जबकि लंदन का फुटसी 100 सूचकांक 0.1% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे।
2: Wall Street ended in the negative territory yesterday as elevated crude oil prices and surge in the US Treasury yields weighed on investor sentiment. The S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average declined 0.5%, while the Nasdaq Composite Index dipped 0.3%. Sushma, the key is the crude oil prices and the lifting of the Strait of Hormuz problem that is happening over there. As long as that is not solved, I don't think markets will have a sigh of relief.
0: Yes, absolutely. I think this is the problem, and it's unfortunately we keep getting reports that both sides once again are keen for a settlement, that they're again on the verge of a settlement. And yet something seems to happen and hostilities break out once again.
2: So what do you expect from the Jackson Hole meet next? What do you expect from the Jackson Hole meet next week?
0: Well, that obviously is going to be, a forerunner to what is going to be a little more long term on interest rates. Jackson Hole is always a very interesting conference. And I guess it's going to look at what is the state of the American and the global economy right now. The American economy, the US economy, despite all the problems of the Iran war, as I pointed out, the stock markets there are booming. Number one, because of the AI bubble. And secondly, as I said, when oil prices go up, while it is very uncomfortable for consumers there, the fact is that America is a producing country, an exporting country, and therefore for them oil prices simply brings in more revenue. So it's a very different ball game over there. Compared to India.
2: Okay. Global crude oil prices rose for the third consecutive session today amid uncertainty over a potential peace deal between the US and Iran. Brent crude was trading 0.5% up at $91.36 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.07 per barrel when reports last came in. Very quickly, Sushma, at what oil price does the situation become materially negative for India's inflation and external balances?
0: Well, it's difficult to say, but definitely $91 is not a comfortable level for India. I mean, we would prefer it to be in the range of, say, $70 or even up to $80. Above that is definitely not comfortable for a country which is importing such huge quantities of crude oil.
1: आगे बढ़ते हैं। सोना मामूली गिरावट के साथ आज 1,54,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1% से अधिक की तेजी के साथ 2,33,164 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। सुषमा, जिस तरह से गोल्ड की गिरावट और बढ़त का जो एक सिलसिला है, बहुत ही सीमित दायरे में हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, वही हाल चांदी का भी है, क्या लगता है इस मार्केट से आपको?
0: देखिए, गोल्ड का जो इस वक्त वो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, और इस वक्त की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वगैरह हैं, पिछले 2 सालों से गोल्ड की कीमत एकदम से बढ़ गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मेरे ख्याल इस वक्त थोड़ा सा प्लेटो पे आ गई है। साथ में चांदी का भी दाम बढ़ गया। चांदी को हम सेफ हेवन एसेट पहले नहीं कहते थे, पर मेरे ख्याल में अब ये भी बन गया है, क्योंकि इसकी भी खरीदारी ये सेफ हेवन एसेट माना जा रहा है इस वक्त। तो क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मेरे ख्याल अब ये थोड़े प्लेटो हो रहे हैं, लेकिन बहुत नीचे नहीं आएंगे।
2: सुषमा, व्हाट इज द वन की मैसेज दैट यू विल गिव टू द इन्वेस्टर्स? शुड दे रिमेन कॉशियस, यूज द करेक्शन टू अक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक्स, और वेट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी ऑन क्रूड, जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स?
0: आई थिंक नंबर वन, ऑफ कोर्स दे हैव टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑलवेज, एंड द second is that यू हैव टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द कंपनी.
2: दे हैव टू बी कॉशियस. ओके
1: जी सुषमा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.

0: Thank you, Sushma, for being with us. And before we close the headlines once again, benchmark domestic indices decline, Sensex drops nearly 500 points, Nifty settles below 24,200. Regional rural banks register over 10% rise in gross loan outstanding last year, and global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, good
1: namaskar.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। इसका आयोजन 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया दो दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आंध्र प्रदेश में गांव से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया है। विशाखापट्टनम में आज भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
4: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
3: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनकारी के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व CBI निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जन मुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5,00,000 रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: sites. And that is the end of this news bulletin.
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान साझेदारी और व्यापार प्रौद्योगिकी निवेश के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव।
2: जापान का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर है। ये प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में 18 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाले यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट सहित कई अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। इस इन्वेस्टमेंट मीट में 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों, सीईओ, बिजनेस प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कि हम भारत और जापान के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों और जापानी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा पर विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं?
3: भारत और जापान के संबंध बहुत प्राचीन हैं और बहुत गहरे हैं। जापान में भी बहुत सारे लोग बुद्धिज्म की प्रथा को मानते हैं और उसके लिए वो भारत तीर्थयात्रा के लिए भी आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि किस तरह जापान ने हमेशा भारत की आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल उन्नति के लिए किस तरह का योगदान दिया है। अगर हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देखें तो हम सबको याद है कि 80 के दशक में किस तरह निवेश भारत में आया था और उसने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिल्कुल बदल दिया। दिल्ली की मेट्रो, उसमें जापान का योगदान रहा, आर्थिक भी, उन्होंने ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस भी दिया और टेक्नोलॉजी भी दी। अब आप देख रहे हैं कि भारत में मेट्रो की व्यवस्था है और बहुत तेजी से उसमें प्रगति हो रही है। इसी तरह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना रेलवेज का, उसमें भी जापान की ODA उनका है, ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, उससे बहुत मदद मिली और इस समय पूरा देश आशा कर रहा है कि बहुत ही जल्दी जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है जो बहुत ही तेज रफ्तार से चलेगी, उसका काम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। उसमें भी जापान की आर्थिक सहायता भी है और टेक्नोलॉजी भी जापान की है। तो इस तरह एक ही सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें जापान का बहुत योगदान भारत के लिए रहा है और इसका एक जो भाव है वो मित्रता का है। हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे उनमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम बहुत ऊपर आता है और सब हमें याद है कि किस समय द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ भारत की तरफ आ रहे थे म्यांमार से, तो उसमें जापान का बहुत सहयोग था। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सुखद यादें हैं और उसमें भारत और जापान की आगे की यात्रा के लिए एक ये बहुत ही अच्छी नींव है और उसके ऊपर एक बहुत अच्छी इमारत भारत और जापान की मित्रता की, सहयोग की और एक दूसरे की मदद करने की इस समय बनाई जा रही है।
2: अब जापान का जो ये प्रतिनिधि मंडल है, ये एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो आ रहा है भारत की यात्रा पर, ये उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग को अटेंड करेगा जिसमें इस बैठक में राज्य सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, उसका मकसद है कि जापानी कंपनियों की व्यवसायिक दिलचस्पी और को ठोस निवेश या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या संयुक्त परियोजनाओं को और बड़े पैमाने में रोजगार पैदा करने में बदलना। आप कैसे देखते हैं इस प्रतिनिधि मंडल की यात्रा को?
3: इस समय भारत जापान का जो सहयोग है, जो मित्रता है, उसका फोकस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट पर है। भारत और जापान के बीच में इस शताब्दी में शुरू से ही वार्षिक समिट होती है प्रधानमंत्रियों के बीच में, 2026 में दिल्ली में हुई थी, जिसमें जापान की प्रधानमंत्री साने तकाईशी भारत आई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर। और उसमें और उससे पहले जो मीटिंग हुई थी पिछले वर्ष, ये निश्चय हुआ था कि 10 साल में जापानीज कंपनी 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश करेंगी, जो करीब 60,000 करोड़ करीब संपत्ति है। तो इसमें कुछ काम तो हो चुका है और जब जुलाई की मीटिंग जो हुई थी उसमें 150 जापानीज कंपनियां आई थी और 120 MOU उस समय साइन हुए थे जिनकी टोटल निवेश होना था $12.5 बिलियन, $12.5 बिलियन। अब इस समय जो लखनऊ में एक चर्चा होगी, कॉन्फ्रेंस होगी और बातचीत होगी, उसमें भी 150-200 जापानीज कंपनी आ रही है और मेरा मानना है कि बहुत सारे MOUs वहां पे हस्ताक्षर उन पर होंगे और यूपी

0: तेजी से इस समय हो रही है। भारत तो विकसित भारत की तरफ बढ़ ही रहा है, और उत्तर प्रदेश में जैसे जेवर एयरपोर्ट नया आ गया है, इंडिया पूरा एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो तरह तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयत्न कर रही है कि विदेशी निवेशक जो भारत आए उनके लिए कोई अड़चन ना आए, और बहुत जल्दी जो भी वो निर्णय लें, जो भी वो निवेश के लिए उनका जो प्रोजेक्ट है, जो सोच है, उसको एक रियलिटी का रूप दिया जाए।
1: एम्बेसडर टाइल, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 25-26 में जापान के साथ भारत का कुल व्यापार 27.48 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें 6.04 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 21.44 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात शामिल था। 2024-25 में जापान के कुल व्यापार में 1.4% हिस्सेदारी के साथ भारत 18वें स्थान पर रहा, जबकि भारत के कुल व्यापार में 2.1% हिस्सेदारी के साथ जापान 17वें स्थान पर रहा। भारत में जापान का FDI मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल उपकरण, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल, फाइनेंशियल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आया है। भारत में लगभग 1500 जापानी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। आप इस व्यापारिक साझेदारी को और मजबूती करने की संभावनाओं को कैसे देखते हैं, खासकर ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्र जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है?
0: इस समय व्यापार भी जितना होना चाहिए, जितना हो सकता है उससे कम है। निवेश की भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अभी जुलाई में जब प्रधानमंत्री साने ताकायशी भारत में थी तो कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक जॉइंट डिक्लेरेशन इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर दोनों नेताओं ने अपनाया, एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी रेजिलियंस पर। तो नया निवेश जो होगा वो लिक्विड नेचुरल गैस स्टॉक पाइलिंग की एक पार्टनरशिप की बात हो रही है, एक जापानीज निवेश ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ओडिशा में लगने का विचार है, क्योंकि भारत का जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है उसके लिए ग्रीन अमोनिया की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, उसमें काफी निवेश भारत में हो सकता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बहुत अधिक बात चल रही है कि जापान के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, पर उनको रक्षा के जो इक्विपमेंट उसके निर्यात पर पहले कुछ उसमें रोक थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसको उन्होंने हटा दिया है। फिर क्रिटिकल मिनरल्स के एक नया आयाम खुला है जिसमें कि भारत और जापान बहुत सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय दोनों देश चीन पर बहुत अधिक निर्भर हैं और दोनों देश ये चाहते हैं कि चीन पर ये जो निर्भरता है क्रिटिकल मिनरल्स की, इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स की, वो कम हो। उसके लिए जापान भारत में जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन की, भाई क्रिटिकल मिनरल भारत में कहाँ कहाँ है, और उसमें उनको रिफाइन करने में उसमें भी मदद करेगा। और मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, इस पर भी काफी ये देखा गया है कि जो एक्टिव PIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो एक्चुअल दवाई होती है, उस पर भी दोनों देश कुछ चाइना पे ज्यादा निर्भर है, तो उसको भी देखा है कि दोनों देशों ने निर्णय किया है कि उसमें एक दूसरे की मदद करके प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। मेडिकल डिवाइसेस आजकल देखिए, अस्पताल में जाएं तो नया नया इक्विपमेंट रोज नजर आता है, रोबोटिक सर्जरी है, तरह तरह के एक्सरे वगैरह है, NMR है, एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अब दोनों देश देख रहे हैं कि नए रास्ते ढूंढे जाएं, कि दुनिया जिस तरह प्रगति कर रही है, एक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जुलाई में कहा था कि जो मीटिंग उन्होंने की है प्रधानमंत्री साने तकाशी के साथ, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा है। एजेंडा ये है कि कैसे भारत भी ट्रांसफॉर्म, मतलब एक लेवल से दूसरी लेवल, ऊंची लेवल तक पहुंचे, और उसकी जो जड़ में होगा वो एक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होगा, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया इस समय एक कगार पर खड़ी हुई है, जो एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी वजह से सब आ रहा है, और भारत और जापान मिलकर एक और एक 11 होते हैं, और भारत की स्किल्स, स्किलिंग, हमारे IT के इंजीनियर्स, उनका तो लोहा दुनिया मानती है, और जापान की टेक्नोलॉजी मिलकर बहुत ही अच्छा काम अपने लिए, अपने दोनों देशों के लिए और विश्व के लिए कर सकते हैं।
1: जापान में 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, क्या आपको वहां भारतीय कंपनियों की मौजूदगी बढ़ाने की संभावना नजर आती है, और वो किन क्षेत्रों में हो सकती है?
0: इस समय भारत की कंपनियां अधिकतर सर्विस सेक्टर में है, या सॉफ्टवेयर या फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब में अधिक है, और मैं समझता हूं कि भारत की कंपनी

0: वहीं ज्यादा काम कर सकती हैं जहां कुछ ह्यूमन लेबर की आवश्यकता हो, स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता हो, और या वहां की इंडस्ट्री को कुछ सर्विसेज, मेंटेनेंस की सर्विसेज और इस तरह की आवश्यकता हो। पर हमारे जो निवेशक हैं और हमारे कंपनीज हैं, उनको नए नए रास्ते वहां ढूंढने चाहिए, जिससे कि भारत भी वहां पे जापान में निवेश कर सके और भारत की कंपनियां भी जापान के साथ, कंपनियों के साथ मिलकर जापान की इकोनॉमिक प्रगति में अपना योगदान कर सकें।
1: अभी जापान में लगभग 59,000 भारतीय रह रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले सालों में ये संख्या और बढ़ सकती है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? और दोनों देश जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं? चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या हेल्थ केयर का हो, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं?
0: जापान की जनसंख्या इस समय धीरे धीरे कम हो रही है। वहाँ बर्थ रेट रिप्लेसमेंट रेट से कम है, बहुत एजिंग जनसंख्या है, क्योंकि जो लॉन्जेविटी है वो बहुत ऊंची है। और इस सब के लिए जापान की सोसाइटी को जो यंग स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए, उसके बाद हेल्थ सेक्टर में, डे केयर में, एजेड केयर में भी उनको बहुत लोगों की आवश्यकता है। और एक तरफ से तो वो, जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, कुछ रोबोटाइजेशन की तरफ भी बहुत ज्यादा वहां पे जा रहे हैं, पर सर्विस सेक्टर में भी जो अवसर हैं वो भारतीय स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और प्रोफेशनल्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, उनके लिए बहुत नए अवसर वहां पर खुल सकते हैं। भारत से टूरिज्म जापान अब बहुत बढ़ना शुरू हुआ है, और जापान में क्योतो पुराना राजधानी है उनकी, वहाँ बहुत लोग जाते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे बुद्धिस्ट मंदिर हैं, एक नागासाकी के रास्ते में है, टोक्यो में बहुत स्थान है। जापान से भारत लोग बुद्धिस्ट सर्किट पर काफी आते हैं, और वाइल्ड लाइफ के लिए भी वो आते हैं, क्योंकि वहाँ टाइगर, लायन, इस तरह हाथी वगैरह जापान में नहीं है, तो टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जिस तरह से भारत में टूरिज्म को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है, नए नए होटल्स बन रहे हैं, और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया भारत में होती चली जा रही है, एयरपोर्ट, अब आप जाएं पूरे भारत में अच्छे अच्छे एयरपोर्ट हर जगह, छोटी छोटी जगहों पर भी खुल रहे हैं, क्योंकि जापानीज जब आते हैं तो कुछ वो बहुत चाहते हैं कि सब चीज बिल्कुल ठीक चले, स्मूथली चले, और अब भारत उस दिशा में बहुत प्रगति कर चुका है और प्रगति कर रहा है, तो टूरिज्म भी दोनों देशों का बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, मैं समझता हूँ।
1: सर, इस संदर्भ में आप दोनों देशों के बीच स्टूडेंट एक्सचेंज की संभावनाओं को कैसे देखते हैं?
0: देखिए, जापान में यूनिवर्सिटीज में जो भी पढ़ाई होती है वो जापानीज भाषा में होती है, तो वहां भारत के विद्यार्थी जाते हैं, स्कॉलरशिप्स पर जाते हैं, पर बहुत अभी संख्या उनकी कम है। पर उसका एक रास्ता ये ढूंढा गया है कि भारत के स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जापानीज भाषा पढ़ाने के अवसर बहुत बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट करीब 10 वर्ष पहले हुआ था, ये कहा गया था कि करीब 30,000 भारतीयों को जापानीज भाषा में जो अच्छी लेवल की जिस बोल सके उनको ट्रेन किया जाएगा। वो सब कार्यक्रम चल रहा है। जब ये एक रास्ता खोल देगा भारत के विद्यार्थियों को जापानीज यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भी और रिसर्च के लिए भी।
1: एम्बेसडर डायल, आपने बहुत विस्तार से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान साझेदारी और व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां वक्त हुआ है इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:26:04। आप हैं अपनी ही दोस्त, अपनी ही हम सफर रूपा धवन के साथ। दोस्तों, दिन के उजाले और रात के अंधेरे के बीच एक ऐसा लम्हा आता है जब वक्त जैसे ठहर सा जाता है, जब ढलते सूरज की हल्की सुर्खी मन में एक अजीब सी खामोशी, एक ठहराव और यादों का कारवां लेकर आती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, भटकी है उजालों में नजर शाम से पहले, भटकी है उजालों में नजर शाम से पहले, ये शाम ढले का सा असर है शाम से पहले। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सांझ ढले कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं अपने मनपसंद, अपने चहेते चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो क्या ख्याल है जनाब, सांझ ढले के इस खूबसूरत से सफर को शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

समय हुआ है 7:32 और 32 सेकेंड। आप हैं सांस ढले के सफर पर। बेहद ही रंगीन और बेहद ही लुभावना मौसम और इस मौसम के साथ बेहद खूबसूरत सी ये सांस ढले कार्यक्रम, और इसमें आप हैं मेरे साथ यानी अपनी ही दोस्त रूपा के साथ।

दोस्तों, कभी कभी शाम ढलने से पहले ही दिल में एक उदासी या किसी की यादों का साया गहराने लगता है। उजाला होते हुए भी निगाहें किसी अपने की राह तकती हैं और दिन ढलने से पहले ही शाम का मखमली एहसास रूह को छू जाता है। इसी खूबसूरत और रूहानी एहसास को शब्दों और सुरों में पिरोकर आइए सुनते हैं ये बेमिसाल गीत। फिल्म आंसू बन गए फूल से आशा जी की आवाज़ में और किशोर साहब की आवाज़ में।

तो जनाब, सूरज की ढलती किरणों और सुरमई शाम के इस एहसास के साथ आज के कार्यक्रम सांझ ढले की अनुमति यहीं दीजिए, लेकिन 8:10 पर आपके साथ फिर से रहूंगी मधुरिमा कार्यक्रम लेकर। फिलहाल थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसों सहित कई पहल की घोषणा की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की गणना का काम पूरा, 24 अगस्त से दावे आपत्तियां दर्ज होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में हाल में हुए छात्र प्रदर्शन की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर नई मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना बनाई। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र 27 अगस्त को सौंपा जाएगा। और नई दिल्ली में जारी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल शुरू करने की घोषणा की है। इनमें 200 नई पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा, 56 महिला स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं और डीटीसी राजघाट डिपो 1 में बेहतर क्षमता वाले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: ये नई पहल राजधानी दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने और शहर को साफ सुथरी और स्थायी गतिशीलता की तरफ ले जाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 200 नई इलेक्ट्रिक बसों के दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने से राजधानी में बसों की कुल संख्या लगभग 6800 हो जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि डीटीसी ऐतिहासिक दिल्ली करनाल रूट पर इलेक्ट्रिक और वातानुकूलित बसें शुरू करेगा। श्री सिंह ने आगे कहा कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए डीटीसी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू करेगी। इसके अलावा डीटीसी ने राजघाट डिपो 1 पर एक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी बनाया है। इस सुविधा में 240 किलोवाट क्षमता वाले 4 ईवी चार्जर लगे हैं जो भारी व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक कारों दोनों को चार्ज करने में सक्षम है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
4: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का काम पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के अंतर्गत करीब 1,45,00,000 गणना प्रपत्र वितरित किए गए और 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और CBI के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और CCTV रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी CJP के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा

0: हत्या के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने चिकित्सा शिक्षा की क्षमता बढ़ाने के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी सीटों के चरणबद्ध विस्तार की योजना बनाई है। इसके तहत नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, मौजूदा संस्थानों का विस्तार और उन्नत चिकित्सा पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा।
2: इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से संबद्ध निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 150 MBBS सीटें प्रस्तावित हैं। इससे स्नातक स्तर पर 300 नई सीटें जुड़ेंगी। इसके अलावा डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटें 125 से बढ़ाकर 200 और मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान में BDS सीटें 50 से बढ़ाकर 70 करने का प्रस्ताव है। स्नातकोत्तर स्तर पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सीटें 260 से बढ़ाकर 295 और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में 22 से बढ़ाकर 42 करने का प्रस्ताव है। वहीं डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज में 24 नई स्नातकोत्तर सीटें प्रस्तावित हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस विस्तार का उद्देश्य दिल्ली के लोगों के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों और विशेषज्ञों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। इसका आयोजन 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया।
3: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
4: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के अध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने आज 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सम्मेलन की व्यवस्थाओं, समन्वय और समग्र तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को सुचारू, समयबद्ध और सफल बनाने पर विशेष बल दिया गया। बैठक के दौरान सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में NDMC सचिव राहुल सिंह, संयुक्त सचिव शंभू हक्की सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में ऐसे कृषि उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए जो वैश्विक बाजार के मानकों पर खरे उतरें। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों को आधुनिक तकनीक और नए कृषि उपकरणों की जानकारी देना जरूरी है। श्री चौहान आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 97वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को इस दिशा में काम करने पर बल दिया।
5: विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान ऐसे 500 विषय आए जिसमें किसानों ने कहा कि हमें तो इस चीज में रिसर्च की जरूरत, और उसके बाद हमने 52 टीमें बनाई वैज्ञानिकों की, और हमने कहा कि रिसर्च उसमें करो जिसकी जरूरत देश को है, किसानों को है।
1: दिल्ली नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन और जन जागरूकता को लेकर आज एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य जन प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को नए नियमों की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराना तथा जन प्रतिनिधियों के माध्यम से नागरिकों तक इन नियमों की जानकारी पहुंचाना था। दिल्ली नगर निगम की उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने कहा कि निगम द्वारा कचरे के स्रोत पर ही उसे अलग करने को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ दिल्ली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली नगर निगम ने आज मटियाला और द्वारका क्षेत्र में साफ सफाई का निरीक्षण करते हुए दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान चलाया। निगम के अनुसार अभियान का उद्देश्य सफाई और नागरिक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेना, स्थानीय समस्याओं की पहचान करना और उनके समाधान के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। निगम ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत किए जा रहे समन्वित प्रयासों से बेहतर सफाई व्यवस्था, त्वरित नागरिक सेवाएं और स्वच्छ मोहल्ले सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र तालकटोरा स्टेडियम में 27 अगस्त को सौंपा जाएगा। सरकार ने बताया कि 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जल्द ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसके अंतर्गत जिन महिलाओं ने आवेदन में गलत या अधूरी जानकारी दर्ज की है उन्हें उसमें सुधार करने का दोबारा अवसर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के शुभारंभ के बाद सिर्फ 18 दिनों में करीब 8 लाख महिलाओं ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है जबकि 5 लाख से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि इस वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर देशभर में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 45% अधिक है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि कैट देश के विभिन्न शहरों में विशेष स्वदेशी मेले आयोजित करने जा रहा है जहां महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित राखियों और अन्य उत्पादों की बिक्री की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने नमो भारत कॉरिडोर के पास पतंग उड़ाने और चाइनीज मांझे के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। NCRTC ने लोगों से नमो भारत कॉरिडोर और इसकी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की है। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर 14 अगस्त से 10 दिवसीय पुस्तक मेला चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अनुसार मेले में 20,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं जहां लोग अपनी पसंद की किताबें देख चुन और खरीद सकते हैं। ये पुस्तक मेला 23 अगस्त तक सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन नियुक्तियों पर सभी नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नेताओं के व्यापक अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण और सशक्त नेतृत्व से इन राज्यों में भाजपा को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने भी सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने अमरीका की लॉर्डन लैम और एलन क्विन ली को हराया। वहीं लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स में ऑस्ट्रिया के कोलनिस फिलीमोन को हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 200 नई इलेक्ट्रिक बसों सहित कई पहल की घोषणा की। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की गणना का काम पूरा। 24 अगस्त से दावे आपत्तियां दर्ज होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में हाल में हुए छात्र प्रदर्शन की जाँच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर नई मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना बनाई और नई दिल्ली में जारी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। दो दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। इसका आयोजन 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आंध्र प्रदेश में गांव से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया है। विशाखापट्टनम में आज भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है। श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि भारत घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और बचाव तथा राहत कार्यों में लगे लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में हुए छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व सीबीआई निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5,00,000 रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने अमेरिका की लॉरेन लैम और एलन क्विनली को हराया। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

साथियों, हर ऋतु, हर मास या महीने का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है। हर ऋतु एक अलग ही रूप और आनंद के साथ उत्साह दिलों में भर देती है। वर्षा ऋतु का महीना ऐसा महीना है जिसमें धरती पर मेहरबानी होती है बादलों की। जी हाँ, सुनते हैं आज मधुरिमा कार्यक्रम में, जो कि सजा है रागों पर आधारित फिल्मी गीतों पर। और आज इस मधुरिमा की महफिल में हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन का महीना यानी वर्षा ऋतु, और इसी ऋतु पर आधारित कुछ रागों के गीतों को सजाया है हमने आपके लिए। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां आपके साथ है आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। सुनते हैं आज का पहला गीत मधुरिमा का, राग गौड़ मल्हार पर। और ये गीत हम शामिल कर रहे हैं फिल्म आशीर्वाद से, जिसमें संगीत दिया संगीतकार वसंत देसाई साहब ने और स्वर है लता मंगेशकर जी का। और इसी के साथ मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ, जब झिरझिर सावन की बूंदों की तरह आंखों से भी झिरझिर नदियाँ बहती है तो हमें सहसा ही किसी अपने की याद आ जाती है और हमारा दिल उन्हें पुकार उठता है। आइए सुनते हैं अब अगला गीत जिसे हम शामिल कर रहे हैं। राग मेघ मल्हार पर आधारित ये गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। राग मेघ मल्हार भी वर्षा ऋतु से जुड़ा हुआ गीत है। हिंदुस्तानी संगीत का अत्यंत प्राचीन और मधुर राग है मेघ मल्हार। वर्षा ऋतु से इसका विशेष रूप से जुड़ाव है। मान्यता है कि इस राग में वर्षा लाने की अद्भुत क्षमता होती है। सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए, जिसमें स्वर दिया आशा मन्ना डे और मोहम्मद रफी साहब और उनके साथ शमशाद बेगम ने। ये सभी दिग्गज कलाकारों का स्वर आप सुनेंगे इस बेहद खूबसूरत से गीत में।

जब प्यासी धरती पर बरसात की बूंदें गिरती हैं, तो उसकी जन्मों जन्मों की प्यास मानो बुझ जाती है। इसी के साथ साथ सभी के चेहरे भी खिल उठते हैं। हर वर्ग के लोग बारिश के समय में कोई नहाने को निकल पड़ता है। छोटे बच्चे छोटी छोटी कश्तियां लेकर बारिश के पानी में लेकर घुमाते हैं और ताली बजाकर शोर मचाते हैं। एक अलग ही उमंग और एक अलग ही एहसास सबके चेहरों पर दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं राग पीलू की। राग पीलू एक हल्का शास्त्रीय राग है जो काफी विविधतापूर्ण है। इसकी थाट काफी है। ये एक ऐसा राग है जिसने फिल्म जगत को अनगिनत गीत दिए। राग पीलू चंचल प्रकृति राग होने के साथ साथ करुणा व भक्ति रस प्रधान राग भी है। आइए सुनते हैं इसी राग पर आधारित ये गीत, जिसे हम शामिल कर रहे हैं सुजाता फिल्म से। SD बर्मन साहब का संगीत और आशा भोसले जी की आवाज में सजा ये खूबसूरत सा गीत आप सभी की नजरों

अब आपको एक ऐसा गीत सुनाने जा रहे हैं जो एक ऐसे राग पर है जो ऋतु के ऊपर तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका रस जो है सावन के रस से बहुत ज़्यादा मिलता है, मिलता ही नहीं या यूँ कहें कि सावन के ऊपर ही गीत है। और ये गीत हम शामिल कर रहे हैं राग शिवरंजनी से, जिसमें संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और अनजाना फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी साहब।

सावन का ये महीना आप सभी के होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान लेकर आए और आने वाले साल महीने साल आप इसी तरह से हंसते रहें मुस्कुराते रहें। मधुरिमा से अनुमति लेती है रूपा, आपसे फिर जल्दी से मुलाकात होगी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। नमस्कार।

0: के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। आज कार्यक्रम में बात की जाएगी BWF विश्व चैंपियनशिप की, जो कि नई दिल्ली में खेली जा रही है, जहां तिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहुंच गई है महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। साथ ही लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने भी अपने अपने सिंगल्स मुकाबले जीत कर दूसरे दौर में जगह बना ली है। कार्यक्रम में आज जिक्र होगा भारतीय महिला हॉकी टीम के उस कीर्तिमान का, जो इस टीम ने नीदरलैंड्स में रचा है और अपने पूल डी के मुकाबले में धराशाही किया है दक्षिण अफ्रीका की टीम को, वो भी 6-1 के बड़े अंतर से। बात होगी गोल में खेले जा रहे भारत श्रीलंका क्रिकेट टेस्ट मैच की, जहां भारतीय टीम ने मैच के चौथे दिन मैच पर अपना शिकंजा और कस लिया है और जीत से महज 6 कदम दूर खड़ी है ये भारतीय टीम। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की भी होगी कार्यक्रम में चर्चा, जहां 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 3 प्रशिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप से, जहां त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही मेंस सिंगल्स में पुरुषों के सिंगल्स में लक्ष्य सेन और महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा ने भी दूसरे दौर में जगह बना ली है। शानदार जीत आज इन खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में दर्ज की। हालांकि महिला डबल्स में सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम, जबकि मिक्स्ड डबल्स में आशीष सूर्या अमृता और रोहन कपूर और ऋत्विका गद्दे की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। और टूर्नामेंट पे अब अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता भानु, जो हमें बताएंगे इंडोर स्टेडियम से, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से, कि क्या स्थितियां हैं। और भानु, आज का जो मुकाबला था, जिस तरह का दिन रहा, पहले दिन भारत ने सभी मैच जीते थे, आज का दिन कुछ मिला जुला रहा, कुछ जीत और कुछ हार?
1: जी शक्ति, एकदम सही कहा आपने, भारतीय खिलाड़ियों के लिए आज एकदम मिला जुला दिन रहा, जहां कुछ मैचेस में भारत ने जीत दर्ज की, वहां कुछ मैचेस में हार का सामना भी करना पड़ा। आज की जो शुरुआत हुई थी हमारे मैच की, जो मिक्स डबल्स का था, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गए, वो कनेडियन प्लेयर जो जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई की जोड़ी थी, उनसे हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम उन्होंने भले ही जीता, लेकिन दूसरे दो गेम्स में उन्हें 19-21 और 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आज के जो दो सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट रहे, वो रहे लक्ष्य सेन का और त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का, जिन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो लक्ष्य सेन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, उन्हें पहले गेम में हार का सामना करना पड़ा, जहां वो 16-21 से हार गए, लेकिन बाकी के आगे के दो गेम्स उन्होंने एकदम वन साइडेड रखे, जहां वो 21-8 और 21-4 से जीत गए। वहीं त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने स्ट्रेट गेम्स में 21-15 और 21-12 से अपने मैचेस को जीता।
0: जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका भानु, जो आप जुड़े हुए थे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से और आप हमें बता रहे थे आज के मैच के सारे अपडेट। और इस प्रकार भारत के लिए आज का दिन गुजरा। और इस दौरान उन्नति हुड्डा ने अपने मैच के बारे में बात करते हुए कहा कि ये एक अच्छा मैच था और उन्हें घरेलू दर्शकों के बीच इस जीत से काफी आत्मविश्वास मिला है।
2: I feel like it was a good match and I'm happy that like I was able to control the trip pretty well, but in the second half during the finishing I made few errors and just maybe rushing a little bit, but then I controlled myself. I think every match will be a different match. Tomorrow I'll be playing against Michelle, so I'll prepare well for tomorrow's match, but yeah, I played today so got an idea of the court and everything, and I would like to tell people all the support I have got, like all the people who came for this match and supported me, thanks to them.
0: तो कह सकते हैं कि एक बेहतरीन समर्थन भारतीय खिलाड़ियों को मिलता हुआ दर्शकों की तरफ से। और आज के दिन की स्टार जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने भी मुकाबले को लेकर क्या कहा, ये सुनते हैं।
3: बहुत स्पेशल फील होता है सर, एंड आई जस्ट फील वेरी प्राउड एंड इमेंसली आई एम सो हैप्पी दैट मेरे पापा का एक ड्रीम था एक अर्जुन अवार्ड मिलने, तो ही जस्ट कॉल्ड मी एंड सेड लाइक या यू गॉट द अर्जुन अवार्ड, आई एम सो हैप्पी दैट इट्स कमिंग होम सून।
0: तो शानदार जोड़ी जो अब प्री क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ चुकी है भारतीय उम्मीदों को लेकर के। और कल भी काफी अहम मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पीवी सिंधु आयुष शेट्टी जैसे दिग्गज खिलाड़ी कोर्ट पर उतरेंगे। और अब बात की जाए नीदरलैंड्स की, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक शानदार कीर्तिमान अब से कुछ देर पहले रचा है। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने एक तरफा मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। सुनते हैं आज के मैच पर ये रिपोर्ट।

0: नीदरलैंड्स के अम्स्टेलवेन स्थित वैगनर हॉकी स्टेडियम में आज भारत की बेटियों ने अपने विश्व कप अभियान की पहली जीत दर्ज की। भारत ने पहले क्वार्टर से ही दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सुनीलिता तोपो ने 11वें मिनट में भारत को मैच में पहली सफलता दिलाई और शानदार गोल करते हुए स्कोर 1-0 कर दिया। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भी भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। मैच के 17वें मिनट में नवनीत कौर ने और 25वें मिनट में सुशीला चानू के गोल ने मैच में भारत की बढ़त 3-0 कर दी। तीसरे क्वार्टर में भारत ने अपना अटैक और तेज किया और एक के बाद एक 3 गोल दागे। दीपिका ने 38वें मिनट में, लाल रेमसियामी ने 44वें मिनट में और इसके ठीक 1 मिनट के भीतर ही साक्षी राणा ने गोल दागते हुए स्कोर 6-0 कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए मैच का एकमात्र गोल कायला डी वॉल ने 55वें मिनट में किया। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में चीन की मजबूत टीम को 2-2 के स्कोर से ड्रॉ पर रोका था। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। स्पोर्ट्स कैन के लिए मैं ज्योत्सना पांडे।
1: आप सुन रहे थे आज के मैच का ये अपडेट और इसी के साथ ही भारतीय महिला टीम ने अपने पूल में यानी पूल डी में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया है। कह सकते हैं कि पहले मैच में चीन के साथ एक बहुत शानदार ड्रॉ खेला था, कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन आज इस मैदान पे भारतीय टीम के खेल का कोई सानी नजर नहीं आया और एक ऐसे ही मुकाबले की उम्मीद होगी भारतीय खेल प्रेमियों को कल अपनी पुरुष टीम से, जो सामना करेगी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का। शाम 6:30 बजे नीदरलैंड्स के अम्स्टेलवेन में ये मुकाबला खेला जाना है, जिसकी प्रतीक्षा दर्शकों को काफ़ी समय से थी। कह सकते हैं कि इस हॉकी विश्व कप का एक बहुप्रतीक्षित मुकाबला इंतजार कर रहा है। और अब रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां भारत श्रीलंका के साथ गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत की दहलीज पर पहुंच गया है। मुकाबले के चौथे दिन जीत के लिए 372 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 84 रन ही स्कोर बोर्ड पर चढ़ा सकी है। अब यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की दरकार है। वहीं अगर मेजबान टीम श्रीलंका की बात की जाए तो उसको अभी भी 288 रन बनाने हैं। सुनते हैं इस मुकाबले के अब तक के खेल पर ये रिपोर्ट।
2: गोल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच के चौथे दिन का खेल भारत की दूसरी पारी के साथ शुरू हुआ, जहां भारतीय टीम ने ऋषभ पंत के 66 रन और पहली पारी में शतक लगाने वाले देवदत्त पडिक्कल के 44 रन की बदौलत 193 रन बनाए। श्रीलंका के लिए असीता फर्नांडो ने 4 विकेट और प्रभात जयसूर्या ने 3 विकेट लिए। पहली पारी के आधार पर मिली 178 रन की बढ़त के साथ भारत ने मेजबान श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही, टीम ने 47 रन के स्कोर तक अपने 4 विकेट गवा दिए। इसके बाद दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंकाई टीम ने 4 विकेट पर 84 रन बनाए। कप्तान धनंजय डी सिल्वा 31 और सोनल दिनुषा 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की तरफ से मानव सुधार ने 2 जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट हासिल किया। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए, वहीं श्रीलंका की टीम पहली पारी में 284 पर सिमट गई थी। भारत ने इसी आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल की थी। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तो भारत ने एक और कदम बढ़ा दिया है अपनी जीत की तरफ। कल उम्मीद होगी कि जितना जल्द से जल्द ये 6 के 6 विकेट चटकाए जाएं और श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की जाए दूसरे मैच से पहले। और अब बात की जाए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की, जिन्होंने आज भारत के लिए सर्वाधिक योगदान तो दिया ही 66 रन का, साथ ही एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ऋषभ पंत जो अपनी बल्लेबाजी में टेस्ट मैच में भी रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज अपने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं और वो ये रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। अब कार्यक्रम में बात की जाए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, जिनकी आज घोषणा कर दी गई। 2025 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये दिए जाने थे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और संस्थाओं को ये पुरस्कार देने का फैसला किया है।
3: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अलग अलग क्षेत्र के 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 3 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयनित किया है। अर्जुन पुरस्कार के लिए एथलेटिक्स से तेजस्विन शंकर, मोहम्मद अजमल वी और प्रियंका गोस्वामी के नाम है। शटलर त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद, मुक्केबाज नरेंद्र शत्र

0: खिलाड़ी विदित संतोष गुजराती और दिव्या जितेंद्र देशमुख, डेफ निशानेबाज धनुष श्रीकांत, हॉकी खिलाड़ी लाल रेम सियामी और राजकुमार पाल को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनके साथ साथ पुरस्कार की सूची में कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत और पूजा, पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल, पैरा एथलीट एकता भयान, रोइंग खिलाड़ी अरविंदर सिंह और निशानेबाज अखिल श्योरानंद का भी नाम है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन की भावना दिखाने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसायाहा अरुमेनायागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में योगदान दिया हो और खेल से संन्यास के बाद भी किसी न किसी रूप में जुड़कर उसे बढ़ावा देने में योगदान देते रहते हैं। यदि द्रोणाचार्य अवार्ड की बात की जाए तो इसके लिए एथलेटिक्स से परवीर सिंह, मुक्केबाजी से छोटे लाल यादव और निशानेबाजी से नेहा नंदकुमार चौहान को चुना गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफटाइम श्रेणी में मुक्केबाजी से धर्मेंद्र सिंह यादव और कुश्ती से वीरेंद्र कुमार का नाम तय किया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष खेलों में बतौर खिलाड़ी और प्रशिक्षक बेहतर प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैंप।
1: तो इन दोनों ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और भारतीय महिला टीम की हॉकी खिलाड़ी लालरेम सियामी ने अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: बहुत अच्छा लगा, डीपली ऑनर टू रिसीव दिस रिकॉग्निशन एंड इट्स मोटिवेट मी टू कीप वर्किंग हार्ड एंड टू डू माय बेस्ट फॉर माय कंट्री एंड माय टीम। जब मैंने मॉर्निंग भी जब सुना था जून अवार्ड के लिए तो मुझे बहुत ब्लेस फील हुआ था कि जहां मैं बिलोंग करती हूँ मिजोरम से, वहीं पे हॉकी इतना पॉपुलर नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ तक पहुंची, मैं अपना कंट्री को मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ।
1: बिल्कुल, एक बहुत खुशी का क्षण है और इसी की झलक आज उनके खेल में देखने को मिली जब ये खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरी और 44वें मिनट में एक शानदार गोल दागा जिसने भारत के स्कोर को 5-0 कर दिया था और भारत की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी थी। और अब बात की जाए एक और युवा उभरती हुई खिलाड़ी की। स्क्वाश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह को 2026 वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के बाद अनाहत सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उनका पूरा ध्यान इस लय को बरकरार रखकर आगामी एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने पर है।
3: I need to focus on the Asian Games and I have a few tournaments before that as well. So I'm trying to, you know, forget about the last event, of course, carry it on with me and all everything that I've learned from it. But, you know, focus on the other events coming up and focus on those and, you know, get on with this event.
1: तो जितनी तेजी इस खिलाड़ी के खेल में दिखती है उतनी ही तेजी उनकी बातों में नजर आती है, उनके विजन में नजर आती है। अनाहत ने कहा कि एशियाई खेलों में अब 1 महीने का समय बचा है और ऐसे में वे अपने मेडल का रंग बदलने के लिए कड़ी ट्रेनिंग कर रही हैं।
3: Honestly, I can't really say right now. It's just it depends on how the event goes. But I mean, I'm, of course, I really, really want to change the color of the medal, and I'll, you know, train hard for the, you know, next 1 month that I have left until the Asian Games, and do everything that I can to, you know, hopefully change the color of the medal and do better than I did last time.
1: तो नजर है इस खिलाड़ी की अपने प्रदर्शन को और सुधारने के लिए और देश को एक और बेहतरीन पदक दिलाने के लिए। अब बात करते हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरेंट कप की, जिसके सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो चुकी है। एससी दिल्ली, ईस्ट बंगाल एफसी, मोहन बगान सुपर जायंट्स और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ये 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी हैं और अब खिताब के लिए अपना एक एक कदम आगे बढ़ाएंगी कल से शुरू होने वाले सेमीफाइनल मुकाबलों में। कल पहला सेमीफाइनल मुकाबला कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम यानी विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में खेला जाएगा, जिसमें एससी दिल्ली का मुकाबला ईस्ट बंगाल एफसी से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को मोहन बगान का सामना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से होगा और इन दोनों मैचों के विजेता 23 अगस्त को यह तय करेंगे कि 135वें ड्यूरेंट कप का खिताब किस टीम को मिलने जा रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें हमारे ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए

0: अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमरीका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
1: जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है, और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमरीका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन

0: के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
1: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज़ के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना, नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज़ जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। ब्रिक्स नेशंस रीअफर्म

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती

0: वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
0: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदाओं से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना है। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले एक वर्ष के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमान की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनाव में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणियों का जिक्र पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश में ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की आवश्यकता है।
2: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपति की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व CBI निदेशक शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की आवश्यकता है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। BRICS nations today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the UN Framework Convention on Climate Change and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges,

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। और गोल में पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित,

0: और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए लचीलापन तथा इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा के प्रति लचीलापन, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
3: जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन यानी ISMR का चौथा दौर बृहस्पतिवार को सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय पक्ष से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद इसमें भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अपनी इस यात्रा के दौरान ये मंत्री अपने समकक्षों से बातचीत करेंगे और सिंगापुर नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का तंत्र नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता पर विचार विमर्श से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रोड मैप तैयार हुआ। इसका अनावरण पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग की भारत यात्रा के दौरान किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के चौथे दौर से दोनों पक्ष चल रही विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा कर सकेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं हिमानी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। न्यायालय ने कहा कि इमरान खान के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया जा रहा है। ईरान ने दोहराया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य समुद्री यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
5: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए हॉर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी।
0: गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। मैच में भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। भारत को जीत के लिए अब 6 विकेट की दरकार है जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त मिली थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। और गोल में पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, this is Akashwani. I am VC Pramod with the world news. The headlines. BRICS nation reaffirm commitment to environmental protection and sustainable development. New Delhi stresses environmental actions must address needs of developing countries. India says credibility of country's election machinery well established globally as US President Donald Trump praises poll system. Pakistan's top court orders transfer of jailed former Prime Minister Imran Khan to hospital for medical examination. Iran reiterates Strait of Hormuz to remain closed till all its conditions agreed with US are fully met. And in men's cricket, India tightened grip on Gaul test against Sri Lanka. Chasing a 372-run target, hosts reel at 84 for 4 at stumps on day 4. BRICS nation today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nation also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainability.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, ये शाम थोड़ी सी ठहरी हुई है और शायद इसी ठहराव में किसी की याद भी आपके पास बैठी है। कहते हैं प्यार बड़ी बड़ी बातों में नहीं बल्कि उस छोटी सी मुस्कान में छुपा होता है जो किसी का नाम सुनते ही चेहरे पर आ जाती है। आज की ये शाम उन्हीं नामों के लिए है जिन्हें हम दुनिया से तो छुपा लेते हैं लेकिन अपने दिल से नहीं छुपा पाते। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही

दोस्तों, कुछ रिश्ते तारीखों से नहीं, छोटी छोटी यादों से याद रहते हैं। एक खुशबू, एक रास्ता, एक पुराना सा गीत। कभी कभी वही गीत अचानक बजता है और लगता है कि जैसे सालों पुरानी कोई शाम आपकी जिंदगी में वापस आ गई हो। प्यार शायद यही है, बीता हुआ वक्त भी दिल में वर्तमान जैसा महसूस होता है। चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसमें किसी पुरानी याद की एक हल्की सी खुशबू है और उस खुशबू से आप तरोताजा हो जाते हैं।

हर प्रेम कहानी का अंत मिलना हो यह जरूरी तो नहीं। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी जिंदगी साथ चलती हैं। किसी को चाहना और फिर उसी की खुशी के लिए चुप हो जाना भी तो प्रेम का ही एक रूप है ना। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन वो हमारी यादों से कभी नहीं जाते।

0: दोस्तों हाजिर होता हूं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, पहली मुलाकात की सबसे प्यारी बात यह होती है कि तब हमें ये पता ही नहीं होता है कि सामने वाला हमारी कहानी का हिस्सा बनने वाला

एक छोटी सी नजर मिलती है, कोई मुस्कुरा देता है और फिर दिल चुपचाप अपना फैसला सुना देता है। वक्त गुजर जाता है मगर वो एहसास अक्सर वहीं ठहर जाता है। आइए उस पहली मुलाकात की मासूमियत को इस खूबसूरत से गीत के साथ महसूस करते हैं।

दोस्तों, किसी रिश्ते में सबसे खूबसूरत शब्द शायद मेरा नहीं बल्कि अपना होता है, जहां आप बिना कुछ साबित किए बिल्कुल वैसे ही रह सकते हैं कि जैसा कि आप हैं, जिसके सामने आपकी हंसी भी सच्ची हो और आपकी कमजोरी भी पूरी तरीके से सुरक्षित हो। वही तो अपनापन है। और इसी अपनापन भरे एहसास के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और यादगार गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ,

0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. BRICS nation today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market.

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,200। रीजनल रूरल बैंक्स रजिस्टर ओवर 10% राइज इन ग्रोस लोन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स में लगभग 500 अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,200 अंक से नीचे पहुंचा। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाए ऋण में पिछले एक साल के दौरान 10% से अधिक की वृद्धि और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। और तमाम खबरों पर चर्चा के लिए आज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: वार्म वेलकम सुषमा।
2: थैंक यू राजेश, थैंक यू निखिल।
0: बिफोर वी प्रोसीड, हियर इज अ डिस्क्लेमर। द व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स इन दिस प्रोग्राम आर देयर ओन एंड नॉट दोज ऑफ आकाशवाणी।

0: Ashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़ककर 24,155 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में लगातार तीसरे दिन सुस्ती आई, जबकि निफ्टी छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक आज 0.4% नीचे आए, जबकि स्मॉल कैप में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। इससे पहले आज सुबह कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से बाजार लाल निशान के साथ खुले थे।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड इन द नेगेटिव टेरिटरी टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइंड 493 पॉइंट्स और 0.63% टू क्लोज एट 77,235. The Nifty slipped 133 points or 0.55% to settle at 24,155. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.4%, while the small-cap 100 index remained unchanged. The Sensex extended its losing streak for the third consecutive session, while the Nifty closed lower for the sixth straight day. While the markets opened lower amid weak global cues, both indices remained under pressure and traded in a range-bound manner through most of the session. However, towards the fag end of the session, the markets extended their decline amid selling pressure ahead of the weekly expiry of Nifty futures and options contracts.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयरों में आज नुकसान दर्ज हुआ। सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में एशियन पेंट्स 2.4%, इन्फोसिस 2% और एचसीएल टेक 1.9% शामिल थे। वहीं इसके उलट एक्सिस बैंक में 0.9%, पावर ग्रिड में 0.7% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई।
0: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द बीएसई 21 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड विद लॉसेस। Among the top laggards, focused IT declined 1.8%, information technology dropped 1.7%, and realty lost 1.3%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt advanced 0.3%, hospitals as well as healthcare increased by 0.25%, and auto added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 1,930 advanced and 216 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 पर बंद हुआ। सुषमा एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है।
2: थैंक यू
1: सुषमा। आज अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो दोनों सूचकांक दबाव में रहते हुए ज्यादातर समय तक एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन कारोबार के आखिरी सत्र में निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी से पहले बिकवाली के दबाव के कारण बाजार में गिरावट देखी गई। और साथ में अगर हम पिछले दो हफ्ते की बाजार की चाल देखें और अब तक के दो दिन के इस हफ्ते का कारोबार देखें तो गिरावट का जो रुख है वो क्या कहानी कहता है, हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए बात यह है कि ये जो हमारा हमारे स्टॉक मार्केट्स जो हैं, मैं हमेशा कहती हूँ वो सेंटिमेंट ड्रिवन है, और इस वक्त सेंटिमेंट जो है वो इसके ऊपर जो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में यूएस और ईरान के बीच में, उसके बारे में सेंटिमेंट जो सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में है उनकी सोच उनके ऊपर है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो तेल के दाम है वो ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, वो वॉलिटिलिटी बहुत हो रही है। आज के दौर में एकदम से वो तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, दे हैव रीच्ड $91। तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, हमारी 85% ऑफ आवर फ्यूल रिक्वायरमेंट हम बाहर से ही मंगवाते हैं, तो इससे जो इन्वेस्टर्स की थोड़ा सा वो रुख बदल गया है ये पिछले 2-3 हफ्तों से। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, और तेल के अलावा भी बाकी सारी जो काफी सारी प्रोडक्ट जो वहां से आती है वेस्ट एशिया से।

0: क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो का तो ब्लॉकेड है, बाकी रेड सी में से के बीच में से मर्चेंट शिपिंग के भी वहां पर तकलीफें आ रही हैं क्योंकि यमन में से वहां अटैक हो रहे हैं. तो एक तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरा ये है कि सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स को छोड़ के अमेरिका की तरफ जा रहे हैं. वो वहां के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं और उनके जो रिटर्न्स हैं वहां पर ज्यादा बेहतर हैं. तो ये काफी सारी चीजें हैं, मतलब और भी मैं चीजें गिना सकती हूँ लेकिन बहुत टाइम लगेगा. आगे
1: मुनाफा वसूली का कैसा रुख देखने को मिला है इन दिनों के दौरान, खासतौर पे अगर डीआईएस की हम बात करते हैं तो?
0: खासकर हाँ जी,
1: डीआईएस की, घरेलू निवेशकों की बात करते हैं तो?
0: हाँ बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुकिंग की भी बात है लेकिन हमारे जो घरेलू निवेशक हैं वो ज्यादातर इस वक्त वो अभी भी इनकी जो फेथ है हमारी मार्केट में वो जारी है और इसी वजह से हालांकि फॉर एफआईआईज हमें छोड़ के जा रही है बड़े दबादब इस वक्त जा रही है लेकिन बीच में अभी हाल ही में तो वापस भी आ रही थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्योंकि यहाँ की जो असेसमेंट ये था कि वैल्यूएशन अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं
1: जी.
0: तो अब हम वापस आ सकते हैं लेकिन अब फिर जो रुख बदल गया है और वो चले गए हैं. डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल इस वक्त तो खैर प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रही है लेकिन वैसे वो इतना ज्यादा वो बेरिश ट्रेंड्स नहीं है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के.
2: सुषमा, आईटी वॉज अमंग द बिगेस्ट लैगार्ड्स टुडे, सो इज द वीकनेस लिंक्ड टू वैल्यूएशंस, यूएस डिमांड कंसर्न्स और द करेंसी फैक्टर्स और प्रॉफिट बुकिंग?
0: आई वुड से दीज आर लॉन्ग टर्म इश्यूज एज फार एज आईटी सर्विसेज आर कंसर्न्ड. द परसेप्शन दैट यू नो आईटी सर्विसेज आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू मैच द यू नो मैच द काइंड ऑफ एआई technology that has sprung up in the United States. So I think that it is linked to that. The fact that, of course, that in America things, the stock markets are rebounding just now at a time when ours are going down. We have to remember that for America, when for the U.S., when oil prices go up, while it might be uncomfortable to consumers, the fact is that they as an exporting nation, producing an exporting nation, for them it comes as a benefit. So the situation is very different and coming back to IT services, the perception has been for quite some time that there is going to be a problem with the IT services industry because of the introduction of AI, and I think that's not really so. You're going to have so many more applications of AI and it's going to be these IT services companies which are going to be doing that kind of work on applications.
2: Okay, auto and pharma, Sushma, showed relative resilience today. Is this defensive positioning or evidence of sector specific strength?
0: I would say it's sector specific strength because you know, pharma is definitely one of our strongest exports, one of our strongest sectors, and auto, of course, as you know, you must have read the reports, the demand has risen exponentially, and even in rural areas, that was the area that people were worried about, two-wheelers, there also the demand has gone up. So auto is an area that is certainly doing well. Even in exports, auto is doing well. So certainly, I think that is a strength for both these areas.
2: Okay. And also the Indian equities, as you very rightly pointed out, they came in under pressure today with the Sensex falling 493 points and the Nifty, you know, extending its losing streak. Now, is this a temporary bout of risk aversion or is the market signaling a more meaningful change in trend?
0: Well, that's very difficult to say right now. Because we would have to see the market for a while. I know, of course, the market has been, you know, going down in the last few weeks. There has been a bearish trend. But I think more of what is happening in the market is a reaction to external developments and the perceptions that, you know, what is happening between U.S. and Iran could have an adverse effect on our growth.
1: सुषमा, थोड़ा सा अगर पीछे जाकर के हम आपसे बात करें

0: तो जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, 707 अरब अमेरिकी डॉलर तक के हम पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां पर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट की जो बात है, विदेशी मुद्रा का एक इनफ्लो उसमें आया है, तो इससे आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पे ऐसे समय में जब लिक्विडिटी बढ़ाने की बात है और स्टेबिलिटी होनी चाहिए रुपए में और देश की एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने की लगातार बात हम कर रहे हैं।
1: देखिए, ये जो स्कीम बनाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उससे बहुत फायदा हुआ है। मतलब इनफ्लोज की बात आपने की, ये पीएनआरपी की वजह से हुई है, और लेकिन उससे इतना सपोर्ट रूपी को नहीं मिला जितना सोचा जा रहा था।
0: जी
1: और रूपी डिप्रिसिएशन, खैर हम समझ सकते हैं कि वो कम, मतलब हॉल्ट हो गई है, बंद हो गई है डिप्रिसिएशन, लेकिन वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ है
0: जी
1: रूपी। तो ये थोड़ी सी शायद आरबीआई माइट बी लिटिल कंसर्न अबाउट दैट। पर मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे, एक तो हमारे रिजर्व्स बहुत बड़ी बहुत अच्छे हैं इस वक्त, और दूसरी एक बहुत अच्छी बात है, हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो बहुत ही छोटा है इस वक्त। मेरे ख्याल ये जो जून के क्वार्टर में, अप्रैल में, जून क्वार्टर में, जिसमें ये अभी ये वॉर हुआ था और जिसमें इतना डर लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा बहुत महंगा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे करंट
0: जी
1: अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल 0.6% ही हुआ है हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट इस वक्त।
0: सुषमा,
1: तो
0: इसमें
1: इसमें
0: एक चीज और
1: पॉजिटिव
0: पूछना
1: चीज
0: चाहूंगा
1: बहुत
0: मैं
1: है।
0: आपसे, जो इस तरह के कदम उठाए गए हैं आरबीआई की तरफ से, सरकार जो भी प्रयास कर रही है उन्हें आप मतलब किस तरह से देखती हैं, क्या ये इस तरह के कदम आगे भी उठाए जाने की संभावना रहती है जहां पर स्टेबिलिटी देने की बात हम करते हैं तो?
1: हाँ देखिए, आरबीआई ये वक्त वक्त पर ये कदम उठा देती है। अभी ये एफसीएनआरबी का जो ये इतने स्कीम्स आए हैं वो इसी वजह से थे, टू नॉट नॉट जस्ट टू स्ट्रेंथन द रूपी, इनका ये था टू गिव मोर कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स, ये भी था कि इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए,
0: जी
1: और ये हम ये कि हमारे यहाँ रुपीस मतलब डॉलर्स डालने से उनको आराम से उनको निकाल भी सकते हैं, तो यहाँ डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसमें साइड इफेक्ट ये है कि मतलब रुपी की डिप्रिसिएशन कम हो गई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इतना वो अप्रिशिएट नहीं हुआ
0: जी
1: रुपी, लेकिन जो गिरने की जो तकलीफ हो रही थी वो तो कम हो गई है। हाँ, अगर आगे आगे के दिनों में और कुछ मतलब उस कोई कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो आरबीआई ये वक्त वक्त पे ये
0: जी
1: स्कीम निकालती रहती है।
0: जी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण की सुविधा का विस्तार किया है और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कमजोर वर्गों को 3,49,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। सुषमा, इस तरह की जो खबर है, अगर आर्थिक मोर्चे के नजरिए से देखें तो क्या समझ सकते हैं इससे हम?
1: देखिए, मुझे असल में ये खबर अच्छी तरह से सुझाई नहीं जी, थोड़ा सा आप संक्षेप में बता देंगे क्या बोले आप?
0: जी, मैंने ये बोला कि वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तरफ से जारी किए गए हैं।
1: अच्छा, हाँ, तो ये जो क्रेडिट फ्लोज जो है ये एकदम से बहुत बढ़ गए, और रीजनल रूरल बैंक से ये क्रेडिट फ्लोज बढ़े हुए हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव मेरे ख्याल डेवलपमेंट है। और यही एक, इनफैक्ट काफी कमेंटेटर्स ने इसके ऊपर बात की है कि जो जो इस वक्त काफी काफी इस वक्त ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं और शायद हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप ये क्रेडिट फ्लोज की तरफ देखें तो ये दिखाया जा रहा है
0: जी
1: कि एक्चुअली हमारा जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल नहीं, इसका जो क्रेडिट पिकअप जो है

0: वो काफी बढ़ गया है और आगे वाले दिनों में लगता है कि कंजम्पशन और बढ़ जाएगा।
1: मूविंग ऑन, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द 6 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट PIL कंप्राइजिंग 405 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइटम्स विद एन एस्टिमेटेड बिजनेस पोटेंशियल ऑफ 3070 करोड़ रुपीज। These include 16 items of the Indian Coast Guard and 389 items of defense public sector undertakings. The list contains line replaceable units, subsystems, sub-assemblies, spares, components and raw materials. The ministry said that this 6th PIL marks another step in the government's efforts to promote self-reliance in defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. It is expected to further expand opportunities for the Indian industry, strengthen the domestic defense manufacturing ecosystem, promote investment and innovation, and contribute to reducing dependence on imports. The ministry informed that the detailed list of items is also available on the Srijan portal, srijandefense.gov.in. Sushma, this is a step towards self-reliance in defense manufacturing and also towards making in India, giving it a big boost.
0: Yes, in fact, defense is an area of great progress in recent years. Not only are we manufacturing within the country, we are exporting also. So India has become a fairly large arms exporter. And of course, there have also, since the private sector is now being involved more and more, not just in defense, but in space. So you have so many now private, public-private collaborations, as well as private collaborations with foreign companies, you know, which are now coming forward and setting up. So it's one of the big, I would say, success areas in the manufacturing sector.
2: आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी को अब पारंपरिक व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर साझा निवेश, सहयोगी नवाचार तथा सहभागी विकास और निर्माण की दिशा में आगे जाना चाहिए। वे आज मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अमरीकी कंपनियों को अपने राज्य में आमंत्रित करते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र को भारतीय और वैश्विक विकास के लिए एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करें। श्री फडणवीस ने राज्य की प्रतिभा, बुनियादी ढांचे, बाजारों, प्रौद्योगिकी और वैश्विक संपर्क बढ़ाने पर बल दिया। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाने के लक्ष्य का आपसी साझेदारी है, जो कि बहुत ही बेमिसाल क्षमताओं को दर्शाता है। सुषमा, आज ये जो बैठक हुई मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को अपने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: देखिए, ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हालांकि इस वक्त जो है, हम सब लोग ये इंडो यूएस ट्रेड डील जो है इसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये जो है, ये कोलैबोरेशन इन इंडस्ट्री, ये भी उतना ही महत्व, मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करे, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी अमेरिकी कंपनीज हैं, यहाँ बेस्ड हैं, यहाँ उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये बढ़ना चाहिए। और इस वक्त जो अमेरिकी कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा निवेश चाइना में किया है, तो उतना तो वहां से, अब वहां की जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो धीरे धीरे करके वो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं चाहते हैं कि चीन में बेस्ड जो अमेरिकी कंपनीज यहाँ आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा, मतलब थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वार्तालाप से काफी कुछ पैदा होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज फिर हमें बताएंगी कि क्या तकलीफें हैं वहां यहाँ आने के लिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं वो बता देंगे, और उससे ये जो प्रोसेसेस हैं
1: streamline ho sakti hai. So Sushma, both the ambassador and the Indian delegate also said that taking India-US bilateral trade to $500 billion by

0: 2030 reflects the unmatched potential of the partnership between the two countries. Now, does this reflect anything that will take place soon between the India-US trade deal? Is it moving towards that?
1: We really can't say, because the Indo-US trade deal seems to be moving at a snail's pace. You know, I mean, we have been waiting for it since last year. And we keep hearing from both sides that, you know, it's just on the verge of being concluded. And yet it doesn't come. And in the meantime, we have all these stories coming in about tariff imposition under Section 301, under the new Congress legislation about against countries which are importing, buying oil from Russia. So these are things on which more clarity needs to be given by the American government. And it's only when these tariff barriers as well as non-tariff barriers are eased that we can think of raising trade to, you know, this kind of exponential level.
0: Moving on, the fifth edition of SEMICON India 2026 will be held from the 17th of next month in New Delhi. The three-day conference will witness the participation of more than 500 exhibitors and around 240 exhibiting companies from more than 40 countries. Prime Minister Narendra Modi will chair a roundtable conference with global CEOs from the United States, Japan, South Korea, Singapore, Germany, the Netherlands and Malaysia. The theme of the fifth edition of the SEMICON India conference is Silicon to Systems, Building the Ecosystems.
2: एशियाई शेयर बाजारों में आज जापान का निक्केई 225 2.5% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5% नीचे आ गया.
0: Global crude oil prices rose for the third consecutive session today amid uncertainty over a potential peace deal between the US and Iran. Brent crude was trading 0.5% up at $91.36 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.07 per barrel when reports last came in. Very quickly, Sushmat, what oil price does the situation become materially negative for India's inflation and external balances?
1: Well, it's difficult to say, but definitely $91 is not a comfortable level for India. I mean, we would prefer it to be in the range of, say, $70 or even up to $80. Above that is definitely not comfortable for a country which is importing such huge quantities of crude oil.
2: आगे बढ़ते हैं. सोना मामूली गिरावट के साथ आज 1,54,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1% से अधिक की तेजी के साथ 2,33,164 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी. सुषमा, जिस तरह से गोल्ड की गिरावट और बढ़त का जो एक सिलसिला है, बहुत ही सीमित दायरे में हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, वही हाल चांदी का भी है. क्या लगता है इस मार्केट से आपको?
1: देखिए, गोल्ड का जो इस वक्त वो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, और इस वक्त की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वगैरह हैं, पिछले दो सालों से गोल्ड की कीमत एकदम से बढ़ गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो मेरे ख्याल इस वक्त थोड़ा सा प्लेटो पे आ गई है. साथ में चांदी का भी दाम बढ़ गया. चांदी को हम सेफ हेवन एसेट पहले नहीं कहते थे, पर मेरे ख्याल में अब ये भी बन गया है, क्योंकि इसकी भी खरीदारी ये सेफ हेवन एसेट माना जा रहा है इस वक्त. तो क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मेरे ख्याल अब ये थोड़े प्लाटो हो रहे हैं, लेकिन बहुत नीचे नहीं आएंगे.
0: सुषमा, व्हाट इज द वन की मैसेज दैट यू विल गिव टू द इन्वेस्टर्स? शुड दे रिमेन कॉशियस, यूज द करेक्शन टू अक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक्स, और वेट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी ऑन क्रूड, जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स?
1: वेल, आई थिंक नंबर वन, ऑफ कोर्स दे हैव टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑलवेज, एंड the second is that you know, you have to look at the quality of the company.
0: They have to be cautious. Okay.
2: जी सुषमा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: Thank you,
0: Sushma, for being with us. And before we close the headlines once again, benchmark domestic indices decline, Sensex drops nearly 500 points, Nifty settles below 24,200, regional rural banks register over 10% rise in gross loan outstanding last year, and global crude oil prices

0: rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, good night.
1: Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
2: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में

0: संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणियों का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मतदाता आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल से डिजिटल पहचान पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि करीब 12 लाख मतदान केंद्रों के लिए मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां प्रमुख देश है। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड लाल रेमस्यामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी आई अरुमेनायम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। BRICS nation has reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi yesterday said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate changes. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market standards. He said it can be done by educating farmers about various modern technical tools. The minister was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council of Agricultural Research, ICAR, in New Delhi today. The minister also administered the Saptadhara of Shakti Pledge to officials of both ministries in the national capital. Mr. Chauhan said, through Shakti Ki Saptadhara, Prime Minister Narendra Modi has presented a clear roadmap for building a developed India. The Supreme Court has said that it would constitute a high-powered committee comprising retired Apex Court and High Court judges, a former DGP and an ex-CBI director to examine allegations of police excesses against students during recent protests in Delhi and violence against police personnel. A 3-judge bench

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आप सभी के साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो आज पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है पूर्णिमा और आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और वो क्या कहते हैं ना कि ये जो मन के मौसम में समय के साथ बदलाव आता रहता है, या यूं कहें कि मन के मौसम का भीगना किसी दुख का संकेत नहीं होता, सिर्फ कभी कभी एक बहुत खूबसूरत सी फीलिंग, बहुत सुंदर अनुभूति के कारण भी मन के मौसम में थोड़ा उथल पुथल होने लग जाता है। जैसे किसी स्मृति में छिपी आत्मीयता का अचानक सामने आ जाना, किसी आवाज की पहचान भीतर तक उतर जाना, या फिर किसी पुराने प्रेम पत्र का एक वाक्य बहुत देर तक अगर साथ ठहर जाए, और तब ये जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो शब्दों से ज्यादा काम करने लग जाती हैं, और मन उन बातों को फील करने लग जाता है, या यूं कहें कि मन उन बातों को महसूस करने लग जाता है जिन्हें कभी नहीं कहा गया या जिन्हें शब्दों में ढाला ही नहीं गया, और मन ऐसे संबंधों को भी समझने लग जाता है, उनके भीतर छुपे हुए भावों को समझकर मन के मौसम में थोड़ा उथल पुथल होने लग जाता है, और भीतर की जो ये संवेदनाएं होती हैं, ये फीलिंग होती है, ये हमें सबसे ज्यादा मानवीय बनाने का काम करती हैं, और यही फीलिंग मन के मौसम को नम कर करके ये मन की जो जमीन है उनको उर्वर बनाती रहती है। सुन रहे हैं आप निशिगंधा, और अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म तुमसा नहीं देखा से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है तीसरी कसम, आवाज है आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है फागुन।

थोड़ी देर पहले हम मन के जिस मौसम की बात कर रहे थे कि मन का मौसम जो है वो भी मौसमों की तरह बदलता रहता है। कभी कभी बिना कारण के भी मन के मौसम में नमी आ जाती है और कभी कभी ये मन का मौसम भी ना बड़ा रूखा सा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनकही बातें मन के भीतर परतों की तरह जमा होने लग जाती है। कोई पुराना प्रसंग याद आकर मन को भावुक भी कर देता है और कभी कभी बहुत छोटी सी बात भी मन को बहुत चोट पहुंचा जाती है। किसी अपने का बहुत छोटा सा नजरअंदाज कर देने वाला व्यवहार भी मन के अंदर घर बना लेता है। आंखें कारण खोजती हैं और मन अपने अर्थ को तलाश करता रहता है। और इस लड़ाई में, यूं कहें कि मन की इस लड़ाई में इंसान जो है ना वो क्या कोशिश करता है कि वो खुद को नॉर्मल दिखाने की यानी कि सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, पर वो होता सामान्य नहीं है। भीतर की संवेदनाएं जो हैं वो अंदर ही अंदर व्याकुल करती रहती हैं और मन हर बार एक जगह ठहर कर कारण तलाश करता रहता है। बीते हुए जो पल होते हैं वो वर्तमान को अफेक्टेड करने लग जाते हैं, उस पर अपना असर डालने लग जाते हैं और मन जो है वो उलझा पुलझा अपने ही प्रश्नों के बीच और न जाने कितने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लग जाता है। और यही बदलता मौसम जब कहीं से कोई और संवेदनाओं की एक छोटी सी बूंद लेकर भी मन के ऊपर एक नमी पैदा करता है तो वो रिश्ता हमें सबसे ज्यादा करीब लाता है। और ऐसे में मन जो है वो सारे प्रश्नों के उत्तर तलाश करना छोड़कर थोड़ी देर ठहर कर बैठ जाना चाहता है। तो मन की और भी बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक सुंदर सा गीत। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में हम बात कर रहे हैं मन के मौसम की। जनाब, ये जो मन का मौसम है ना, इसकी कहानी ऐसी है कि जितना लिखो जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि मन के मौसम को शब्दों में बांधना ये जीवन का सबसे मुश्किल टास्क है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इस मौसम के बहुत सारे रंग हैं और ये जो सारे रंग हैं ना, ये रंग हमारी भावनाओं के रंग हैं और भावनाएं शब्दों में बांधी जा सके ऐसा हो ही नहीं सकता। पर कहते हैं ना कि हम अपने जीने के अंदाज को बदलकर, सोचने के अंदाज को बदलकर हम मन के मौसम को अपने अनुसार इसमें बहुत सारे रंग भर सकते हैं। बहुत पुराना एक सुंदर सी पंक्ति है, बहुत पुरानी, कि कहते हैं कि सांस लेने का अगर नाम है जीना साहिर, तो सांस लेने के भी अंदाज बदलते रहिए। जी हाँ, एक तरह से जीवन जीते जीते कई बार जीवन भी ना बेरंग सा महसूस होने लगता है। तो कहते हैं कि जीवन को बदलने के लिए या जीवन में और सारी रंगों को भरने के लिए हमारे मन के मौसम का भी बहुरंगी होना जरूरी है। संबंधों को एक बार फिर से जीवित करने की जरूरत होती है, कुछ बातों को इग्नोर करने की जरूरत होती है और फिर जीवन जीने का सलीका बदलकर हम मन के मौसम को भी बहुरंगी बना सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। और कहते हैं कि एक पॉजिटिव सोच 100 दरवाजे खोलती है सफलता के, इसलिए अपनी सोच में पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, आवाज है मुकेश की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जिस तरह मन के भावनाओं को या मन के मौसम को शब्दों में बांधना, शब्दों में ढालना सबसे मुश्किल टास्क है, ठीक वैसे ही प्रेम को लिखना दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम। कहते हैं कि हमारी प्रीत का कुछ इस तरह बंधन हुआ होता, हमारी प्रीत का कुछ इस तरह बंधन हुआ होता, तुम्हारा मन हुआ होता, हमारा मन हुआ होता, बिठाकर नाव में तुझको नदी के पार पहुंचाता, बिठाकर नाव में तुझको नदी के पार पहुंचाता, जो तुम लहरें हुई होती और मैं साहिल हुआ होता, जो तुम लहरें हुई होती और मैं साहिल हुआ होता, हमारी प्रीत का कुछ इस तरह वंदन हुआ होता। वक्त आ चला है आपसे एक बार थोड़ी देर के लिए विदा लेने का। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, 2:10 पर कार्यक्रम होगा गीत सुहाने और हम होंगे आपके साथ। फिलहाल छोड़े जाते हैं एक गीत के साथ, फिल्म का नाम है राजा और रंक, आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत

निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। इस बीच वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना का उद्देश्य देश के ज्यादा से ज्यादा घरों तक साफ, सुरक्षित और किफायती पाइप्ड गैस पहुंचाना है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन के समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर एक मिसाइल से हमला हुआ। एक ईरानी अधिकारी ने कहा है कि जब तक अमरीका ईरान की शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक जलमार्ग दोबारा नहीं खुलेगा। FIH हॉकी विश्व कप में कल भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूँ मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैं सब लिख लेता हूं, मन, याद, आंसू। मैं झरने, पहाड़, आकाश भी लिख लेता हूं। मैं लिख लेता हूं वो तमाम रास्ते जो होकर गांव लोगों तक पहुंचते हैं। मैं लिख लेता हूं वो तमाम रास्ते जो होकर गांव लोगों तक पहुंचते हैं।

मैं सब लिख लेता हूँ, बस मेरी लिखावट में कभी घर नहीं आ पाया, बस मेरी लिखावट में कभी घर नहीं आ पाया। मैं सब लिख लेता हूँ, मन, याद, आंसू, मैं झरने, पहाड़, आकाश भी लिख लेता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है भूपिंदर और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है किनारा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है आकाश दीप और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे। लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे। मैंने उसका नाम भी लिखना मुनासिब न समझा। मैंने उसका नाम भी लिखना मुनासिब न समझा। अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में और फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, गीत सुहाने की इस खूबसूरत महफिल में, फिल्म का नाम है बॉबी, आवाज है शैलेंद्र सिंह की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर और कार्यक्रम होगा रात सुरमई। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर और आवाज है मुकेश की। मिलते हैं 2:10 पर, कार्यक्रम होगा रात सुरमई।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किया चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। असम सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए असम राज्य बाल संरक्षण नीति 2026 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि इससे बच्चों की देखभाल से जुड़ी सरकारी और निजी संस्थानों में एक समान सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। कैबिनेट ने असम औद्योगिक संबंध नियम 2026 को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जनकल्याण

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है सावन को आने दो और आवाज है यशुदास की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। एक बड़ी सुंदर सी बात है जीवन से जुड़ी हुई कि जीवन हर मोड़ पर उत्तर नहीं देता, वह पहले जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के साथ में जीना सिखाता है। अधूरेपन से अगर मन विचलित होने लगे तो पूर्णता का मूल वो कभी नहीं समझ पाएगा। पूर्णता के मूल को समझने के लिए हमें अधूरेपन के साथ भी जीना सीखना होगा। हर असमंजस के भीतर एक नई दृष्टि का द्वार खोल देता है।

ये जीवन, यदि हम उससे भागेंगे नहीं, तब एक दिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि कठिनाइयों ने रास्ता नहीं रोका था, वे बस हमें हमारे पहचान तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रही थी। और इंसान का सबसे सच्चा उत्तर उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, हर प्रश्न का जवाब हमें खुद के साथ, खुद के अंदर ही मिलता है। तो है ना खूबसूरत सी बात। आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, और फिल्म का नाम है अर्पण।

0: बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
1: नहीं।
0: तो फिर गुमसुम क्यों हो? क्या बात है?
1: एक तो परदेश जा रहे हो, कहते हो एक साल क्या है, देखते देखते निकल जाएगा।
0: धत तेरे की, बस इतनी सी बात है?
1: छोड़ो।
0: देखो शोभा, यू नाराज मत हो, मैं तुम्हें रोज खत लिखा करूंगा और हर हफ्ते टेलीफोन भी करूंगा। सच पूछो शोभा, अगर तुम और तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में न होते तो मैं परदेश नहीं जा पाता। अब तो मुस्कुरा दो।
1: उफ़ो। ये सूट और टाई मेरी पसंद के हैं। जब भी किसी पार्टी में जाना इसे पहन के जाना, इसमें तुम बहुत हैंडसम लगते हो।
0: अच्छा, मान लो बहुत हैंडसम देखकर वहां की कोई लड़की फिदा हो गई तो
1: मैं समझूंगी वो लड़की मुझसे भी ज्यादा समझदार और अकलमंद है।
0: जलन नहीं होगी?
1: बिल्कुल नहीं। अगर तुमने उसे शादी भी कर ली तो भी मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें चाहती रहूंगी
0: शोभा।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनने जाएंगे आप सुनेंगे, इस फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। दिन ढल जाता है और शाम आती है। शाम जब आती है तो कुछ अच्छी बातें भी अपने साथ लेके आती है। शाम कहती है कि जैसे दिन ढल जाता है वैसे ही जीवन में अगर दुख है तो दुख भी ढल जाएगा। हर परेशानी की भी एक शाम होती है और उसके बाद आती है उम्मीदों की सुबह। और जब हम अपने डर अपनी चिंता इस शाम के हवाले कर देते हैं तो फिर जैसे शाम ढल जाती है वैसे ही दुखों की भी शाम ढल ही जाती है। शाम कहती है कि जो उम्मीदों की सुबह होती है उसके लिए बड़े धैर्य से रात के प्रहर में गुजरना पड़ता है। यानी सुख और दुख के बीच का जो प्रहर होता है ना, वो थोड़ी बेचैनी, थोड़ी घबराहट और मन को बार बार बेचैन करने वाली वो रात होती है, वो पहर होता है। पर जब हम उस वक्त में ठहरना सीख लेते हैं, थमना सीख लेते हैं, तो वो वक्त भी गुजर जाता है ना, अच्छी सी बात। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है आप सभी से विदा लेने का। तो चलते चलते हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 3:10 पर मीना होंगी आपके साथ। फिलहाल छोड़े जाते हैं एक वादे के साथ, यानी फिर मिलने के वादे के साथ, और एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है अर्पण, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: देखिए, हमारा 5-स्टार होटल है। यहाँ पर हमेशा कैबरे के प्रोग्राम ही पसंद किए जाते हैं। सिर्फ एक बार हमने कव्वाली का प्रोग्राम रखा था
1: जी,
0: जो गेस्ट ने बिल्कुल पसंद नहीं किया।
2: मैनेजर साहब, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ, आज तक हमारा एक प्रोग्राम नहीं हुआ जिसे देखकर देखने वाले खुद उठकर हमारे साथ नाचने नहीं लगे। हमारी पार्टी पंजाब की सबसे मशहूर पार्टी है।
0: नाम तो मैंने भी सुना है।
3: तो एक बार काम भी देख लीजिए ना। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब।
0: गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग। ये मेरी बेटी है सोना।
0: ओह, आई सी।
2: हमारे ट्रुप के हर तरह के प्रोग्राम को यही लीड करती है।
0: ओह, प्लीज सिट डाउन मिस सोना।
3: शुक्रिया।
0: चाय?
3: जी नहीं शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीती। मैनेजर साहब, एक प्रोग्राम करने का मौका दीजिए, उसके बाद देखिए आप हमें पूरा सीजन नहीं जाने देंगे, ठीक है ना बाबा?
0: ओके, धन्यवाद।
3: थैंक यू वेरी मच।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई जाएंगे। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 3:11 और 7 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों जानते हैं, कुछ रिश्ते जिंदगी से दूर होकर भी दिल से दूर नहीं होते। समय कितना भी बदल जाए, कुछ यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। इसी तरह का आइए सुनते हैं अगले गीत में।

जिंदगी के सफर में बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा भी होता है जिसकी मौजूदगी पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देती है। ऐसी मोहब्बत हर किसी के हिस्से में नहीं आती, और जब आती है तो जिंदगी यादगार हो जाती है, बिल्कुल इस गीत की तरह।

दोस्तों, रात की खामोशी में कुछ यादें और भी गहरी हो जाती हैं। दिन भर हम खुद को कितना भी व्यस्त रखें, लेकिन रात होते ही किसी अपने की याद चुपके से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। कुछ लोग दूर होकर भी दिल के बहुत करीब रहते हैं और उनकी याद आए तो बस यही शब्द दिल से निकलते हैं।

दोस्तों, किसी को अपने दिल में जगह देना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई खास शख्स दिल में बस जाए ना, तो उसकी मौजूदगी हर पल महसूस होती है। रात की शांत फिजा में जब दिल सबसे करीब होता है, आइए याद करें उस खूबसूरत एहसास को जब किसी को दिल में बैठाकर सारी दुनिया ही हसीन लगने लगती है।

0: अच्छे से चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। समय हो चुका है 3:38 और 37 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, सावन की फुहारों में एक अलग ही मिठास होती है। रात की खामोशी, बाहर बरसती बूंदे और दिल में उठती किसी अपने की याद। लगता है जैसे मौसम भी चुपके चुपके दिल की बात कह रहा हो। कभी बारिश की बूंदे सिर्फ पानी नहीं होती, वो कुछ भूली बिसरी यादों को भी साथ ले आती है। आइए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत में।

दोस्तों, सावन की फुहारें जब दिल को छूती है ना, तो किसी खास की याद आना स्वाभाविक है। इसी मीठे इंतजार और प्यार भरे एहसास को सुनते हैं इस गीत में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार, 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई जाएंगे। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मई में यह अनुमान 6.7% था। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि अल नीनो मौसम और भू राजनीतिक चुनौतियां आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:11:05 अरुणिमा कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है कुछ नया करने का, खुद को फिर से पहचानने का। उम्र कोई भी हो, नई शुरुआत के लिए कोई तारीख तय नहीं होती। जब दिल कहे कि फिर से जीना है तो कदम आगे बढ़ाइए।

दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुना ही नहीं देते बल्कि चेहरे पर मुस्कान भी ले आते हैं। किसी की अदा, किसी की चाल और उस पर दिल का यूं बेवजह खुश हो जाना, यही तो पुराने गीतों की खूबसूरती है। जिंदगी में हर वक्त गंभीर रहने की जरूरत नहीं, कभी कभी खूबसूरत पल को बस मुस्कुराकर महसूस भी करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो हमारी सोच पर पूरी तरह छा जाता है। फिर दिन हो या रात, काम हो या आराम, ख्याल बार बार उसी शख्स के पास जाता है। शायद मोहब्बत का असर ही कुछ ऐसा होता है। दिल में कोई बस जाए तो फिर कुछ और याद कहाँ रहता है।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। समय हो चुका है 4:29 और 20 सेकेंड। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, सुहाने सफर में कुछ ऐसे गीत होते हैं जो अपने साथ मुस्कुराहट और थोड़ी सी शरारत भी लेकर आते हैं। किसी की मीठी बोली, किसी की प्यारी सी अदा और किसी को देखते ही दिल का खिल उठना, मोहब्बत की शुरुआत अक्सर ऐसे ही मासूम एहसासों से होती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

एक नई शुरुआत का एहसास अपने मन में उतर आता है। जिंदगी में कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है, जैसे कली को फूल बनने में वक्त लगता है, लेकिन उस इंतजार में भी एक खूबसूरत उम्मीद छुपी होती है। इसलिए आज की सुबह खुद पर भरोसा रखिए, अपने सपनों को थोड़ा वक्त दीजिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए।

सुबह की खूबसूरत शुरुआत अगर किसी प्यारी मुलाकात की याद के साथ हो तो पूरा दिन जैसे मुस्कुराने लगता है। जिंदगी में कुछ मुलाकातें महज संयोग नहीं होती, वे हमारे सफर में एक खूबसूरत याद बनकर आती है। रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि किसी अपने का साथ जिंदगी की मुश्किलें आसान कर देता है। आइए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत में।

सुबह की ताजा हवा में जब फूलों की खुशबू घुलती है ना, तो मन अपने आप किसी खास की याद से भर जाता है। फूल सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि प्यार और अपना पन भी लेकर आते हैं, और जब कोई फूलों के साथ अपने दिल की बात भेजे तो उस संदेश की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत।

दोस्तों, सुबह का वक्त हमें एक खूबसूरत बात सिखाता है। सही संगत और अच्छे रिश्ते जिंदगी के मुश्किल पलों को भी आसान बना देते हैं। किसी अपने के साथ बिताए हुए कुछ पल कभी कभी पूरे दिन की थकान मिटा देते हैं। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ में उन लोगों के लिए वक्त जरूर निकालिए जिनके साथ रहकर दिल को सुकून मिलता है। आइए इसी मीठे एहसास को सुनते हैं इस गीत में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों

0: की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विकासशील देशों की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल कहा कि भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं और मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। आयोग ने कहा कि करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की निर्वाचन प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान युवाओं के लिए बैंकिंग शुरू करेंगे। नई दिल्ली में कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा एजेंसी ने नए कार्यालय में CISF की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिन के चेन्नई दौरे पर हैं। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मई में यह अनुमान 6.7% था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी और मजबूत करने पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टलफिन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 5 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनसे हार मान लेना जिंदगी नहीं, गिरकर संभलना और फिर आगे बढ़ना ही असली जीत है।

दोस्तों, जब दिल सच्चा होना तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपने मन की खुशी को मत रोकिए। कृष्ण के बंसी की तरह अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और पूरे विश्वास के साथ अपनी राह पर आगे बढ़िए, क्योंकि सच्चे रिश्ते और सच्ची भावनाएं किसी सफाई की मोहताज नहीं होती।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:20 और कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी। मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि हर परिस्थिति के साथ कदम मिलाकर चलते रहें। जो बीत गया उसे मुस्कुराकर जाने दीजिए और जो सामने है उसे पूरे दिल से अपनाइए, क्योंकि जिंदगी को बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे जीने का अंदाज, उसके जीने का अंदाज हमेशा हमारे हाथ में होता है।

हवाओं की तरह जिंदगी भी कभी शांत, कभी तेज और कभी अनजानी दिशा में बहती है। हमें बस इतना करना है कि हर बदलती हवा के साथ खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि बदलाव से घबराना नहीं, उसे अपनाकर आगे बढ़ना ही जिंदगी की खूबसूरती है।

दोस्ती वो रिश्ता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि वो अनकंडीशनल लव होता है, उसमें अपनापन होता है। अच्छे दोस्त हमारी खुशियों में मुस्कुराते हैं और मुश्किल वक्त में बिना कहे हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। जिंदगी में ऐसे रिश्तों की हमेशा कद्र करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर गुजरते पल के साथ और गहरी होती जाती है।